सुप्रभात, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है मंगलवार, शक संबद 1948 के ज्येष्ठ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जून 2026। 5:58.41 हुए हैं। आरंभ होती है आज की सभा। हम अपनी सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन करते हैं।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब प्रस्तुत है हिंदी में समाचार, जिसे हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउलाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
3: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी आज गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब समय है खेती किसानी कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में कंद वाली सब्जी फसलों की खेती विषय पर उपयोगी जानकारी सुनिए अनीता तिर्की से।
4: खरीफ के मौसम में झारखंड में ओल, कच्चू

जिसे पिचकी कहते हैं, साखीन, आड़ू, सुथनी, शकरकंद, सेमलकंद और मिश्रीकंद की खेती लाभप्रद की जा सकती है। इसके लिए अगर खेत की तैयारी करना चाहते हैं किसान भाई, तो देशी हल या ट्रैक्टर से 3 से 4 बार गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। शकरकंद या मिश्रीकंद को जून जुलाई माह में लगाएं, बाकी सभी को सिंचाई की सुविधा रहने पर मार्च अप्रैल महीने में ही लगा दें, क्योंकि पहले लगाने से उत्पादन में आशातीत वृद्धि होती है। सिंचाई की सुविधा नहीं रहने पर मई जून में बुआई करें। ओल को 40 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर के गड्ढे में लगाएं। आड़ू और सेमलकंद को गड्ढे या मेड़ नाली में और बाकी सभी को मेड़ नाली में लगाएं। गोबर की खाद को गड्ढे में दें या खेत की तैयारी के समय मिट्टी में मिलाकर मेड़ नाली बना लें। कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी ओल, साखिन और सुथनी के लिए 60 से 75 सेंटीमीटर रखते हैं। कच्चू के लिए 60 सेंटीमीटर × 40 सेंटीमीटर, आड़ू और सेमलकंद के लिए 90 सेंटीमीटर × 90 सेंटीमीटर और मिश्रीकंद के लिए 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर रखें। अधिक उर्वरक मिट्टी में ज्यादा और अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मिट्टी में कम दूरी पर बीज लगाकर बीज और जमीन दोनों की बचत कर सकते हैं। ओल के लिए 500 ग्राम के बीज कंद का चुनाव करें। बड़े बीज कंद होने पर उन्हें लंबवत इस प्रकार काट लें कि हर एक टुकड़े में अग्रस्त कलिका का कुछ भाग जरूर रहे। ओल के लिए बीज दर 9 से 14 टन प्रति हेक्टेयर चाहिए, जबकि कच्चू और साखिन के लिए 25 से 30 किलोग्राम के स्वस्थ बीज कंदों का चुनाव करना है। इनका बीज दर 1 टन प्रति हेक्टेयर होता है। मिश्रीकंद को भी बीज के द्वारा लगाया जाता है और प्रति हेक्टेयर बीज दर 25 किलोग्राम लगभग चाहिए। शकरकंद के लिए लत्तर के सबसे ऊपरी भाग से 20 सेंटीमीटर की कटिंग बना लें। इसके लिए प्रति हेक्टेयर करीब 83,000 कटिंग की जरूरत होती है। ओल के बीज कंदों की उपलब्धि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मिनी सेट तकनीक आई है, जिसमें 100 ग्राम ओल या आड़ू के छोटे बीज कंद टुकड़ों को 1 साल 50 × 50 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है और इससे प्राप्त 500 ग्राम लगभग वजन के बीज कंदों को अगले साल मुख्य खेत में लगाने के लिए व्यवहार किया जाता है। चूंकि ये सभी फसलें जो है वो भूमिगत है, इसलिए गोबर खाद का अधिक व्यवहार करना चाहिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी और हल्की होगी, उत्पादन उतना ही बढ़िया होगा। अगर मिट्टी अम्लीय है तो चूना का प्रयोग करें। दीमक का प्रकोप रहने पर क्लोर पैरिफॉस दवा का प्रयोग करें। ओल, सुथनी, आड़ू और सेमलकंद के लिए 15 से 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 100 किलोग्राम नित्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटाश का व्यवहार करें। इसी तरह कच्चू, साखिन और मिश्रीकंद के लिए 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद, 80 किलोग्राम नित्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास का व्यवहार करना है। शकरकंद के लिए 10 से 15 टन

0: किसान भाई मद्रासी ओल के नाम से जानते हैं। इसी तरह कच्चू के लिए मुक्ताकेशी सतमुखी श्री रश्मि किरण ये प्रमुख है। साखिन के लिए अच्छी किस्मों में NDB 1 NDB श्रृंखला ये अच्छी किस्में हैं। इसी तरह अगर किसान भाई शकरकंद लगाना चाहते तो उसकी अच्छी किस्मों में श्रीभद्रा कलिंगा राजेंद्र शकरकंद 47 ये सभी अच्छी मानी गई हैं।
1: कंद वाली सब्जी फसलों की खेती विषय पर अभी आप सुन रहे थे जानकारी अनीता तिर्की से। इसी के साथ आज का खेती किसानी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।

0: आत्मविश्वास यानी भीतर का भरोसा, इसकी अलग ही ताकत होती है। अगर किसी को खुद पर भरोसा हो तो कोई भी कठिन काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। रामायण में एक प्रसंग है कि वानर सेना माता सीता की तलाश में जब समुद्र तट पर पहुंची तो विशाल समुद्र को पार कर लंका जाना कठिन प्रतीत होने लगा। तब अंगद ने कहा कि मैं समंदर पार कर लंका तो जा सकता हूं, परंतु वहां से लौट आने की क्षमताओं पर मुझे संदेह है। तब जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास कराया और कहा कि आप जाकर सीता जी का पता करिए। उत्साहित हनुमान ने कहा कि मैं अभी लंका जाकर सभी राक्षसों का संहार करके माता सीता को वापस लेकर आता हूँ। तब जामवंत ने कहा कि ये कार्य श्री राम स्वयं करेंगे, आप सिर्फ ये कार्य करके लौटिए। इस प्रकार तमाम बाधाओं को पार कर हनुमान जी अपने लक्ष्य को पूरा करके लौटे। इस प्रसंग से हमें सीखना चाहिए कि जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो मन में आशंकाएं और भय जरूर पनपते हैं, मगर हमें इनसे पार पाने के लिए अपने भीतर के भरोसे को कायम रखना चाहिए। उत्साह के साथ लक्ष्य की ओर बढ़ने से भीतर का भरोसा भी मजबूत होता है। अगर हमें अपने अंतस से अपनी क्षमता पर यकीन हो जाए तो कोई भी लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आखिर आत्मविश्वास है क्या और इसे कैसे जागृत किया जाए? वास्तव में आत्मविश्वास भीतर की ऐसी शक्ति है जो अपार ऊर्जा के प्रवाह से हमें क्षमता को पहचानने और अपने मुकाम तक जाने के लिए संबल प्रदान करती है। प्रायः हम बहुत कुछ करने के सपने देखते हैं, मगर संदेह की भावना हमें डरा देती है। जब हमारी क्षमताओं और आकांक्षाओं पर हमें ही यकीन नहीं रहता, तब हम अंतस से दब्बू बन जाते हैं। अज्ञात भय से इच्छाएं मन में ही दफन हो जाती हैं। इन दबी इच्छाओं को जागृत करने के लिए ही भीतर का भरोसा पैदा करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा कि पर्वतारोही, खिलाड़ी आदि भी दूसरे लोगों की तरह ही होते हैं, फिर वो इतने कठिन लक्ष्य को इतनी आसानी से कैसे पा लेते हैं? तो इसका जवाब है आत्मविश्वास। विजेता और पराजित में सिर्फ इसका ही अंतर रह जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम का शुभारंभ एक देशभक्ति रचना के साथ करेंगे।

0: वीर, सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पड़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे,
2: हरि कीर्तन करेंगे।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। लता मंगेशकर के मधुर स्वरों में सभी सजीव भक्तिमय रचनाओं के साथ कार्यक्रम आराधना अब यहीं संपन्न होता है।

बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मग्न हैं। वेद सम्मत विधियों तथा कुल की रीति के अनुसार वे अर्घ्य पावड़े देती नव विवाहित जोड़ियों को परिछन के लिए महल में ले चली। माताओं द्वारा लोक रीतियां संपन्न हुई। सभी भाइयों ने देवताओं तथा पितरों का पूजन किया। देवगण यद्यपि अदृश्य हैं, फिर भी मानो अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और आनंदित माताएं उन आशीर्वचनों से अपने अपने आंचल भर ले रही हैं। जब गुरु तथा ब्राह्मणों समेत राजा दशरथ महल में पधारे तो रानियों ने आदर सहित सबके चरण धोए, उन्हें स्नान कराया गया और भली भांति पूजे जाकर उन्होंने भोजन किया। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र की विशेष रूप से पूजा करके अपने को धन्य माना।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:55 पर संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे वेदवार्ता में विवाह की सही उम्र विषय पर विशेष जानकारी। वेदवार्ताकार होंगे डॉक्टर निर्मला सिंह, वेदकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। सात बजकर 15 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुबह सुरीली। खुला आकाश आप सुनते हैं 7:45 पर। आज इस कार्यक्रम में वार्ता का विषय होगा जलवायु परिवर्तन के समाधान में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका। वार्ताकार होंगे विशाल कुमार श्रीवास्तव। 8:00 आप सुनते हैं समाचार प्रभात, मॉर्निंग न्यूज का वक्त तो आप जानते ही हैं 8:15 पर। प्रादेशिक समाचार 8:30 पर। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे आज 8:45 पर। आज उरांव लोकगीतों का प्रसारण होगा, कलाकार होंगे किशन उरांव और साथी। नौ बजे रसरंजन फिल्म गीतों का कार्यक्रम। 9:30 पर आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सरोद पर राग विलास खानी तोड़ी, आलाप और जोड़ के बाद दो गते। कलाकार होंगे पंडित मनोज कुमार केडिया, संगत करेंगे तबले पर श्रीजीत चैटर्जी। 10:00 कार्यक्रम होगा क्रीड़ा जगत। आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय है आईपीएल आरसीबी चैंपियन। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक वैभव शिवंशी के बारे में। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर अमित अखोरे की, प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की। इसी कार्यक्रम को आप शाम के 4:02 पर पुनः सुन सकते हैं। जानकारी एवं मनोरंजन का कार्यक्रम जुहार रांची का वक्त आप जानते ही हैं 10:30 पर। आपकी पसंद कार्यक्रम 11:30 पर। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दोपहर 12:00। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है रिश्तों में संवाद है जरूरी। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे भेंटवार्ता वर्षा जल संचयन की विधि और महत्व। जानकारी में एक पेड़ माँ का नाम अभियान, प्रस्तुति होगी नूतन प्रसाद की। प्रायोजक कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं 12:30 पर। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी 1:20 पर। आज के हमारे कलाकार होंगे सिप्रा पोस। सुगम संगीत 1:45 पर आप सुनेंगे। मिड डे न्यूज का प्रसारण होगा दोपहर 2:00। दोपहर समाचार 2:15 पर। फौजी साथियों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती आप सुनते हैं 2:30 पर। प्रादेशिक समाचार 2:55 पर। नॉन स्टॉप अंत्याक्षरी आपका पसंदीदा कार्यक्रम, समय तो आप जानते ही हैं 3:00। रांची मेलोडीज 3:30 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ सरगम आप सुनते हैं 4:35 पर। युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवाणी आप सुनते हैं 5:02 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है गर्मी के मौसम में रखे सावधानी। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे फिल्मी गीत, साथ ही साथ इतिहास में आज के दिन का महत्व, भारत और विश्व। प्रस्तुतकर्ता होंगे इस कार्यक्रम के गौरव कुमार पांडे। श्रमिक साथियों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक आप सुनते हैं 5:30 पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। थोड़ी देर में सुनिए समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट एक्ट ईस्ट महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पाद समूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्क मुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः श्रमिकेभ्यः महिलाभ्यः कृषकेभ्यः मत्स्यजीविभ्यः सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षा सम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉ संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदीप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, संघटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमा भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमा के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह

0: और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए अब सुने हमारा दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में भेंटवार्ता का विषय है विवाह की सही उम्र। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर निर्मला सिंह और वेट करता है संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों नमस्कार। मित्रों आजकल जिंदगी तेजी से बदल रही है। सभी यही चाहते हैं कि एक अच्छा और मोटी तनख्वाह वाला कैरियर चुने। कैरियर चुनने की राह में शादी भी एक बहुत बड़ा फैसला होता है और ये जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भी है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैरियर संवारने के चक्कर में लोग शादी में विलंब करने लग जाते हैं और एकाकी जीवन जीने लगते हैं। आखिर विवाह कब और किस उम्र में किया जाए? हालांकि सरकार की गाइडलाइन 18 और 21 वर्ष है और यदि विवाह विलंब से हो तो क्या परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला सिंह। मैडम स्वागत है। आजकल शादी की उम्र बढ़ती जा रही है, क्या कारण मान रहे हैं आज के बदलते दौर में इसका?
3: यही बात है जो अभी आपने प्रस्तावना में कहा कि लोग सोच रहे हैं कि शादी तब करें जब हम बिल्कुल अपने करियर में सेटल हो जाएं, पढ़ाई खत्म कर लें, नौकरी चाकरी करने लगे, जो भी करियर के एक हाइट पहुंचना है, अच्छी कमाई करने लगे, ताकि हम अपने परिवार को, खुद को सब तरह से इकोनॉमिकली सक्षम पाएं, सारे शौक पूरे कर सकें। अब इसमें शादी की उम्र भागती चली जा रही है, तो जो भी है जितना कंफर्टेबल हो एटलीस्ट 30 आने तक उनको फैमिली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 30 के बाद मुश्किल आने लगती है।
2: मुश्किलें क्या आ जाती हैं यदि 30 के बाद विवाह के लोग करते हैं?
3: 30 के बाद अगर विवाह करते हैं, 30 के बाद आपको नहीं पता कि वो 31 में कर रहे हैं कि 32 में कर रहे हैं, ठीक है। 30 के बाद अगर वो विवाह करते हैं तो है कि वो उनको पता है कि लेट मैं शादी कर रही हूँ। शादी करते के साथ उनको चाहिए कि अभी मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। मैरिज का मतलब है कि हम अपना करियर का काम कर लिए हैं और अब हमको बच्चा ही करना है, इसलिए वो शादी किए, लेट किए और अब तुरंत हमको बच्चा चाहिए। ये चीज़ उनके अंदर एक स्ट्रेस भी देता है कि तुरंत आप जो जब चाहेंगे तब हार्मोन का लेवल उस टाइप से नहीं हो जाएगा ना, और जो सिस्टम है आपके हिसाब से नहीं काम करेंगे। अब एक तरह का ये स्ट्रेस उनके अंदर आ जाता है कि हमको तुरंत प्रेग्नेंट होना। नेचुरली वो बहुत जल्दी डॉक्टर के पास भी चले आते हैं, अगर जल्दी नहीं भी आते हैं तो किसी को भी हम लोग तब इलाज के लिए लेते हैं जबकि एक साल कम से कम अनप्रोटेक्टेड कोई सुरक्षा का ये मापदंड लिए हुए पति पत्नी अगर साथ रहता है फिजिकली, तब अगर बच्चा नहीं होता है तब उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इलाज करते हैं, अगर कुछ निकलता है तो उसका इलाज करते हैं।
2: कैरियर की राह पर चलते चलते जब एक मुकाम आता है तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि अब शादी कर लें और जल्द से जल्द परिवार भी हमारा बन जाए।
3: बिल्कुल।
2: तो इसमें मानसिक तनाव भी होने लग जाता है, लोग अवसाद से घिर जाते हैं। आपके हिसाब से, आप वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शादी की एक सही उम्र आज के समय में क्या होनी चाहिए ताकि यदि उसके बात करते हैं तो जटिलताएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है?
3: देखिए न्यूमेरिकली आप पूछेगा कि कितने उम्र में हो जानी चाहिए, ऐसे तो हर किसी का सिस्टम एक अपनी तरह से भी होता है और बहुत सी बातों पे भी डिपेंड करता है। अगर शादी हम कर रहे हैं नेचुरली परिवार को आगे बढ़ाना है तो क्या है कि किसका किस तरह का बनावट भी है। बहुत लेट से करने से क्या होता है कि ऐसे भी आप देखेंगे कि 25 के बाद जनरली बॉडी में ओबेसिटी भी आने लगती है ना, और मेंस्ट्रुएशन हो सकता है कि अभी जो ठीक आ रहा हो वो इतना स्ट्रेस लेकर के जो भी करियर का या जो भी कही और एज सब मिला करके हो सकता है कि बहुत अच्छे से हमारा साइकिल बढ़िया से ना हो और हमारे अंडे अच्छे ना निकले। तो नहीं अच्छे निकलेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी भी आप जब चाहेंगे तब होगा भी नहीं और अगर होता भी तो अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए अगर नंबर में आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि एक लड़की को 25 साल तक शादी कर लेनी चाहिए।
2: लेकिन आज देखा जाए तो 25 साल करियर संवारते संवारते में ही निकल जाता है।
3: बिल्कुल। और इसलिए मैं 25 कह रही हूँ कि 25 और जो भी, मतलब 30 के पहले शादी हो जाए, पहला मतलब बेबी जो है वो 30 तक में कोशिश करे आदमी की परिवार बढ़ाना है तो 30 तक में वो कर ले।
2: एक जो पुराने समय परिवार के बीच में जो अपनत्व की भावना होती थी वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है।

0: तो हमें स्ट्रेस भी कम होता था। अब क्या है कि दोनों की पर्सनालिटी बनी हुई है, दोनों एक अपनी मानसिकता के साथ है, दोनों खुद भी न्यूक्लियर फैमिली में और कोई घर में भी नहीं है, अब दोनों अपने काम से आए हैं, अपने अपने से जूझ रहे हैं, और कोई भी बात होता कि थोड़ा सा कोई मन लायक नहीं बात किया, दोनों एक दूसरे से झगड़ भी पड़ते हैं, प्लस लेट से शादी किए करते हैं अगर, तो ये भी बात है कि वो तुरंत तुरंत मतलब सब कुछ उनको चाहिए होता है, और उस पर्सनालिटी के साथ में एक दूसरे को सुनने का भी टाइम नहीं है उनके पास। देखिए डिवोर्स रेट आज क्या हालत है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या है, स्वास्थ्य भी नहीं रह जाता है धीरे धीरे, इतना स्ट्रेस लीजिएगा तो स्वास्थ्य का क्या होगा
1: जी। जब आप काफी विलंब से विवाह के लिए तैयार होते हैं तो आप मानसिक रूप से काफी परिपक्व होते हैं, और आप फिर अपने हिसाब से सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, वो हमारे हिसाब से ही हो, एक मैच आप करने लग जाते हैं, तो इसमें एक तारतम्य नहीं बैठता है, फिर समस्या शुरू हो जाती है।
0: वही बात है, मतलब कंपैरेटिव स्टडी आपका हर बात को लेकर कि वो आपके लिमिट में नहीं बैठ रहा है, जो भी आपने एक बना के रखा है कि मान लीजिए कि दोनों का तारतम्य नहीं बैठने का क्या होता है, यही सब चीजें हैं, हर चीज का एक तरह कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है, वो बात व्यवहार हो, घर का काम हो, अगर बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी हो, सैलरी का ये हो, तो जहां वो सब चीजें आएंगी तो फिर तो दिक्कत हो ही है ना। बिल और दिल मिलाने की बात कहते हैं ना कि बाहर वेस्टर्न कंट्री में लोग बिल मिलाते हैं और हम लोग हिंदुस्तान में दिल मिलाते हैं
1: जी। जब दिल मिलेगा तो इस तरह की समस्याएं
0: नहीं होंगी।
1: मैडम क्या कहेंगे हमारे आने वाले जनरेशन को?
0: मैं ये कहूंगी कि नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करनी है, करियर बने, सब कुछ करना है, लेकिन सब में एक थोड़ा बैलेंस लेकर के चले, देखें कि कहाँ पे क्या ये हो रहा है, बहुत उसको लिंगर ना करें, शादी ब्याह की भी उम्र को बहुत लिंगर ना करें, विदाउट पार्टनर भी बहुत उम्र तक रहना, 35 साल 40 साल तक आजकल लोग रह जाते हैं, वो भी आपके अंदर शारीरिक भी बहुत शारीरिक मानसिक बहुत तरह की बीमारियां देती हैं। आज डिप्रेशन कितना ज़्यादा है लोगों में, क्योंकि उनको भी अपना वो बांटने के लिए कोई भी नहीं है, अपना सुख दुख आदमी बांटना चाहता है ना, अकेले तो झेल नहीं सकेगा लाइफ में, तो उसके लिए आपके पास नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में डिले कर रहे हैं। बच्चा भी कोशिश करिए, अगर शादी आपने कर ली है तो बच्चा भी कोशिश करिए कि 30 तक में कम से कम एक फर्स्ट बेबी तो आपका ही जाना चाहिए, ज़्यादा डिले ना हो। मैंने देखा है कि लोग 5 साल 10 साल डिले करते हैं, लगता है कि पता नहीं वो क्या बन जाएंगे उस समय, ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी नेगेटिव भी जाता है, वो स्ट्रेस आपको बहुत फ्रूटफुल नहीं बना पाता है। मैं एक डॉक्टर की तरह बात करूं तो लड़की का तो है ही कि भाई उसको हर महीने एक अंडा निकलता है जो कि वही फर्टिलाइज करता है तो बच्चे पैदा होते हैं। अब क्या है कि जब आपका पीरियड शुरू हुआ, जैसे वो मैच्योर हुआ आपका सिस्टम हार्मोन का, हर महीने आपका एक एक निकल रहा है, तो हर महीने तो डिप्लीट हो रहे, जो अच्छे होते हैं, जो बढ़िया सब तरह से अच्छे अंडे होते हैं, वो आपको शुरू में निकलते जाते हैं, बाद में जो बच जाते हैं वो आपके वो बेकार वाले, खराब वाले होते हैं, सब क्वालिटी वाले होते हैं। उसी तरह से पुरुषों में भी है, डिले करते हैं, ज़्यादातर पुरुष बाहर रहे, मोटरसाइकिल चलाए, जींस जैसे कपड़े पहने, ये सब मिला के उनमें भी इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इन दिनों हो गई है। स्पर्म का काउंट देखते हैं हम लोग, उसकी क्वालिटी देखते हैं, बहुत ही बेकार होने लगा।
1: तो इसका असर भ्रूण पर भी पड़ेगा मैडम?
0: भ्रूण पे ही पड़ेगा, इसलिए इसकी बातें हो रही हैं। सेक्सुअल लाइफ पे ना भी पड़े तो भ्रूण पे ही इसका असर पड़ता है, क्योंकि तो लेट से भी शादी हो रही है, अच्छे आपके पास अंडे स्पर्म्स भी नहीं है, और ऊपर ये सब भी फैक्टर्स हो जा रहे हैं, प्लस 35 के बाद ऐसे भी देखिएगा कि सिस्टमिक डिसऑर्डर आ जाता है, लड़का हो या लड़की हो, ब्लड प्रेशर जैसा चीज, डायबिटीज जैसा चीज, या लड़कियों की जब बच्चा भी जब करने जाती है तो तरह तरह की बीमारियां, ये सब अगर प्रॉब्लम पहले से नहीं है, और एक एल्डरली लड़की अगर प्रेग्नेंट होती है, नेचुरल से हो, टेस्ट ट्यूब बेबी से हो, जैसे भी हो, उसमें तरह तरह की बीमारियां आने का डर रहता है, तो ब्लड प्रेशर हो जाता है प्रेगनेंसी में आकर के, पहले से नहीं भी है तो डायबिटीज हो जाता है, अब उसमें संभालना, आपकी बच्चा को भी ठीक ठीक से एकदम 9 महीने तक पहुंचाना, और माँ का भी स्वास्थ्य, कि दोनों का स्वास्थ्य, जच्चा बच्चा दोनों को देखना, वो डॉक्टर को पानी पिलाने वाली बात हो जाती
1: है, चुनौती हो जाती है डॉक्टर,
0: बहुत चुनौती हो जाती है, कभी कभी पेशेंट सकम भी कर जाता है। बस कंक्लूजन यही है, टेक होम मैसेज कही यही है कि करियर बनाइए, शादी की उम्र को बहुत ज्यादा ना टाले, कोशिश करें कि एक लड़की 25 उसके अराउंड 25 से 30 के बीच में, एक लड़का भी है तो उसी तरह से वो दोनों शादी कर लें और करियर बनाएं, दोनों मिलके ये करें, परिवार का भी इम्पोर्टेंस समझें, अपनी प्रोजनी को भी आगे बढ़ें।

0: और परिवार एक बहुत बड़ी संस्था है, यदि आप परिवार में रहते हैं तो एक खुशहाल जिंदगी आप व्यतीत करेंगे और आप खुश रहेंगे तो परिवार भी खुश रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निर्मला सिंह, आज आप इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ एवं मंगलमय हो। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: विवाह की सही उम्र विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रही थी डॉक्टर निर्मला सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुबह सुरीली में आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत। मैं हूं आपका रेडियो साथी विश्वजीत पात्र। श्रोताओं, जून का महीना अपने साथ केवल तारीखों का बदलाव नहीं बल्कि मौसम और जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आता है। तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच अब आसमान में बादलों की हलचल दिखाई देने लगी है। पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और खेत सब मानो बारिश की पहली फुहार का इंतजार कर रहे हैं। किसान अपने खेतों की तैयारी में जुट चुका है क्योंकि उसे विश्वास है कि आने वाली बारिश उसकी मेहनत को नई दिशा देगी। प्रकृति का यही परिवर्तन हमें भी सिखाता है कि हर कठिन दौर के बाद राहत और उम्मीद का मौसम अवश्य आता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, भारत की आत्मा उसके गांव और खेतों में बसती है। जून का महीना किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह वो समय है जब खेतों में नई फसलों के सपने बोए जाते हैं और आसमान की ओर उम्मीद भरी निगाहें उठती है। धरती और बादलों का यह अनोखा रिश्ता सदियों से जीवन को संवारता आया है। किसान की मेहनत, उसका धैर्य और उसकी उम्मीदें हमें यह संदेश देती है कि सफलता भी उसी के पास आती है जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आइए मेहनत और उम्मीद की इसी भावना को समर्पित खूबसूरत गीत

0: एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-09-7 पर संपर्क करे या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करे। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बारिश का मौसम केवल खेतों को ही नहीं हमारे मन को भी हरियाली से भर देता है। पहली बारिश की बूंदें जब मिट्टी को छूती है तो एक ऐसी सौंधी खुशबू फैलती है जो बचपन की यादों को ताज़ा कर देती है। कागज़ की नावें, भीगती गलियां, पेड़ों से टपकती बूंदें और खिड़की के पास बैठकर निहारना, ये सब यादें जीवन को और खूबसूरत बना देती है। शायद यही कारण है कि हिंदी फिल्मों में बारिश और सावन पर बने गीत आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं।

दोस्तों, प्रकृति हर मौसम में हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जून का महीना हमें धैर्य, विश्वास और नवजीवन का संदेश देता है। सूखी धरती बारिश की कुछ बूंदों से फिर से हरी भरी हो जाती है। ठीक वैसे ही जीवन में भी छोटी सी उम्मीदें बड़े बदलाव ला सकती है। जब बादल घिरते हैं, हवाएं ठंडी होती है और वातावरण में ताजगी घुल जाती है, तब मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर उठता है। प्रकृति के इसी सुंदरता और जीवन के इसी संदेश को महसूस करते हुए सुनते हैं अगला नगमा।

श्रोताओं, जून का महीना हमें यह विश्वास दिलाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का सबसे सुंदर नियम है। मौसम बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और समय के साथ जीवन भी नए रंगों से भर जाती है। आने वाली बारिश केवल खेतों को ही नहीं सींचती, बल्कि सपनों, उम्मीदों और नई संभावनाओं को भी जीवन देती है। इसी मौसम में हरियाली का विस्तार, पक्षियों का मधुर कलरव और मिट्टी की सौंधी महक मन को एक नई ऊर्जा से भर देती है। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन अब यहीं संपन्न होता है। विश्वजीत का नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 589 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम खुला आकाश। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे जलवायु परिवर्तन के समाधान में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका विषय पर विशेष जानकारी वार्ता। वार्ताकार हैं विशाल कुमार श्रीवास्तव।
1: जलवायु परिवर्तन के समाधान में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका। आज 21वीं सदी में मानवता जिस सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है वह है जलवायु परिवर्तन। पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद से लगातार बढ़ रहा है। ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र के स्तर में वृद्धि

0: दी, असमय वर्षा और विनाशकारी चक्रवात अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि वर्तमान की कड़वी सच्चाई बन चुके हैं। इस संकट के जड़ में है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, जिसका सबसे बड़ा स्रोत जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, तेल और गैस का जलना है। इस समस्या के समाधान के रूप में स्वच्छ ऊर्जा एकमात्र ऐसा विकल्प है जो न केवल पर्यावरण को बचा सकता है बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा दे सकता है। पिछले 150 वर्षों में हमने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता बना ली है। जब हम कोयला या पेट्रोल डीजल जलाते हैं तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं। ये गैसें वातावरण में एक कंबल की तरह काम करती हैं, जो सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वर्तमान में वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 75% हिस्सा ऊर्जा के क्षेत्र से आता है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के तहत दुनिया भर के देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का संकल्प लिया है, जो बिना स्वच्छ ऊर्जा के असंभव है। आइए समझते हैं स्वच्छ ऊर्जा को। स्वच्छ ऊर्जा वह ऊर्जा है जो ऐसे स्रोतों से प्राप्त होती है जिनसे पर्यावरण में प्रदूषक तत्व या ग्रीन हाउस गैसें नहीं निकलती। इसे अक्सर नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये स्रोत कभी समाप्त नहीं होते। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं सौर ऊर्जा, जिसमें हम सूर्य की किरणों से बिजली बनाते हैं, पवन ऊर्जा, यहाँ हम हवा की गति का उपयोग कर टरबाइन घुमाते हैं और बिजली बनाते हैं, जल विद्युत, बहते पानी की शक्ति का उपयोग करके बिजली बनाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, पानी के अणुओं को तोड़कर बनाई गई स्वच्छ ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, कार्बन मुक्त बिजली का एक स्थिर स्रोत है। स्वच्छ ऊर्जा का सबसे बड़ा लाभ डीकार्बोनाइजेशन है। यदि हम बिजली उत्पादन के लिए कोयले की जगह सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन न केवल हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं बल्कि वे सूक्ष्म कण, जिसे हम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, हमारी हवा में छोड़ते हैं, जिससे सांस की बीमारियां होती हैं। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से हमारी पृथ्वी का तापमान स्थिर होता है, जिससे समुद्री जीवन, जंगलों और जैव विविधता को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। अम्लीय वर्षा और महासागरों के गर्म होने की प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है। स्वच्छ ऊर्जा केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी एक वरदान है, क्योंकि इससे रोजगार सृजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन क्षेत्र की तुलना में 3 गुना अधिक नौकरियां पैदा करने की क्षमता है। स्वच्छ ऊर्जा हमें ऊर्जा की सुरक्षा भी देता है, क्योंकि जिन देशों के पास तेल या गैस के भंडार नहीं है वे सूर्य और हवा के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पिछले दशक में सौर पैनलों में और बैटरी की कीमतों में 80% से अधिक की गिरावट आई है, जिससे यह अब कोयले से भी सस्ती हो गई है। परंतु इतने लाभ होने के बावजूद भी स्वच्छ ऊर्जा की राह आसान नहीं है, क्योंकि सूरज हमेशा नहीं चमकता है और हवा हमेशा नहीं चलती है। इसके लिए बेहतर बैटरी स्टोरेज तकनीक की आवश्यकता है, बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए भारी निवेश की जरूरत होती है, सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम, कोबाल्ट और तांबे जैसे खनिजों की जरूरत होती है, जिनका खनन भी पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं हमारे देश भारत की क्या भूमिका है स्वच्छ ऊर्जा में। हमारा देश भारत आज स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा। हमें जीवाश्म ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को बंद कर उसे स्वच्छ ऊर्जा की ओर मोड़ना चाहिए। हमें तकनीकी नवाचार करके कार्बन कैप्चर और बेहतर बैटरी स्टोरेज पर शोध करना चाहिए। वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में अमीर देशों को विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। परिवहन क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 16% हिस्सा उत्सर्जित करता है। स्वच्छ ऊर्जा के समाधान तब तक अधूरे हैं जब तक हम सड़कों पर दौड़ रहे करोड़ों पेट्रोल डीजल वाहनों का विकल्प नहीं खोज लेते। इलेक्ट्रिक वाहनों का डीकार्बोनाइजेशन में अहम भूमिका है, क्योंकि ये वाहन सीधे तौर पर धुआं को शून्य कर देते हैं। यदि इन वाहनों को चार्ज करने वाली बिजली सौर या पवन ऊर्जा से आती है तो परिवहन का पूरा चक्र कार्बन न्यूट्रल हो जाता है। हमारे देश भारत में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी है, लेकिन वाहनों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बैटरी की उच्च लागत के कारण इलेक्ट्रिक वाहन लेना आज भी बहुत लोगों के लिए एक चुनौती है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाते हैं तो न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बल्कि शहरों की हवा में मौजूद घातक नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM2.5 कणों में भारी गिरावट आएगी। जब हम स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं तो सौर और पवन ऊर्जा बिजली के लिए बेहतरीन है, लेकिन भारी उद्योगों जैसे स्टील, सीमेंट और जहाज निर्माण को केवल बिजली से चलाना कठिन है। यहीं पर ग्रीन हाइड्रोजन की भूमिका शुरू होती है। हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है, लेकिन यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता, इसे हमें पानी से अलग करना पड़ता है। सौर या पवन ऊर्जा की बिजली का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तब ऐसे उत्पन्न हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, और इसे जलाने पर केवल जल वाष्प पानी की भाप निकलती है, कोई कार्बन नहीं। पारंपरिक रूप से स्टील बनाने में कोयले का उपयोग होता है। ग्रीन हाइड्रोजन इस कोयले की जगह ले सकता है, जिससे दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक स्वच्छ हो सकता है। भारी परिवहन के क्षेत्र में ट्रक, जहाज और हवाई जहाज के लिए बैटरियां बहुत भारी होती हैं। हाइड्रोजन गैस एक हल्का और उच्च ऊर्जा वाला विकल्प प्रदान करता है। हाइड्रोजन को गैस के रूप में लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है, जो सर्दियों या कम धूप वाले दिनों में बैकअप का काम करता है। आइए हम जानते हैं अब कि व्यक्तिगत स्तर पर हम स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके कैसे जलवायु परिवर्तन में समाधान दे सकते हैं। एक आम नागरिक जलवायु परिवर्तन के समाधान में विभिन्न तरीके अपना सकता है, जैसे कि वो अपने छत पर सौर पैनल लगाकर न केवल बिजली का बिल कम कर सकता है, बल्कि ग्रिड पर कोयले आधारित बिजली का दबाव भी कम कर सकता है। ऊर्जा कुशल उपकरण का उपयोग करके, जैसे हाई स्टार रेटिंग वाले उपकरणों, LED बल्ब, BLDC पंखे का उपयोग करके यह कम ऊर्जा के समान आउटपुट देते हैं। परिवहन क्षेत्र में छोटी दूरियों के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना, और लंबी दूरी के लिए सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, बस या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देना। जलवायु परिवर्तन का समाधान केवल भाषणों या समझौते में नहीं है, बल्कि जमीन पर लगे सोलर पैनलों, घूमते हुए पवन चक्कियों और सड़कों पर दौड़ते इलेक्ट्रिक वाहनों में है। स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाना हमारे लिए कोई विलासिता नहीं, बल्कि इस ग्रह पर मानवता के बने रहने की शर्त है। भारत अपनी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण इस बदलाव का केंद्र बन सकता है। यदि हम आज निवेश करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा नीला ग्रह सौंप पाएंगे जो न केवल तकनीकी रूप से उन्नत होगा, बल्कि सांस लेने के लिए सुरक्षित भी होगा।
1: जलवायु परिवर्तन के समाधान में स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका विषय पर आप सुन रहे थे वार्ता। वार्ताकार थे विशाल कुमार श्रीवास्तव, और इसी के साथ आज का खुला आकाश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2026 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस अवसर पर झारखंड और विशेष रूप से रांची के लिए एक गौरवपूर्ण समाचार सामने आया है। रांची के प्रतिभाशाली छात्र शौर्य शेखर ने जेईई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 2414वीं रैंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। अपनी मेहनत, लगन और अनुशासित तैयारी के बल पर शौर्य ने यह मुकाम हासिल किया है और अपने परिवार, शिक्षकों तथा पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। जेईई एडवांस देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में से एक मानी जाती है। ऐसे में ऑल इंडिया रैंक पर और झारखंड के स्टेट टॉपर किसी भी छात्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। शौर्य की यह सफलता उन हजार विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास रहते हैं। इस उपलब्धि पर शौर्य शेखर को आकाशवाणी रांची की ओर से हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हमें विश्वास है कि वे आगे भी शिक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे तथा समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। एक बार फिर से रांची के होनहार छात्र शौर्य शेखर को उनकी शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको संक्षिप्त जानकारी देते चलें। आज शाम आप 5:30 पर सुनेंगे श्रमिक लोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज भारतीय सिनेमा के असली शोमैन राजकुमार की पुण्यतिथि पर विशेष जानकारी सुनेंगे। बापू के इकलौती रेडियो यात्रा, साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा सहारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड विषय पर जानकारी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की। 6:02 पर आप सुनते हैं शाम को किसान वाणी। आज चर्चा का विषय होगा मिट्टी जांच की उपयोगिता। आज की बात बहुस्तरीय फल बागवानी विषय पर भी बातें होंगी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रविन्द्र कुमार सिंह। वेट करता होंगे संजीव कुमार लाल। कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। शाम के 6:32 पर सुनिए हमारा कार्यक्रम हमारी दुनिया। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा मोबाइल का सीमित प्रयोग करें। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की। आदिवासी आंकड़ा आप सुनते हैं 7:15 पर। आज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे खड़िया भाषा में। इस कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय होगा छोटी छोटी बचत भविष्य के लिए जरूरी। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे जानकारी में आयुष्मान योजना के बारे में। प्रस्तुत करता होंगे प्रदीप कुमार।

कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जिसे हम रिले करेंगे। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को कुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7 फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और

0: आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
1: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2 to 3 ब्रांचेस आल्सो।
0: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: 21 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
4: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नवनियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थ

0: भागी बलराज पवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में दो पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन ने कहा, म्यांमा भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। म्यांमार प्रेसिडेंट ऊ मिन आउंग क्लाइंग सेज हिज कंट्री विल नॉट अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स। India and US have finalized most elements of first phase of bilateral trade agreement, says Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. Uttarakhand's UNESCO World Heritage Site, Valley of Flowers, opened to tourists. 22 rowers included in TOPS development group ahead of Asian Games 2026. And in hockey, India registered dominant 4-1 win over Korea in Men's Under 18 Asia Cup. Myanmar President Ooh Min Aung Hlaing has assured Prime Minister Narendra Modi that Myanmarese territory will not be allowed to be used against India's security interests. The two leaders held wide-ranging talks to boost bilateral ties in trade, defence, energy and connectivity in New Delhi yesterday. Mr. Ong Hlaing is on a 5-day visit to India. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said the President of Myanmar reiterated

0: डिजिटलीकरण से नागरिकों को भूमि संबंधी अद्यतन जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी तथा विवादों में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए बेहतर सड़क नेटवर्क और रूट चार्ट तैयार करने पर भी जोर दिया। बैठक में सड़क सुरक्षा, IDTR, वाहन निरीक्षण केंद्र, गुड सिमेटिरन योजना तथा गुरुजी आपातकालीन सेवा 1944 को शीघ्र लागू करने समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। झारखंड की 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन का दौर जारी है। अब तक एक भी नामांकन नहीं दाखिल हुआ है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति से संबंधित पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। जमशेदपुर दौरे के दौरान परिसदन में मीडिया से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि प्रदेश इकाई ने सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी रिपोर्ट तैयार की है। अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करेगा।
1: भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट की चुनाव समिति है, लोग बैठे थे, बैठ करके हम सब लोगों ने चर्चा की और केंद्र को हम लोगों ने अवगत करा दिया है का जो केंद्रीय चुनाव समिति होती है वो फिर तय करते हैं मतलब किसको लड़ाना। तो अब केंद्र जब तय करेगी तो आप सब लोगों को अधिकृत रूप से हटा देगी।
0: इधर महागठबंधन में कांग्रेस और झामुमो के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन का दौर जारी है। देवघर में पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने श्रावणी मेला की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। आगामी श्रावणी मेला के सफल संचालन को लेकर देवघर और दुमका जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: NH की तरफ से यह आश्वस्त किया गया है कि DRM आसनसोल से बात करके रेलवे का ब्लॉक लेते हुए ससमय उसको पूरा कर लिया जाएगा। इंटर डिपार्टमेंटल में NHAI, रेलवे और हमारा जिला प्रशासन मिलकर काम कर लेगा। देवघर जिला प्रशासन और दुमका जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों से जो आवंटन की मांग की है उसकी सूची हम लोगों ने प्राप्त कर ली है कि ससमय यह आवंटन जिला को उपलब्ध हो जाए जिससे किसी भी काम को करने में कोई विलम्ब ना हो।
0: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने रांची के नगड़ी और इटकी प्रखंड में हनी वैल्यू चेन परियोजना के तहत संचालित हनी माइग्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन और पैकेजिंग व्यवस्था का जायजा लेते हुए उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने तथा व्यवसाय के विस्तार पर जोर दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के xhandle@airnews_ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विधानसभा की ध्यान आकर्षण विशेष समिति ने धनबाद में खनन प्रभावित रैयतों के मुद्दे को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने की। इस दौरान BCCL, CCL और ECL की खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयत परिवारों को मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन उपलब्ध कराने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रभावित परिवारों से आवेदन भी लिए गए और विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। विशेष समिति के अध्यक्ष टुंडे विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि समिति का उद्देश्य खनन कार्यों के कारण भूमि गंवाने वाले रैयतों को न्याय दिलाना है। यह बैठक 3 दिनों तक चलेगी।
3: इस समिति जब से 9 महीना बना तब इसी दरमियान 220 करोड़ रुपया भुगतान BCCL ने सरकार को किया है और वो भी काफी अधूरा है। हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि BCCL, CCL, DCL जितने भी कंपनी यहाँ सरकारी जमीन को जो उपयोग कर रहे हैं उसका भी राशि दे।
0: रांची प्रक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक सह पुलिस महानिरीक्षक मनोज कौशिक ने पुलिस के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी, संगठित अपराध, भूमि अपराध और गुमशुदा बच्चों से जुड़े मामलों की

0: समीक्षा करते हुए विशेष अभियान चलाने तथा 10 से 25 जून तक शैक्षणिक संस्थानों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्णय लिया गया।
1: कुछ जो बहुत अच्छे कार्य रांची जिला बल में हुए हैं उसके लिए कुल 23 पदाधिकारियों को आज प्रशस्ति पत्र मेरे द्वारा दिया गया है। जो मादक पदार्थों की सेल या बहुत सारे अच्छे कार्य रांची जिला बल में हुए हैं, जहां पे कुछ क्रिमिनल्स को भी पकड़ा गया है, कि सिर्फ कैरियर्स ही नहीं बल्कि जो उसका स्रोत है उस पे एक्शन होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं उस पे एक्शन होना चाहिए।
0: रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने पुलिस अधीक्षक यातायात के साथ अल्बर्ट टिक्का चौक से अंजुमन प्लाजा तक यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क किनारे अवैध पार्किंग, अतिक्रमण और फुटपाथ पर वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने सुचारू यातायात व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए।
2: मेन रोड का जो ट्रैफिक है उसको हम लोग प्रयास है हमारा कि उसको थोड़ा हम लोग हैसल फ्री बनाएं और जो अनावश्यक कंजेशन जो जगह जगह पे लग रहा है उसको हम लोग रिमूव करें ताकि पब्लिक को आने जाने में आसानी हो। ये सबसे बड़ा चोक पॉइंट पूरे राजधानी का यही है, ये और एक किशोरगंज चौराहा है, तो हमारा ये प्रयास है कि यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको स्मूथ बनाकर कुछ बैरिकेडिंग इत्यादि करके और अपने जो हमारी ट्रैफिक की पुलिस है उनको प्रॉपर ब्रीफिंग करके और उन पर डिप्लॉयमेंट करके हम लोग एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पे जो है बनवाएं।
0: सरायकेला खरसावां जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, सक्रिय और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन में एक बड़ा उलटफेर किया गया है। पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने जिले के 12 थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण कर दिया है। खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू प्रखंड क्षेत्र में आयोजित 6 दिवसीय मंडा मेला श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। छऊ नृत्य कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने किया। इस दौरान पारंपरिक झूलन अनुष्ठान और दहकते अंगारों पर चलकर शिवभक्तों ने धार्मिक परंपरा निभाई। राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री की विभागीय समीक्षा और निर्देश की खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सीएम का निर्देश, अब राज्य में विद्यार्थियों को साइकिल की जगह इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगी। हिंदुस्तान के शब्द हैं, राज्यसभा चुनाव, झारखंड में पहले दिन एक भी नामांकन नहीं। दैनिक जागरण ने लिखा है, हेमंत खरगे में बातचीत, झामुमो प्रत्याशी की घोषणा आज संभव। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पीडीएस सिस्टम में गुणवत्ता लाने के लिए प्रशिक्षित होंगे अधिकारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में जमीन के रिकॉर्ड होंगे डिजिटल, मुख्यमंत्री ने भूमि अभिलेखों के एकीकरण और सड़क सुरक्षा की समीक्षा की, पंचायतों में लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस कैंप। राज्यसभा चुनाव को लेकर पहले दिन एक भी नामांकन नहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा, उम्मीदवार पर केंद्रीय नेतृत्व लेगा निर्णय, गठबंधन ने दोनों सीट पर किया जीत का दावा। पर्यटन मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने देवघर में की श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा, कहा श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम जलार्पण कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। धनबाद में विधानसभा की विशेष समिति ने खनन प्रभावित रैयतों को मुआवजा और नियोजन को लेकर की समीक्षा बैठक, प्रभावित परिवारों से लिए गए आवेदन। और राज्य के कई जिलों में आज भी आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना, 8 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्स और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्स पर। और मैं हूँ आपका रेडियो साथी विश्वजीत पात्र।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है अब लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज के हमारे कलाकार हैं किशन उरांव और साथी इनसे आप सुनेंगे उरांव लोकगीत।

किसुन उराव और साथियों के आवाजों में अभी आप लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग का आनंद ले रहे थे और इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का लोक रंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन। सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत, विश्वजीत का नमस्कार। आज 2 जून का दिन हिंदी सिनेमा की दमदार और लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के नाम है। सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा तथा अभिनेत्री पूनम सिन्हा की बेटी सोनाक्षी आज अपना जन्मदिन मना रही है।

सोनाक्षी सिन्हा का फिल्मी सफर कैमरे के सामने नहीं बल्कि कैमरे के पीछे शुरू हुआ। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और शुरुआती दिनों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम किया। इसके बाद सलमान खान के साथ फिल्म दबंग में रज्जू के किरदार ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। यह फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी।

दबंग की सफलता के बाद सोनाक्षी ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। राउडी राठौर, सन अप सरदार, हॉलीडे और दबंग 2 जैसी फिल्मों में उनकी मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आई। लेकिन केवल व्यावसायिक फिल्मों तक ही सीमित न रहकर उन्होंने लुटेरा जैसी संवेदनशील फिल्मों में भी अपने अभिनय का एक अलग रंग दिखाया। इस फिल्म में उनके अभिनय की आलोचकों ने भी खूब प्रशंसा की।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन। श्रोताओं, बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा केवल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि गायिका भी है। उन्होंने कई गीतों में अपनी आवाज़ दी है और संगीत के क्षेत्र में भी कदम रखा है। समय के साथ उन्होंने खुद को नए किरदारों और नई चुनौतियों के अनुरूप ढाला। हाल ही के वर्षों में वे दहाड़, हीरामंडी जैसी चर्चित वेब सीरीज में भी नजर आई, जहाँ उनके अभिनय को सराहा गया।

सोनाक्षी सिन्हा की सबसे बड़ी खूबी है उनका आत्मविश्वास और अपनी अलग पहचान बनाए रखने का जज्बा। उन्होंने कई अवसरों पर कहा है कि उन्होंने अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से यह सीखा है कि जीवन में खुद पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। आज वे हिंदी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने समय के साथ खुद को लगातार निखार और नए प्रयोग किए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्यघर।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.

श्रोताओं, आज के रेसिडेंशियल में हमने जाना लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के जीवन, संघर्ष, सफलता और उनकी प्रेरणादायक फिल्मी सफर के बारे में। पटना की धरती से निकलकर हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाने तक का उनका सफर मेहनत, लगन और आत्मविश्वास की एक खूबसूरत मिसाल है। उनके सशक्त अभिनय और बेबाक व्यक्तित्व से उन्होंने दर्शकों के दिल में एक विशेष स्थान बनाया है। सोनाक्षी सिन्हा को उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी रांची परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि वे जीवन में निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूती रहे और अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रसरंजन यही संपन्न होता है। विश्वजीत का नमस्कार।

आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए सरोद पर राग विलास खानी तोड़ी, आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध है। कलाकार हैं पंडित मनोज कुमार केडिया, संगत कर रहे हैं तबले पर श्रीजीत चैटर्जी।

अभी आप सुन रहे थे पंडित मनोज कुमार केडिया से सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी आलाप और जोड़ की बात दो गतें मध्य लय की गत जप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्धता संगत कर रहे थे तबले पर श्रीजीत चैटर्जी और इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुने कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आज इस कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय होगा आईपीएल आरसीबी चैंपियन। इसी कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक वैभव सूर्यवंशी के बारे में। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी की है और कार्यक्रम की प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की।
1: क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल का खिताब एक बार फिर आरसीबी के पास आया है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर चैंपियन बना। इसके पहले 18 साल लगे थे चैंपियन बनने में, इस बार सिर्फ एक साल बाद आरसीबी फिर से चैंपियन बना है। पर्सनालिटी में बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की। 680 रनों में 610 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं, तो इस अनूठे वैभव की चर्चा करेंगे। खेल खबरें तो होंगी ही, खास खास में आज हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन के अनोखे कोर्ट के बारे में। इसके अलावा इनहांस्ड गेम एक अनूठा प्रयास शुरू किया गया, लेकिन इसमें सफलता बहुत हद तक नहीं मिली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आईपीएल की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आईपीएल 2 महीने के सफर के बाद आईपीएल खत्म हुआ और आरसीबी फिर से एक बार चैंपियन बना है। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर इतिहास रच डाला। आईपीएल सीजन 19 के फाइनल में गुजरात को आरसीबी ने 5 विकेट से हराया और लगातार दूसरी बार ये टीम चैंपियन बन गई। आरसीबी ऐसा करने वाली इतिहास की तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई ने 2010 और 2011 में लगातार ये खिताब आईपीएल का खिताब जीता था। फिर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई ने 2019 और 2020 में इसी तरह लगातार 2 साल मुंबई की टीम चैंपियन बनी थी। आरसीबी ने पिछले साल 3 जून 2025 को यह खिताब पाया था और इस खिताब को पाने में

18 साल लगे थे, 18 साल का सूखा पिछले साल खत्म हुआ था। इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पिछले साल पंजाब को हराकर आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था और इस बार जीत के साथ ये पहली टीम बन गई जिसने अपने शुरुआती दोनों आईपीएल खिताब एक ही न्यूट्रल मैदान पर लगातार 2 साल जीते हैं। थोड़ी मैच की चर्चा कर ले दोस्तों। आरसीबी ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। गुजरात 20 ओवर में 155 रन बना सकी। मैच के हीरो विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाकर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। विजयी छक्का भी विराट कोहली के बल्ले से लगा। बेंगलुरु की पहली जीत 18 साल के इंतजार के बाद आई थी, इस बार 12 महीने के इंतजार के बाद आई। अगर पूरे मैच की बात करें, टर्निंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ 45 रन गुजरात की टीम ने बनाए थे। टॉप स्कोरर ओपनिंग जोड़ी गिल और साई दोनों के विकेट चले गए थे। गिल 10, साई 12, बटलर 19, तीनों मिलकर सिर्फ 41 रन बना सके। औसत स्ट्राइक रेट 103 का रहा। वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन और अरशद ने 15 रन बनाया और उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। रबाडा ने 15 की इकोनॉमी से 3 ओवर में 44 रन दिए। एक ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ राशिद खान प्रभावी बॉलर रहे। विकेट कीपर ने अय्यर का कैच मिस कर दिया। पावर प्ले में बाउंड्री पर 2 बार मिसफील्ड रहे और 2 रन आउट भी चुके। तो ये बहुत सारे रीजंस रहे जो गुजरात की टीम के हार के कारण बने। अब अगर हम बेंगलुरु की बात करें, टर्निंग पॉइंट की बात करें, तो शुरू के 6 ओवर में 70 रन जड़ दिए गए। वेंकटेश अय्यर ने 200 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंद में 32 रन बनाए। चेज मास्टर कोहली ने 25 गेंदों में 52 रन के साथ आईपीएल के इतिहास में अपने सबसे तेज 50 लगाई उन्होंने। पार्डिकल, पाटीदार और कुणाल के विकेट जल्दी गिरने के बाद डेविड ने 17 गेंदों में 24 रनों की अच्छी पारी खेली। रसिक ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर हेजलवुड के 2-2 विकेट रहे और सभी की इकोनॉमी 10 से नीचे रही। पावर प्ले के 3रे ओवर में पाटीदार ने 19 मीटर दौड़कर कप्तान गिल का कैच पकड़ा और जिसने सारे मैच का रुख बदल दिया। अब अगर रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो 40 गेंदों तक गुजरात की शून्य बाउंड्री थी। पाटीदार लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने वाले 3रे कप्तान बने। तो कुछ रिकॉर्ड्स की भी हम चर्चा करते हैं। गुजरात ने इस मैच के दौरान लगातार 40 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इससे पहले 2009 में डेक्कन और बेंगलुरु के बीच फाइनल में 35 गेंदों में बाउंड्री नहीं लगी थी। फाइनल में कोहली ने 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ नाबाद 75 रन बनाए और इसी के साथ आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज 50 उन्होंने जड़ी और 2018 में राजस्थान के खिलाफ 26 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक बनाया था। रजत पाटीदार की अगर हम बात करें, तो रजत पाटीदार आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बतौर फुल टाइम कप्तान अपने पहले 2 सीजन में टीम की कमान संभालते हुए उसे आईपीएल का चैंपियन बना दिया। टीम को 2 बार चैंपियन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और रोहित जैसे कप्तानों के क्लब में पाटीदार भी शामिल हो गए। आरसीबी ने आईपीएल इतिहास में सबसे कम समय के भीतर यानी महज 363 दिनों के अंदर 3 जून 2025 से 31 मई 2026 ये जो समय रहा, शुरुआती 2 लगातार खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड की बात करें, अवार्ड की बात करें, तो वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप के अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड मिला। सुपर सिक्स की बात करें तो 72 छक्के लगाए, 10 लाख रुपए इनाम के रूप में मिले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर के रूप में भी अवार्ड मिला, 10 लाख रुपया। प्राइज मनी की अगर हम बात करें, तो बेंगलुरु को यानी विजेता टीम को 20 करोड़ और गुजरात की टीम यानी उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिले। तीसरे और चौथे स्थान की टीमों को, राजस्थान को 7 करोड़ और हैदराबाद को 6.5 करोड़ रुपए दिए गए। कोहली ने 208 के स्ट्राइक रेट से मात्र 25 गेंद में आईपीएल इतिहास में अपना सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। फाइनल में यह उनका 2016 के बाद पहला अर्धशतक था। इससे पहले फाइनल में उनका स्ट्राइक रेट 126 था।
37 साल 207 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच बने कोहली। आईपीएल फाइनल में कुंबले

के बाद दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। आईपीएल फाइनल एक ही वेन्यू पर जीतने वाली तीसरी टीम बनी आरसीबी, जैसा कि हमने आपको बताया। मुंबई ने कोलकाता, हैदराबाद और कोलकाता ने चेन्नई में ऐसा किया है। पांचवी बार आईपीएल खिताब जीते कृणाल धोनी, किरण पोलार्ड और हार्दिक पांड्या की बराबरी की। सिर्फ रोहित और नायडू 6-6 बार ही उनसे आगे हैं। चौथी सबसे सफल टीम रही बेंगलुरु। अगर ट्रॉफी जीतने की बात करें तो चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता है। मुंबई ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता है। चेन्नई और मुंबई की टीमें 5-5 बार जीती हैं। कोलकाता की टीम ने 3 बार यह खिताब जीता है और वो है 2012, 2014 और 2024 में। बेंगलुरु ने 2025 और 2026 में खिताब जीता है। राजस्थान ने एक बार 2008 में, डेक्कन चार्जर ने 2009 में, हैदराबाद ने 2016 में और गुजरात ने 2022 में खिताब जीता है। अब लीग रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो कुछ लीग रिकॉर्ड की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो सीजन रहा आईपीएल का 19वां सीजन, इसमें 1426 छक्के लगे। लीग इतिहास में पहली बार 1300 से अधिक छक्के लगे। 2025 में 1294 छक्के लगे थे और उसका रिकॉर्ड ये टूट गया। चौकों का आंकड़ा भी पहली बार 2300 यानी 2300 के पार पहुंचा। बल्लेबाजों ने 2332 चौके लगाए। पिछले सीजन में 2245 चौके लगे थे। पहली बार किसी भारतीय ने 150 रनों की पारी खेली और इस खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। केएल राहुल ने पंजाब के खिलाफ 152 नॉट आउट रन जड़े और ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे बैटर हैं। मौजूदा सीजन में 26,151 रन बने और आईपीएल के एक सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले सीजन में 25,166 रन बने थे। सीजन में कुल 65 बार टीमों ने 200 से अधिक का टोटल बनाया, यह भी एक सीजन में रिकॉर्ड है। पिछले साल 52 बार ऐसा हुआ था। सीजन में रिकॉर्ड 50 भी लगे, 154 50 लगे। पिछले सीजन में 143 बार बैटर्स ने अर्धशतक की पारियां खेली थी। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 9 अर्धशतक उन्होंने लगाए। बैटर्स ने 156.34 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे। एक सीजन में बेस्ट स्ट्राइक रेट है ये और पिछले सीजन 152.39 का रिकॉर्ड था। इस सीजन में सबसे ज्यादा 17 बार 200 से अधिक का लक्ष्य भी चेज हुआ। पिछले सीजन में मात्र 9 बार ऐसा हुआ था। पहली बार सीजन में बैटिंग का औसत 29 से अधिक रहा। बल्लेबाजों ने सीजन में 29.78 की औसत से रन बटोरे। पिछली बार ये 28.99 था। टीमों ने 9.88 की रन गति से बैटिंग की, यह आईपीएल सीजन में सबसे बेहतरीन है। पिछली बार 9.62 के रन रेट से बल्लेबाजी हुई थी। अब इस सीजन में 15 शतक लगाने वाले अगर खिलाड़ियों के नामों की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल का, जिन्होंने 67 बॉल में 152 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट 226.87 था। अभिषेक शर्मा ने 68 बॉल में 135 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे, स्ट्राइक रेट 198.53 था। रयान रिकेल्टन ने 55 गेंद में 123 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 223.64। संजू सैमसन ने 56 बॉल में 115 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 205 का। डिकॉक ने 112 रन बनाए मात्र 60 बॉल में और स्ट्राइक रेट 186.67 का रहा। मिचेल मास ने 56 गेंद में 111 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 198.21 का रहा। कूपर कोनोली ने 59 बॉल में 107 रन बनाए, नाबाद रहे, स्ट्राइक रन रेट 181.36 का रहा। विराट कोहली, जो इस पूरे टूर्नामेंट के हीरो रहे, उन्होंने 60 बॉल में 105 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 175 का। शुभमन गिल ने 53 बॉल में 104 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 278.38 का। तिलक वर्मा ने, वैभव सूर्यवंशी ने 37 बॉल में 103 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 278 का। तिलक वर्मा ने
45 बॉल में 101 रन बनाए और 224.44 का स्ट्राइक रेट रहा। समझो सैंक्शन

पर्सनालिटी में बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की, यानी अनूठे वैभव की। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी से इस पूरे आईपीएल में तहलका मचा दिया। T20 में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बैटर ने एक आईपीएल में 200 से अधिक के स्ट्राइक रन रेट से 550 से ज़्यादा रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप हासिल किया और उन्होंने 776 रन बनाए, 72 छक्के उन्होंने लगाए और ऐसा करने वाले वह पहले बैटर बने। किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी सीजन में किसी भी खिलाड़ी ने इतने रन नहीं बनाए। बेबी बॉस ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के आईपीएल के 2012 में बनाए गए 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव की बल्लेबाजी को बयां करने के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जैसे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। पावर प्ले में 490 रन बनाए उन्होंने और 37 छक्के जड़े। एक सीजन में किसी बैटर का पावर प्ले में ये रिकॉर्ड है और इस दौरान स्ट्राइक रन रेट 231.18 रहा। मिडिल ओवर्स में वैभव और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते थे क्योंकि स्ट्राइक रेट 235.38 तक पहुंच जाता था। पिछले 6 ओवरों में हर 5 गेंद पर 1 छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन मध्य ओवरों में ये रेट थोड़ा घट गया। उन्होंने 72 छक्कों में से 54 पेसर्स के खिलाफ जड़े। 232 गेंदों पर 247.84 के स्ट्राइक रेट से तेज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना उनकी शानदार टाइमिंग और हेड आई कोऑर्डिनेशन को साबित करता है। उन्होंने बुमराह, कमिंस, एनगेडी, सिराज, बोल्ट जैसे 150 की रफ्तार वाले दिग्गज पेसर्स के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगाया, जो उनकी आक्रामक मानसिकता को दिखाता है। केवल एक बार ऐसा हुआ जब किसी खिलाड़ी ने एक ही सीजन में ऑरेंज कैप जीती हो, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हों और सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट हासिल किया हो। यह कारनामा 2011 में RCB के लिए गेल ने किया था। सिक्स और स्ट्राइक रेट के मामले में तो उनके आसपास कोई नज़र नहीं आता। और इधर वैभव ने भी ऑरेंज कैप हासिल किया। वैभव सूर्यवंशी ने 5 अवार्ड जीते, सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड, सुपर सिक्स का अवार्ड, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड और ऑरेंज कैप भी उन्हें ही मिला। तो दोस्तों, वैभव एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और बड़े बड़े खिलाड़ी भी इनको दाद दे रहे हैं। और दोस्तों, अब हम खास में बात करने जा रहे हैं फ्रेंच ओपन के अनोखे कोर्ट की। फ्रेंच ओपन के शोर, भीड़ और टेनिस के रोमांच से कुछ दूर एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। फ्रेंच ओपन की मेजबानी करने वाले रोला गैरो स्टेडियम के बीचों बीच बना आर्टे बॉटनिकल गार्डन मानो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। यहाँ 500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और उनके बीच छिपा है एक अनोखा टेनिस कोर्ट, कोर्ट सिमोन मैथ्यू। इस कोर्ट का नाम 2 बार के पूर्व महिला सिंगल चैंपियन सिमोन मैथ्यू के नाम पर रखा गया है और यहाँ पहुँचने वाले खिलाड़ी और दर्शक पहले हरियाली के बीच से गुजरते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वे किसी बॉटनिकल पार्क में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है वहीं शांत जगह शोर और जुनून से भर उठता है। खासकर जब कोई फ्रेंच खिलाड़ी कोर्ट पर हो तब यहाँ का माहौल किसी फुटबॉल स्टेडियम जैसा लगता है। रविवार को फ्रांस के टीटुआ द्रोगे के मुकाबले में यही देखने को मिला। दर्शक लगातार द्रोगे अले के नारे लगा रहे थे, हर पॉइंट पर तालियां और शोर गूंज रहा था, लेकिन यह समर्थन द्रोगे के लिए दबाव भी बन गया। दुनिया के 110वें नंबर के खिलाड़ी द्रोगे मैच में अपनी लय नहीं पकड़ सके और सीधे सेटों में हार गए। शाम ढलने के बाद कोर्ट सिमोन मैथ्यू की खूबसूरती और भी ज़्यादा नज़र आने लगी। दर्शक जब सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी सीटों तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है मानो किसी गुप्त स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर हरियाली और फूलों की खुशबू, नीचे लाल मिट्टी का कोर्ट और बीच में हजारों दर्शकों की आवाज़ें, यही है इस कोर्ट को बाकी से अलग करता है। कोर्ट सिमोन मैथ्यू सिर्फ एक टेनिस कोर्ट नहीं बल्कि रोल

गैरों की एक नई पहचान है। यहाँ हरियाली की शांति भी है और खेल का उन्माद भी। दिन में यह जगह किसी बगीचे जैसे लगती है, लेकिन रात होते होते यही कोर्ट खिलाड़ियों के लिए सबसे कठिन परीक्षा का स्थान बन जाता है। साल 2019 में शुरू हुआ यह कोर्ट फ्रेंच ओपन का तीसरा सबसे बड़ा कोर्ट है। इसकी खासियत सिर्फ इसकी क्षमता या आधुनिक डिजाइन नहीं, बल्कि उसका माहौल है। चार विशाल कांच के ग्रीन हाउस के बीच बना यह कोर्ट ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद टेनिस को अपनी गोद में जगह दी है। कोर्ट जमीन से करीब 4.5 मीटर नीचे बनाया गया है ताकि वह आसपास के बगीचों के साथ घुल मिल जाए। तो दोस्तों, ये अनोखा कोर्ट है। खिलाड़ियों को वहाँ खेल का तो आनंद आता ही है, साथ साथ ऐसा लगता है जैसे वह प्रकृति की गोद में जाकर बैठ गए हैं। खास खास में हम एक और बात की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कि एक अनोखा आयोजन हुआ, एनहांस टूर्नामेंट। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसकी हम चर्चा करते हैं। अमेरिका के लास वेगास में चमकती रोशनी, तेज संगीत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ और करोड़ों की इनामी राशि। दावा था यहाँ इंसानी शरीर की सीमाएं टूटेंगी और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन एनहांस्ड गेम का पहला आयोजन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। करीब 5 घंटे तक चली प्रतियोगिता में आखिर तक कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना। अंतिम इवेंट में ग्रीस के तैराक क्रिस्टियन गकोलो मेव ने 50 मीटर फ्री स्टाइल रेस 20.81 सेकंड में पूरी की और यह आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ 0.07 सेकंड बेहतर था। हालांकि यह रिकॉर्ड मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित स्किन सूट पहना था और डोपिंग भी की थी। फिर भी आयोजकों ने इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जश्न मनाया। इन हैंड्स गेम्स का मकसद ही अलग है। यहाँ खिलाड़ियों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं लेने की अनुमति हालांकि दी जाती है, कुछ प्रतिबंधित दवाएं लेने की छूट है। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाया जा रहा था कि खिलाड़ी किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में दिलचस्पी ले रहे हैं। दिलचस्प बात यह रही कि 3 ऐसे खिलाड़ी भी विजेता बने जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी भी तरह के प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं किया। अमेरिका के फ्रेड कैरली ने 100 मीटर दौड़ जीतने के बाद कहा कि बाकियों को और मेहनत करनी चाहिए, शायद थोड़ा और प्रतिबंधित दवा उन्हें लेना चाहिए। वहीं महिलाओं की 100 मीटर रेस जीतने वाली ट्रिस्टन एवलिन ने कहा कि यह साबित करता है कि जीत सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं मिलती बल्कि जुनून होना चाहिए। आयोजकों ने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से मशहूर आइसलैंड के स्ट्रांगमैन थॉर ब्योर्नसन 510 किलो डेडलिफ्ट का अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। कई वेटलिफ्टर 3-3 कोशिशों के बाद भी रिकॉर्ड से काफी दूर रहे। यहाँ तक कि जब कनाडा के वेटलिफ्टर बॉयडी सेंटावी असफल हुए तो आयोजकों ने नियम बदलते हुए उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया। माहौल किसी पेशेवर टूर्नामेंट से ज़्यादा स्कूल स्पोर्ट्स डे जैसा लग रहा था। हालांकि खिलाड़ियों के लिए इनाम बेहद बड़ा था। ब्रिटेन के तैराक बेन प्राउड ने 50 मीटर बटरफ्लाई जीत कर एक अन्य रेस में दूसरा स्थान हासिल कर करीब 3.5 करोड़ रुपये कमाए। उन्होंने कहा कि जब मैंने इन गेम्स के बारे में सुना तो लगा जैसे लॉटरी लग गई। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन था दोस्तों, जहां खिलाड़ियों को कुछ प्रतिबंधित दवाएं लेने की अनुमति थी। आयोजकों का दावा था कि इससे इंसानी क्षमता की नई सीमाएं सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं और कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसका विरोध भी किया। उनका मानना था कि यह खेल भावना के खिलाफ है और दोस्तों ऐसा हुआ भी। बहुत से ऐसे खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में आए जिन्होंने किसी तरह की कोई प्रतिबंधित दवाएं नहीं ली थी, इसके बाद भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और अवार्ड भी जीते। इसलिए ये आयोजन अपने आप में बिल्कुल अनोखा तो था, लेकिन बहुत सफल नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से।
मध्य प्रदेश के

0: समरदीप सिंह गिल ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में पंजाब के अनुभवी खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। दो बार के एशियाई खेलों के चैंपियन तूर ने 20.07 मीटर के पहले थ्रो के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन 25 वर्षीय गिल ने चौथे प्रयास में 20.46 मीटर का थ्रो कर बढ़त हासिल कर ली, जो अंत तक कायम रही। तूर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर है। उन्होंने पिछड़ने के बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन उनका अंतिम प्रयास 20.06 मीटर पर समाप्त हुआ। गेल ने भारतीय एथलेटिक महासंघ द्वारा निर्धारित ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 20.36 मीटर के क्वालिफाइंग मार्क को भी पार कर लिया। कर्नाटक के SSP और NCI त्रिवेंद्रम के संतोष कुमार टी ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग मार्क को पार कर लिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करते हुए विंसेंट केमर के खिलाफ एक कड़े और तनावपूर्ण मैराथन मुकाबले के बाद जीत हासिल की और आर प्रज्ञानंदा ने बेस्ली शो को हराया, लेकिन विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। गुकेश ने लगभग 5 घंटे तक चले 144 चाल के मुकाबले के बाद आर्मागेडन में जीत की बदौलत 1.5 अंक हासिल किए, जबकि कीमर को क्लासिकल मुकाबला बराबर रहने के कारण 1 अंक से ही संतोष करना पड़ा। झारखंड के खेल इतिहास में का दिन बुधवार का दिन बेहद खास रहा, जब राज्य के 3 प्रतिभाशाली पहलवान एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय कुश्ती टीम के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने रांची रवाना हुए। यह पहला अवसर है जब झारखंड से एक साथ 3 पहलवान सीनियर स्तर के एशियन गेम्स ट्रायल के लिए क्वालिफाई करने में सफल हुए हैं। ट्रायल के लिए रवाना होने वाले खिलाड़ियों में रिया कुमारी, अमित गोप और अभिषेक कुमार हैं। तीनों खिलाड़ी दिल्ली और लखनऊ में आयोजित चयन ट्रायल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ट्रायल में सफल रहने पर उन्हें जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। जेमिया रॉड्रिक्स यस्तिका भाटिया के शानदार अर्धशतकों के बाद पदार्पण कर रही तेज गेंदबाज नन्नी शर्मा की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की गैर मौजूदगी में खेल रही भारतीय टीम ने खराब शुरुआत से उभरते हुए 7 विकेट पर 188 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 8 विकेट पर 150 रन पर रोक दिया। 12 जून से शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले यह भारत की अंतिम सीरीज है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण और इसी के साथ अमित को विदा दीजिए। दोस्तों नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे क्रीड़ा जगत। आज आपने सुना, इसी कार्यक्रम में परिचर्चा का विषय था IPL RCB चैंपियन। इसी कार्यक्रम में आपने सुना वैभव श्रीवंशी के बारे में, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द वीक। रिपोर्ट संकलन प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी की थी और प्रस्तुति एवं संयोजन प्रभु शरण की थी। इसी के साथ आज का क्रीड़ा जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। सुबह के 10:28 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में। अगला कार्यक्रम है आपका मन पसंदीदा जोहार रांची। बस

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 और 5 सेकंड होने को हैं और हम उपस्थित हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम जोहार रांची को लेकर। जोहार रांची कार्यक्रम में मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता,
1: और मैं हूँ विश्वजीत,
0: और आप सभी को हमारा नमस्कार
1: जोहार।
0: और विश्वजीत कैसे हो?
1: मैं तो ठीक हूँ। और चलिए अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत प्यारे प्यारे गाने भी मुझे लगता है कि आप लेकर आई हैं।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ये कार्यक्रम जो है ना जोहार रांची, ये हम इसलिए लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, और जानकारियाँ करते करते जब कुछ मीठे मीठे गीत सुनने को मिले तो बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा।
0: तो कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं पहले इस खूबसूरत से गीत के साथ। बाकी चर्चा, जानकारी, खबरें सब हम देंगे थोड़ी देर में।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
7: जोहार रांची कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और विश्वजीत, कुछ अच्छी बातें हम अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे। तुम्हारे पास मुझे लगता है कुछ है ऐसी बात जो तुम बताने के लिए एकदम बिल्कुल उत्सुक हो, तो बताओ फिर।
8: बिल्कुल दीदी, हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि करते हैं एक सुविचार के साथ, तो आज का जो सुविचार है ना वो बहुत ही स्पेशल है। कहते हैं कि छोटी सी इस जिंदगी को यूं ही नफरतों में ना गंवाना, कल किसने देखा है यहाँ आज को ही अपना बनाना, शिकायतों से क्या मिलेगा आखिर, कोशिशों को ही अजमाना, हर हाल में आगे बढ़ना, यही है जिंदगी का अफसाना।
7: मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो तुमने बताई हैं कि आगे बढ़ना है, कोशिश करना है, और जिंदगी जो है ना उतार चढ़ाव का खेल है।
8: बिल्कुल,
7: बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं हमारे जीवन में जब हम थोड़े परेशान होते हैं, कभी बहुत खुश भी होते हैं, कभी लगता है कि काश ऐसा कुछ अच्छा हो जाता कि हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाती।
8: बिल्कुल, और जिंदगी है, मुझे लगता है कि जिंदगी है तो तकलीफ तो होना ही है। ऐसे में हमें घबराना नहीं है, बल्कि तकलीफों का सामना बिल्कुल डटकर और निडर होकर करना
7: है। हाँ, सही बात है। और अच्छा, एक बात तुमने गौर किया है, अगर तुम्हारे जीवन में एक जैसी जिंदगी चलेगी, बहुत खुशियां हैं, खुशियां हैं, खुशियां खुशियां हैं, तो तुम्हें लगेगा अच्छा रोज तो यही होता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए अब परेशानियां आती हैं जो हमें वापस से हमारे अंदर एनर्जी भरती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, ये परेशानी आई है, इससे हमको किसी भी तरह से निकलना है। तो जब हम कोशिश करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जिंदगी का जो सफर है ना विश्वजीत, एक बिल्कुल रास्ते की तरह है, टेढ़े मेढ़े भी मिलेंगे, सीधे रास्ते भी मिलेंगे। फिलहाल अभी एक रास्ता जो है ना हम अपने श्रोताओं के साथ तय करते हैं, वो है संगीत का रास्ता।

0: आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं जोहार रांची कार्यक्रम विश्वजीत और सुनीता के साथ। ये कार्यक्रम जारी रहेगा भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: तो जोहर रांची कार्यक्रम में विश्वजीत, आगे हम अपने श्रोताओं से क्या बातें करेंगे ये बताओ।
2: बातें करेंगे मौसम की, जो कि अमूमन बदल चुका है। जून के आते ही मौसम में भी बदलाव हुआ है और कल जिस प्रकार से आंधी बारिश हुई है, ऐसे में तो थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ गई है मुझे लगता है। दीदी
1: मुश्किलें बिल्कुल भी नहीं बढ़ी हैं, बल्कि थोड़ी राहत मिली है। और पता है कि जब तेज हवा और बारिश कल हुई तो मौसम शाम में तो बहुत अच्छा था, हालांकि अभी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, हो सकता है शाम तक बारिश आएगी। और बात कर ले मौसम विभाग के जानकारी की, तो ना रांची में जो अभी लगातार जो बारिश हो रही है उससे मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। अधिकतम तापमान जो है ना 33 डिग्री के आसपास रहता है और न्यूनतम 22.6 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और अभी जो आया है फोरकास्ट, उसके अनुसार 7 जून तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी, यानी थोड़ी सी राहत अभी हमें और मिलेगी। हाँ, और अच्छा
2: बारिश से तो राहत मिली रही है, लेकिन वो आंधी और तूफान से कहीं ना कहीं हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि कल जब जिस प्रकार से आंधी तूफान आई थी और ऐसे में बहुत सारे पेड़ मुझे लगता है कि गिरे, और अचानक से आंधी तूफान के कारण मुझे लगता है थोड़ा सा तैयारी करके रहना चाहिए।
1: और सबसे
2: 7 जून तक,
1: हाँ 7 जून तक रहेगा। और जब तेज हवाएं चलती है और जब बिजली कड़कती है वज्रपात की, तो उसमें बहुत लोगों की जान भी चली जाती है। तो अगर फोरकास्ट मौसम विभाग की ओर से आजकल सबके फोन पे आ जाते हैं, तो जैसे ही आपके फोन पे आता है थोड़ा सा ध्यान खुद का रखें। बिजली जब कड़कने की संभावना जताई गई हो तो उससे बचने का उपाय करिए। और सबसे खराब कब लगता है आंधी तूफान, जब चलता है ना तो लाइट तुरंत कट।
2: यही तो परेशानी है, बारिश हो मजा आता है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो आंधी तूफान हो और परेशानियां बढ़ती है, उससे कहीं ना कहीं हमें निजात पाना है, उससे बचना।
1: लेकिन फिर भी पहले से बहुत राहत है। और ऐसे ही मौसम गर्मी निकल जाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात तो है ना विश्वजीत की, गर्मी पड़ना भी जरूरी है। गर्मी नहीं पड़ेगी तो बारिश नहीं होगी, और इस बार वैसे भी कम बारिश का अनुमान जताया जा रहा है,
2: पहले की तुलना में 10% कम बारिश का अनुमान है इस साल।
1: तो कोशिश यही करनी चाहिए कि गर्मी पड़ रही है थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। जो उपाय हैं, जो प्रिवेंशन है उसके लिए, जो क्योर कर सकते हैं गर्मी को, वो सब अपने जीवन में अपनाना चाहिए ताकि मौसम का आनंद हम ले सके। मौसम का क्या है, मौसम आता जाता रहेगा, और जो प्यार और खुशियां हैं ना वो हमारे आसपास यूं ही बनी रहे, हम तो यही चाहते हैं।

0: और विश्वजीत, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने अच्छे अच्छे गीत की बात हो रही हो, तो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। हाँ। बात कर लेते हैं आज इतिहास की, क्योंकि इतिहास की जो घटनाएं होती है ना, वो हाँ। हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अच्छी चीजें हमें और अच्छा करने की प्रेरणा देती हैं, और बुरी चीजें जो हुई हैं, जो दुर्घटनाएं हुई हैं, वो हमें आगाह करती हैं कि ऐसा काम हम दोबारा ना करें, कि इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। तो इतिहास के पन्नों पर नजर डाल लेते हैं, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दिन से। आज सबको पता है 2 जून है, तो 2 जून 1996 को यूक्रेन अपने अंतिम परमाणु युद्धास्त्र रूस को सौंपने के साथ ही परमाणु मुक्त देश बना।
1: आज ही के दिन वर्ष 1999 को भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई थी।
0: और आज ही के

0: 2000 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनॉस ट्रिवन टावर्स दर्शकों के लिए खुला था।
1: ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी थी आज के दिन वर्ष 2004 में।
0: 2005 में 2 जून को भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन समाप्त हुआ था।
1: वर्ष 2008 में लेफ्टिनेंट जनरल नरेश कुमार परमार को थल सेना की चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया था।
0: और बात कर लेते हैं आज जिन्होंने जन्म लिया, जिनका जन्मदिन है आज। तो सबसे पहले बताएं कि इंडियन बिजनेसमैन बहुत बड़े रहे हैं शुरू में। जब पुराने भारत की बात कर ले, आज तो हम नए भारत में रहते हैं, तो 2 जून 1963 को नटराजन चंद्रशेखर, जो बहुत बड़े व्यवसायी थे अपने दौर में, उनका जन्म आज हुआ था।
1: आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज ही के दिन इलैया राजा, भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार तथा गायक का जन्म हुआ था। वर्ष था 1943।
0: 1951 में अनंत गीते, जो एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, उनका जन्म भी हुआ था। और 1955 में नंदन नीलकेनी, भारतीय उपक्रमी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस के सह संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, उनका जन्म भी आज हुआ था।
1: आज के दिन भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक में से एक मणि रत्नम का जन्म हुआ था वर्ष 1955 में।
0: 1955 में, जैसा तुमने बताया कि भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और क्रांतिकारी फिल्म निर्देशकों में से एक मणि रत्नम का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, बेहतरीन संगीत, विशेषकर उन्होंने A.R. रहमान के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, और राजनीतिक गंभीर विषयों पर आधारित फिल्मों के लिए पूरे भारत में ख्याति प्राप्त की।
1: और उनका जन्म 2 जून 1956 में मदुरई, तमिलनाडु में हुआ। वे शानदार कहानी कहने का अंदाज, साथ ही साथ बेहतरीन सिनेमाग्राफी, संगीत और दृश्यों का अनोखा मेल, और इनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
0: और इनका पूरा नाम पता है क्या तुमको? इनका पूरा नाम है गोपाल रत्नम सुब्रमण्यम, तो ये है, लेकिन इन्हें हम लोग मणि रत्नम के नाम से जानते हैं। और चेन्नई, तमिलनाडु टॉकीज प्रोडक्शन इनकी प्रमुख कंपनी है, और बहुत सारी फिल्में इन्होंने ऐसी बनाई है जो एपिक फिल्में भी इन्होंने बनाई है। हाँ। और साथ ही इनकी फिल्म रोजा, बॉम्बे, दिल से, और बहुत सारी क्लासिकल फिल्में नायकन, अंजलि, कन्नथिल, मुथमित्तल, और अभी जो नए प्रोजेक्ट आए 2022 में पोन्नियन सेल्वन और पोन्नियन सेल्वन 2, और इन्हें इनकी प्रमुख फिल्में हैं। और प्रमुख सम्मान में इन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला है
1: वर्ष 2002 में। और भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान देने वाले दृश्य और संगीत के जादूगर, महान फिल्म निर्देशक मणि रत्नम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: और सुनते हैं उनकी फिल्म का एक खूबसूरत संगीत।

0: और इतिहास की बात कर रहे थे हम विश्वजीत, तो आज हम उन्हें भी याद कर ले जो आज हमारे बीच से चले गए, यानी जिनका आज निधन हुआ है। तो अपने श्रोताओं को बताएं कि 2 जून 2004 को श्रीकांत जीचकर भारत के एक ऐसे योग व्यक्ति थे जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी।
1: आज के दिन भारतीय राजनीतिज्ञ एवं ब्रिटिश भारत उड़ीसा प्रांत के मुख्यमंत्री रहे विश्वनाथ दास का निधन हुआ था वर्ष 1984 को।
0: और आज ही के दिन 1978 में प्राण कृष्ण पारिजा पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका निधन हुआ था।
1: और आज 2 जून को हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक राजकपूर की पुण्यतिथि है, उनका निधन भी आज के दिन वर्ष 1988 को नई दिल्ली में 63 वर्ष की आयु में हुआ था। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उनसे जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका देहांत हुआ था।
0: और बात कर ले राज कपूर की, तो जिन्हें हम शोमैन के नाम से जानते हैं और जिन्होंने ऐसी अनगिनत फिल्में बनाई हैं कि अगर पूरे फिल्मों की बात करें या पूरे उनके जीवन की बात करें तो समय शायद एक दिन का भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि राज कपूर ना सिर्फ एक उच्च कोटि के कलाकार थे, अभिनेता थे, बल्कि निर्देशक और फिल्मकार बहुत ही उच्च कोटि के दर्जे के थे, मतलब उनके निर्माण तक पहुंचना आज भी लोगों के लिए टेढ़ी खेल है, वहां तक पहुंच पाना ही बहुत मुश्किल है।
1: और तभी तो भारतीय सिनेमा का द ग्रेटेस्ट शोमैन कहा जाता था। उन्होंने आवारा, श्री 420, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी जैसी कई कमाल की फिल्में दी हैं और निश्चित रूप से इन्हीं को देखते हुए वर्ष 1988 को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से उनको सम्मानित भी किया गया।
0: और राज कपूर की फिल्में न सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी बहुत चाव से देखी जाती थी। और एक गाना जो तुम्हें याद होगा कि मेरा जूता है जापानी, वो प्रायः हर कंट्री में बजता है और लोग इस गाने से इंडिया को जानते हैं, राज कपूर को जानते हैं और गुनगुनाते भी हैं। तो ये गीत हम भी अपने श्रोताओं के साथ सुन लेते हैं, है ना
1: जी।

0: आगे मिल जाएगी। मतलब सिविक सेंस होते हुए भी लोग कुछ नहीं करते हैं, जहाँ मन किया गाड़ी खड़ी की, सामान खरीदिए, चाय पी लिए, कुछ भी कर लिए, जाम होता है तो होता रहे। लेकिन इसके लिए खबर आई है।
1: हाँ, इसके लिए अब रांची और झारखंड की सरकार बिल्कुल सख्त हो चुकी है, क्योंकि अब आपके रांची शहर के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए अब नो पार्किंग जोन पे अगर आप वाहन खड़ा करते हैं ना, तो आपको ना केवल जुर्माना देना पड़ेगा बल्कि वाहन आपका जब्त भी हो सकता है।
0: ये अच्छी बात है,
1: कड़ा निर्देश दिया गया है।
0: हाँ, जरूरी भी है ना, क्योंकि बेतरतीब ढंग से चलती गाड़ियां, कोई कितनी स्पीड में चल रहा है, कोई दाया बाया, कोई कट नहीं, रॉन्ग साइड से चल रहा है, और ऐसी स्थिति में नो पार्किंग जोन में सबसे ज्यादा गाड़ियां खड़ी नजर आ रही है। तो जरूरी है कि इसको इसमें सुधार किया जाए, ताकि
1: ट्रैफिक को थोड़ा सा बेहतर और दुरुस्त करने के लिए ये सख्त कदम है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे हम सभी के लिए बेहतर है। और क्या ये निर्देश दिया गया है कि नो पार्किंग जोन पर अगर आप वाहन खड़ा करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन करते हुए भी अगर आप पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑटो ई रिक्शा चालकों द्वारा बीच सड़क पर सवारी बिठाने या उतारने पर रोक लगाई जाएगी। नियमों का पालन करते समय आम नागरिकों के साथ शालीनता से पेश आने की हिदायत दी गई है, और साथ ही साथ सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और चलाया जाएगा।
0: और बहुत जरूरी इसलिए भी है कि जब सड़कें स्मूथ ट्रैफिक चलती है ना, तो सब कुछ अच्छा लगता है, और इतने सारे फ्लाईओवर बन गए हैं, तो संभव हो अगर आपका रास्ता उस रास्ते में पड़ता है तो फ्लाईओवर का इस्तेमाल भी जरूर करें। बात तुमने अगर की है गाड़ियों की, ट्रैफिक की, तो ट्रेन में भी ट्रैफिक जाम होता है, पता है ना। तो कुछ बहुत जरूरी जानकारी है जो हमारे आँख से जुड़ी हुई है, तो अपने श्रोताओं को वो दे दे। जो ट्रेनें रद्द हो गई थी ना, अपने निर्धारित समय से चलेंगी। 8 मई को नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की गई थी, लेकिन सभी ट्रेनें अब वापस अपने निर्धारित समय से चलेंगी, जिसमें पुणे हटिया गया लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस वाया रांची, वास्को डिगामा जसीडी एक्सप्रेस वाया रांची समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए 10 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको गाड़ी आराम से मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि विकास कार्य के कारण 2 ट्रेनें भी प्रभावित रहेंगी, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के अंतर्गत विकास कार्य होगा, इसके कारण रोलिंग ब्लॉक किया जाएगा। इस कारण खड़गपुर हटिया एक्सप्रेस 3, 5 और 6 जून को और आद्रा हटिया आद्रा के बीच रद्द रहेगी। साथ ही टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 2, 3 और 6 जून को दूसरे मार्ग से चलेगी। तो अगर आप इन
1: अच्छी अच्छी जानकारी है, और मुझे लगता है कि इन जानकारी के साथ आपका जीवन, आपकी जिंदगी वो बेहतर और थोड़ा सा आसान हो जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि ना अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी ट्रेन रद्द हो गई है या लेट से चल रही है,
1: परेशानियों से आप बच सकते हैं।
0: तो फिलहाल अभी बातें बहुत लंबी हो गई है, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि बिल्कुल चलो फिर सुनते हैं।
2: कहाँ ले जाऊँ, कहाँ जाना है, अरे कुछ अता पता कोई ठिकाना है।

0: बात हम अपने झारखंड की कर रहे हैं विश्वजीत, तो तुम्हारे पास मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खबर है, तो जल्दी से बता दो।
1: बहुत ही अच्छी खबर है और हम सभी के लिए एक अच्छी खबर यही है कि स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब झारखंड के 2582 स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिलने जा रहा है।
0: अरे वाह।
1: और इसके लिए स्कूलों का चयन भी हो चुका है। इन स्कूलों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2025-26 के लिए चयनित किया गया है और इसके लिए ना अच्छी खासी राशि भी मिलने जा
0: अच्छा?
1: रही है।
0: बता दो।
1: मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए पहली से जो आठवीं तक और छठी से आठवीं की स्कूल की विद्यालय को 1.5 लाख रुपए, वहीं पहली से दसवीं और पहली से बारहवीं या छठी से बारहवीं और नौवीं से बारहवीं के स्कूलों को 2 लाख, इसके अलावा विशेष विद्यालय को भी 2 लाख, आवासीय विद्यालय को भी 2 लाख, निजी विद्यालय को भी 2 लाख की राशि दी जा रही है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे जो विद्यालय हैं और जिनका परिसर है उसको स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए बहुत बड़ी मदद है। हाँ। और मिलने वाली है।
0: और अच्छी बात यह है ना कि स्वच्छता कितनी जरूरी है, ये इस बात से भी पता चलता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए उन्हें पुरस्कार दिए जाते हैं ताकि और मन से वो अपने विद्यालय और विद्यालय का परिसर साफ सुथरा रखें, ताकि कहते हैं ना कि अच्छे स्वच्छता भरे माहौल में पढ़ाई करने से पढ़ाई करने में भी मन लगता है। तो तुमने अच्छी खबर सुनाई, तो एक खबर मैं अभी अच्छी सुना। हाँ, पता है क्या? अब रेगिस्तान में उगाई जा सकेगी फसल। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी बैक्टीरिया को विकसित किया है जो रेगिस्तान की रेत को मात्र 10 महीने में उपजाऊ मिट्टी में बदल सकता है। यह बैक्टीरिया रेत के कणों को आपस में जोड़ता है, नमी को रोक कर रखता है और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व को बढ़ाता है। प्रयोग में देखा गया है कि 10 महीने के बाद रेत में ह्यूमस बन जाता है और फसल उगाई जा सकती है। इस तकनीक से थार रेगिस्तान, सहारा और गोभी जैसे रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली भरी जा सकती है। तो हम तो चाहेंगे कि ये पूरे विश्व में जल्दी से जल्दी इस तकनीक का विकास हो ताकि हमारे जहाँ भी जो रेगिस्तान है वहाँ भी हम फसल उगा पाए।
1: हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए और अनाज भंडार के लिए बहुत
0: जरूरी है। तो अब उपयोगी है फिलहाल एक गीत सुनाना है ना, लेकिन गीत सुनाने से पहले एक छोटी सी जानकारी अपने श्रोताओं को और दे दे स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि स्वास्थ्य की बात करना भी जरूरी है और एक अच्छी खबर इसमें भी आई है
1: कि अब फेफड़ों के कैंसर का नया टीका बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्यूबा और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने मिलकर फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीरा नाम का ये टीका विकसित किया है। यह टीका उन मरीजों के लिए उपयोगी है जिन्हें फेफड़ों का कैंसर है या कैंसर को रोकने वाली बड़ी इलाज करने वाली है।
0: कैंसर जैसी बीमारी अब उतनी घातक नहीं रह गई जितनी पहले थी और ये जो वैक्सीन है ना, ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएगा और कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर उस पर हमला करेगा। और ये इस तरह की जब वैक्सीन और चीज़ें जब आती हैं ना, तो इलाज के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होती हैं। तो बहुत अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं ये टीका जल्दी से जल्दी बाजार में आए, ताकि पूरे बाजार में आए ताकि लोगों को इससे राहत मिले। और विश्वजीत, देखते देखते हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है और तुम भी सुबह से हो, तुम्हें भी अब जाना है क्योंकि बाकी काम भी होती है।
1: बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छे अच्छे गाने भी हमने सुनाए अपने श्रोताओं को, अच्छा लगा होगा हमारे श्रोताओं को
0: बिल्कुल। और इस कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से विदा भी लेते हैं और कहते हैं नमस्कार जोहार, लेकिन साथ में ये गीत भी सुनते हैं।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे जोहार रांची कार्यक्रम, और अब थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आपकी पसंद।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके ही पसंद किए कुछ प्यारे प्यारे से खूबसूरत से फिल्मी नगमे। कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आपके पसंद कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं इस कार्यक्रम में आपकी रेडियो दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म तुम्हारे लिए के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और धुन बनाई है जयदेव वर्मा ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं बठिंडा रोड डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, साथ ही आप हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म तुम्हारे लिए का ये खूबसूरत सा गीत।

पुनर्मिलन इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत के बोल लिखे इंदिवर ने, धुन बनाई है सी अर्जुन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गोंदा टाउन कांके रोड से रमेश प्रसाद जायसवाल, भीम सिंह, सिद्धि जायसवाल, अनुप्रिया भगत। साथ ही आप हैं नूर महल महसोल सीतामढ़ी से, मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। लीजिए अपनी पसंद पर सुनिए फिल्म पुनर्मिलन का ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

अगले गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता आप हैं, जतू का किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, शबाना आलम नाज, प्रवीण चांदनी नाज। साथ ही आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोणिका, प्रोणामिका और उत्कर्ष नेताम। आपने सुनना चाहा है फिल्म शहनाई का ये गीत। इस गीत को गाया मोहम्मद रफ़ी ने, गीत के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है रवि ने।

आनंद, इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से, हरदेव मेका, बलविंदर बीरक, जयतक बीरक, मीका बीरक। साथ ही आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दंतरेंगी से आप हैं भागवत वर्मा, लेवाई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से आप हैं दुर्गाराम साहू। लीजिए अपनी पसंद का सुनिए फिल्म आनंद का ये खूबसूरत सा गीत।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म आरजू से इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। पसंद करने वाले हमारे श्रोता आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। साथ ही आप हैं झारखंड बड़ा बाम्बो गाँव सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र। चकरधरपुर ग्राम केलिया लोहा से आप हैं कोमल बेसरा, बासंती, अनु, बनमाली, पूजा और सिद्ध कुमारी। अपनी पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर का गाया फिल्म आरजू का ये खूबसूरत सा गीत।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, 12 बजने को है, आपको इंतजार होगा महिलाओं को संबोधित हमारे दैनिक कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। आज चर्चा होगी इसमें रिश्तों में संवाद जरूरी है, भेंटवार्ता आप सुनेंगे, वर्षा जल संचयन की विधि और महत्व, जानकारी आपको मिलेगी एक पेड़ माँ के नाम अभियान की। कार्यक्रम की प्रस्तुति है गौरव पांडे की और कार्यक्रम में आज आपके साथ है सुभाषिनी और लता।

0: बहनों, 12 बज चुके हैं और वक्त है आपके मनपसंद कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का, यानी आप सभी श्रोता सखियों से ढेर सारी बातें करने का।
1: तो स्वागत है बहनों आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। आज कार्यक्रम के सफर में आपकी दो सखियां हाजिर हैं, मैं हूँ लता,
0: और कार्यक्रम के सफर में लता के संग आपकी एक और हम सफर है सुभाषिनी। तो स्वीकार करें बहनों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: और कार्यक्रम के सफर में जैसा कि सुभाषिनी ने कहा कि हम दोनों हैं, तो आज हम आपको जानकारी के साथ बहुत सारी बातें आज हम बहनों आपके साथ करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बहनों, जैसे कि सुभाषिनी तुमने कहा कि वक्त जो है वो ढेर सारी बातें करने का रहता है बहनों का इस समय, तो ये सिलसिला शुरू करते के साथ हम यह भी बहनों को बताना चाहेंगे कि खामोशियां अक्सर रिश्तों को निगल जाती हैं, बात करने से ही दिल की उलझने संभल जाती है।
0: वाह क्या बात है लता, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सही बात कही तुमने। जैसे पौधे को जिंदा रखने के लिए पानी की जरूरत होती है ना, वैसे ही रिश्तों को सींचने के लिए संवाद रूपी जल की आवश्यकता होती है।
1: हाँ बहनों, रिश्तों में संवाद ऑक्सीजन की तरह है, इसके बिना गलतफहमियां पनपती हैं और दूरियां बढ़ती हैं। जब आप मुश्किल में पड़ जाते हैं और मुश्किल बात भी शांति से कह पाते हैं तो रिश्ता मजबूत होता है। वही बात को दबाने से रिश्ता घुट घुट कर अंदर ही रह जाता है।
0: बिल्कुल, बातचीत के अभाव में छोटी छोटी बातें भी बड़े विवाद का रूप ले लेती हैं बहनों। सही संवाद से मन के संदेह और गलत फहमियां समय पर खत्म हो जाती हैं, और जब आप अपने साथी या परिवार के साथ खुशी और दुख दोनों साझा करते हैं तो विश्वास और भी गहरा हो जाता है।
1: साथी बहनों, संवाद से एक दूसरे को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि संवाद विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। इससे आप जान पाते हैं कि सामने वाले की भावनाएं और जरूरतें क्या है।
0: बिल्कुल सही, स्वस्थ रिश्ते की नींव ही अच्छे और सकारात्मक संवाद की टिकी होती है उसी संवाद पर, और बातचीत के दौरान अपनी बात रखें और उसके साथ साथ दूसरे की बातों को धैर्य से सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है बहनों। क्योंकि जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी इज्जत करते हैं।
1: बिल्कुल सुभाषिनी, और मुझे लगता है कि संवाद का अर्थ केवल बातें करना ही नहीं बल्कि बातें सुनना भी है। तो तुमने सही कहा, जो लोग दूसरों को धैर्य से सुनते हैं तो लोग भी उसकी बात ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और ध्यान से और पूरी बात सुनने से बात का जो गलत मतलब निकलने का जो खतरा होता है वो खत्म हो जाता है।

0: और संवाद जब टूटता है तभी विवाद जन्मता है, इसलिए रिश्तों को बचाने के लिए बोलना और सुनना दोनों जरूरी है।
1: और सखियों, रिश्ते जो होते हैं ना, वो कांच के बर्तन की तरह नाजुक होते हैं, जिन्हें संवाद रूपी धागे की आवश्यकता होती है। इसीलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चे, भाई बहन, मित्रों, इन सब से नियमित संवाद बनाए रखें। याद रखिए सखियों, जहां संवाद जीवित रहता है ना, वहां रिश्ते कभी नहीं मरते।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme, Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
5: तो बहनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमें लेकर चलेंगी सुभाषिनी।
6: बिल्कुल, तो बहनों अब वक्त है अपने मेहमान से आपको मिलवाने का। तो आज की हमारी मेहमान है श्रेया तिवारी, जो समाज सेवी हैं और उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और आज का हमारा विषय भी है वर्षा जल संचयन की विधि, और इनसे बातचीत कर रही हैं हमारी सखी लता।
5: धरती पर बढ़ती जल संकट और भूजल स्तर में लगातार हो रही गिरावट के बीच वर्षा जल संचयन आज समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। बारिश के पानी को सुरक्षित तरीके से संग्रहित कर उसका उपयोग करने से न केवल पानी की कमी दूर की जा सकती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल बचाने में भी मदद मिलती है। वर्षा जल संचयन की विधि विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं, और इसके लिए आज हमारे बीच हैं श्रेया तिवारी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रही हैं, अपनी संस्था के माध्यम से पर्यावरण बचाने का नेक कार्य कर रही हैं। श्रेया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
7: नमस्ते। नमस्ते लता जी, धन्यवाद आपको एवं आकाशवाणी को कि इस प्रमुख विषय पे आज मुझसे बात करने की एक मुझे सहयोग दिया गया, धन्यवाद
5: जी। श्रेया जी, जैसा कि आज के बहुत ही ज्वलंत मुद्दे, आज की जरूरत के विषय में बात करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वर्षा जल संचयन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है।
7: जी देखिए, वर्षा जल संचयन विषय पे काफी पहले से हमारे पूर्वजों ने अपनी विधियों से जिस तरह से इनकी संरक्षण करनी चाहिए उन्होंने किया था, लेकिन अब हम लोग सिविलाइज्ड वे में या फिर शहरों में आके इन सारी चीजों से दूर हो गए हैं, तो हमें उसकी आपूर्ति पता चल रही है। तो विशेष पर वर्षा जल संचयन विषय पे हमारा ये रहता है कि इस पानी को वर्षा ऋतु में या फिर बारिश की पानी को इकट्ठा कर उसको सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को ही संचयन कहा जाता है, ताकि जब जब हमें इसकी आपूर्ति लगे या फिर जब हमें इसकी कमी हो तब हम इसे उपयोग कर सके। इसका एक प्रक्रिया है पूरी तरीके से, अगर हम चाहे तो इसे कैसे कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं।
5: जी बहुत खूब। मैम, वर्षा जल संचयन से जल संकट को कैसे कम किया जा सकता है, बताए।
7: देखिए, जहां तक हमें पता है कि हम लोग जहां तक यूज कर पाते हैं अपने डेली यूज के या बेसिक नीड्स या तो हमारे पानी पीने के लिए जो सबसे जरूरी है, वो हम लोग ग्राउंड वाटर सोर्सेस वाटर जो है वो ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन वाटर यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में नहीं कर पाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जितना है वो दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा है, तो उसका एकमात्र सोर्स

0: कहती कि हमने कल्पना नहीं की थी कि हमने भविष्य में ये सारे दिन भी देखने हैं, तो वो एक हंसते खेलते चीजें हो जाती थी। लेकिन नाउ अ डेज इसको एक बहुत वेरीफाइड वे पे डिजाइन किया गया है, वाटर हार्वेस्टिंग फॉर्म पे, जिसपे जिसको हम लोग अगर एक सोसाइटी बेस या फिर घर पे हम लोग कभी भी आप घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो एक प्लान्ड वे में अगर हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटी या फिर उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है उसको अपना सके तो ये हम लोग बहुत अच्छी वे पे वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। और इसकी विधि बहुत ज्यादा भी नहीं है, हम लोग पाइपलाइन सोर्सेस से ग्राउंड वाटर टैंक बना के इसकी स्टोरेज कर सकते हैं और आपकी डेली बेस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पानी आराम से यूज कर सकते हैं। आप देखती होंगी राजस्थान एरिया में जहाँ पे पानी की इतनी संकट होती है, वहां पे प्रोबेबली लोग जब घर अपने बनाते हैं तो वो स्पेसिफिक ना वाटर रूम्स रेडी करते हैं ताकि उनकी जब भी वर्षा हो तो वो वाटर स्टोरेज कर सके। तो ये हम हमारे सिविलाइज्ड एरिया में या फिर अर्बन एरियाज में तो हम लोग कर सकते हैं, और गांव क्षेत्र में आप देखती होंगी कि जितनी भी तालाबे हैं कुएं हैं वहां तो वो नेचुरली वे में हो जाता है। लेकिन शहरी क्षेत्र में इन सारी चीजों को अपना के हम जरूर वाटर अपना कंजर्वेशन कर सकते हैं, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट सोर्स। इसके लिए हमें कुछ अपना अलग से नेचुरल चीजों को करना नहीं होता, नेचुरल सोर्सेज हमें जो भी प्रकृति से मिली हुई है उसके लिए तो हमें हमेशा ऋणी रहनी चाहिए हमारी प्रकृति के लिए।
1: वाह, बहुत खूब जी मैम। छत पर गिरने वाला वर्षा जल को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या है ये बताएं।
0: देखिए बेसिकली जैसे हमें पता चलता है कि बारिश हो रही है, जैसे अभी मौसम हो रही है, तो जहाँ कोशिश किया जाए कि हम लोग एक बार छत के पानी को साफ कर ले। और ये बहुत सिंपली है कि अगर आप अपने छत से एक अलग सा पाइपलाइन सोर्सेस करके ग्राउंड टैंक करके और उसपे फिल्टर्स लगते हैं पाइप्स पे, तो वो अंडरग्राउंड स्टोरेज ये पे आप पानी को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसी बहुत सारी लिंक्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के, खासकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो आप अगर आपके घर पे अगर थोड़ी सी भी स्पेस हो सकती है तो आप छोटा सा गड्ढा करके उसपे काफी सारे वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जिसपे आप बड़े जो गिट्टी होते हैं उन सारे का लेयर्स बना के या उसके ऊपर फिर मिट्टी देके, तो वो क्या होता है ना टैंक जैसा नीचे बन जाता है, ऊपर फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाता है और आपके छत का जो पानी रहता है वो आपका अंडरग्राउंड जो टैंक आपने रेडी किया हुआ रहता है वो सारा उस पे चला जाता है। अगर आप चाहें तो उस पानी को यूज भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो पानी ऑटोमेटिकली आपके ग्राउंड सोर्सेज वाटर लेवल पे चला जाता है। तो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप इस चीज को कितने इंपॉर्टेंटली लें और इसको इम्प्लीमेंट करें।
1: वाह, बहुत ही उम्दा जानकारी, बहुत ही खूबसूरत मैम। बातों बातों में आपने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी वर्षा जल संचयन के बारे में आगे बताया, तो मैम हम आगे ये जानना चाहेंगे आपसे कि वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: देखिए मैम बहुत ज्यादा डीपली मैं इस चीज पे नहीं बता पाऊंगी बिकॉज इनकी जो भी सिस्टम है आप चाहे तो अकॉर्डिंगली इस चीज की जो प्रोसेस है इसमें मुझे जहां तक आइडिया है गवर्नमेंट सब्सिडी भी इंक्लूडेड आजकल इन चीजों पे, सोलर इम्पेलेंट्स या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपको प्रोसेस देती हैं। बट एक अकॉर्डिंगली अगर आप अपने स्तर से करना चाहें तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस कि आप अपने छत का पानी या वाटर जब भी आपका रेन ये हो तो आप उसके फिल्टर अच्छी फिल्ट्रेशन करके और सुरक्षित टैंक तक का जो पाइपलाइन प्रोसेस रहता है उस अकॉर्डिंग को करके हम लोग उस चीज को यूज कर सकते हैं इन अ सिंपल प्रोसेस। क्योंकि हमारा बहुत जगह प्लांटेशन प्रोजेक्ट चलता है तो बेसिकली हमारे ऑफिसेज में जो टेरेस रहती है एंड जो प्लांटेशन एरिया रहता है तो वी डोंट नीड कि हमें इसको एकदम प्योर फॉर्म चाहिए या क्या, तो हमने एक सिंपल डिगिंग वे में वो एरिया बना रखा है जहाँ पे वो पानी आ जाता है फिल्ट्रेशन में, तो वो ग्राउंड लेवल वाटर को भी स्टोरेज अच्छे से कर लेता है एंड हम लोग अगर उसको यूज भी करना चाहें तो अच्छे वे पे कर सकते हैं।
1: यानी कि एक परिवर्तन आप लोग ला रही हैं समाज में, और शायद इसीलिए आप अपनी संस्था का नाम परिवर्तन ही आपने दिया है।
0: जी, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि छोटी छोटी परिवर्तनों से हम अगर भविष्य की ओर थोड़ी भी परिवर्तन ला सके तो इससे बड़ी और हमारी कोई ये नहीं हो पाएगी।
1: बिल्कुल, तो मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है।

0: मैम कि भविष्य में जल संकट से बचने के लिए वर्षा जल संचयन कितना प्रभावी समाधान है?
1: देखिए, जब भी आप भविष्य की बात करते हैं तो हमें एक बार अपने वर्तमान एवं भूत दोनों को सोच लेना चाहिए। आपको याद होगा, हमने जो देखा है अपनी पीढ़ी, अपने बचपन में हमने नदियों को खलखलाते हुए देखा हुआ है, हमने साफ जल देखा हुआ है नदियों का, और आज हमने नदी को नाले में परिवर्तित भी होते हुए देखा है।
0: बिल्कुल
1: आप सोच सकती है कि हमने जब पानियों को बाल्टी से नल में आते हुए देख लिया, नदियों से अब बूंदों में आते देख लिया, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें इसकी भविष्य के लिए संचयन करना कितना जरूरी है। सिर्फ हमने नहीं, हमने अपने भविष्य के में आने वाली पीढ़ियों के लिए, या इतने मिलियन स्पीसीज है उनके लिए, जो भी नेचर रिसोर्सेस है उसको बचाना कितना जरूरी है। और जल जल ही जीवन है, इस कल्पना और इस प्रतिज्ञा से अगर हम हर थॉट को लेके चलेंगे तो ये भविष्य में बचाने की हर उपयोग, कहते हैं ना एक एक बूंद से घड़ा भरती है, तो वही एक एक बूंद को बचाने की प्रक्रिया से ही भविष्य बनेगी।
0: वाह, बहुत ही खूबसूरत जवाब मैम। और हम आशा करते हैं कि हमारी बहनें जो सुन रही हैं आपकी बातों पर अमल करेंगी, बूंद बूंद बचाएंगी और जल ही जीवन का जो संदेश है वो हम सब उस पर अमल करेंगे। मैम, आप आज हमारी कार्यक्रम में जुड़ी हैं तो हम चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारी बहनों से कुछ साझा करें, कुछ बहनों को संदेश दें।
1: जी जी मेरा मेरा बहुत आभार रहेगा सारी बहनों को कि वो हमारी प्रकृति से मिली हुई हर एक चीज की बहुत ज्यादा वंदना करे और उस चीज की उपयोग को उतना ही महत्व रखे जितना ये हमारा जीवन है। क्योंकि जब तक हमें ये जीवन मिला है, हमें प्रकृति की हर एक चीज का वैल्यू करना होगा, ताकि हमारे आने वाले भविष्य के हमारे बच्चों को वही चीज जिंदगी हम दे सके जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर एक चीज की उतनी ही कदर की जाए जितनी एक जीवन की।
0: वाह, बहुत खूब मैम, आज आपने हमारी बहनों से इतनी अच्छी जानकारी साझा की, तमाम बातें आपने बताई, आप आज हमारी कार्यक्रम में जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत धन्यवाद लता जी।
2: बहने आप अभी सुन रही थी भेंटवार्ता, विषय था वर्षा जल संचयन की विधि। भेंटवार्ताकार थी श्रेया तिवारी, जो एक समाज सेवी हैं, और उनसे बातचीत कर रही थी हमारी रेडियो सखी लता। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं लता।
3: तो सुभाषिनी, कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्यों ना बहनों के साथ कुछ खट्टा मीठा हो जाए, यानी कि कुछ गीत संगीत हो जाए।
2: बिल्कुल,
3: तो चलो बहनों के साथ सुनते हैं प्यार भरा खूबसूरत संगीत।

0: बिल्कुल, बहुत सारे पेड़, घने जंगल कितने सुकून देते हैं, है ना? यानी जैसे गाने भी हमने सुनाए कि पर्वतों का जहाँ डेरा होता है और जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध होती है।
1: बिल्कुल.
0: तो यानी कि कहने का मतलब ये है लता कि पेड़ जो होते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, हमें छांव देते हैं, फल फूल देते हैं, बिल्कुल हमारी माँ की तरह।
1: हाँ, तो आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान. बहनों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया गया. एक राष्ट्रीय व्यापी और वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण अभियान है. इसका उद्देश्य अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने के साथ साथ पर्यावरण को हरा भरा बनाना है.
0: बिल्कुल, यानी कि पेड़ ही हैं जो हमारे पर्यावरण को हरा भरा बना सकते हैं। और ये अभियान जो है वो मात्र वृक्षारोपण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और पारिस्थितिक पहल है। मातृत्व और प्रकृति का सम्मान, जैसे कि एक माँ हमें जीवन और पोषण देती है, वैसे ही जो प्रकृति माँ है ना, वो हमारा पालन पोषण करती है। और ये अभियान दोनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा माध्यम है, यानी कि इन दोनों को हम इससे उन्हें एक तरह से कहें तो उन्हें
1: सम्मान दे सकते
0: सम्मानित
1: हैं.
0: कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सुभाषनी, मैंने इस पहल का मुख्य लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटना, प्रदूषण कम करना और हरियाली को बढ़ावा देना है. यह लोगों को व्यक्तिगत रूप से जोड़ता है, जिससे समाज में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है.
0: एक पेड़ माँ के नाम अभियान बहुत ही सफल रहा, और इस अभियान की अपार सफलता को देखते हुए इसका दूसरा चरण एक पेड़ माँ के नाम 2.0 भी चलाया गया है। इसके तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण के लक्ष्य रखे गए हैं, जिनमें स्कूली बच्चे हो गए, युवा हो गए और विभिन्न संगठन हो गए, उनकी भागीदारी को भी सुनिश्चित की गई है।
1: बिल्कुल बहनों, यदि आप भी इस नेक पहल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपनी माँ के साथ मिलकर या उनकी स्मृति में अपने घर, बगीचे या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पेड़ लगाएं. और हाँ, पेड़ लगाते समय अपना और अपनी माँ का चित्र, सेल्फी लेना ना भूलें.
0: या फिर इसे सरकार के आधिकारिक वेबसाइट माई भारत पोर्टल पर अपलोड करें, और ऐसा करने पर आपको अपनी माताजी और आपके नाम का एक विशेष डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और इसी के साथ लता, हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।
1: अगले कार्यक्रम में बहनों हम फिर हाजिर होंगे. तब तक अपनी सखी लता,
0: और सुभाषिनी को दे इजाजत।
1: नमस्कार.

0: गृहलक्ष्मी।
1: अभी आप सुन रहे थे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुभाषिनी और लता के साथ। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी W थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
3: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
3: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री KS शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
3: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
3: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है इस श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
2: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
3: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
3: जी विमलेश जी, दरअसल होता ये है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन तथ्य कुछ और है।
2: जी।
3: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
2: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
3: बताइए।
2: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
3: जी वो तो है।
2: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
2: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए,

0: ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
1: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
0: जी,
1: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
0: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें, पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
1: तो ये तो हुई पहली रोचक बात, अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात क्या है।
0: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती, ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
1: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
0: जी,
1: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
0: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
1: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
0: जी,
1: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
0: जी जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
1: जी,
0: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
1: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
0: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, वेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
0: जी,
1: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
0: बिल्कुल।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
1: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
0: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया

के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

0: मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,

0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
1: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
1: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
1: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
1: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
1: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
0: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल

0: अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ। हाँ, अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा?
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
5: मेरा बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही। जिस दौरान उस

0: बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पास्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पास्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पास्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुनझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं से किया संवाद, कहा भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा, विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों का लेंगे लेखा जोखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों से बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।
1: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं का के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये देश के विकास के लिए सभी समाज का आवश्यकता है। देश का सामग्रिक विकास तब कहला जाएगा जब सभी स्तर के बच्चे, सभी स्तर के समाज के लोग विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे, सोशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली। लेकिन हम जो बड़े बन जाते हैं, शहर में रह जाते हैं, अपना संस्कृति, अपना परंपरा, अपना अतीत को भूल जाते हैं। अतीत कभी भूलना नहीं।
0: झारखंड में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करने के लिए आज नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में विभाग के अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एमओयू में शामिल होगा। मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो ने आकाशवाणी को बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस एमओयू कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने विभाग की बकाया राशि भुगतान की भी उम्मीद जताई।
2: केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में आज 2 से 3 बजे तक के बीच मीटिंग है। झारखंड केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के साथ एमओयू होना है, जिसमें झारखंड जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर के उसमें एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और बेहतर रूप से नल जल योजना को धरातल पर कैसे चालू किया जाएगा, जो बकाया राशि है आगे मिलने की संभावना है एमयू के पश्चात। अभी अगर आप देखेंगे 6,207 करोड़ रुपया अभी बकाया है। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनलाइन जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा करेंगे। इस दौरान विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। राजमहल विधायक एमटी राजा ने राजमहल और उधवा प्रखंड में 2.34 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 11 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें डीप बोरिंग, जल मीनार, तालाब में सीढ़ी घाट, सार्वजनिक भवन और पोखर का सौंदर्यीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल और सामुदायिक भवनों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पिछले 3 दशकों से उपेक्षित इलाकों का भी विकास हो सके। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना के मद्देनजर बूथ से पंचायत तक संगठन मजबूत करने का अभियान शुरू किया है, जिसके तहत 15 जून तक हर बूथ पर BLA 2 और 10 सदस्यीय बूथ कमेटी बनाई जाएगी। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे के नेतृत्व में 4 जून तक चाईबासा

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। यह पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 182 अंक गिरकर 74,085 पर, जबकि निफ्टी अंक लुढ़क कर 23,302 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,44,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,70,000 रुपये प्रति किलो है। जमशेदपुर पुलिस ने उलीडी थाना क्षेत्र में हुए विकास सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं।
1: उलीडी थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी हम लोग को मिली थी, जिसकी शिनाख्त करने पर विकास सिंह 25 वर्ष जो उलीडी के रहने वाले थे उसके रूप में इनकी पहचान हुई थी। तो इसमें बॉडी के ऊपर काफी धारदार हथियार से अटैक करने वाले निशान थे और इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी बनाई गई। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के दौरान अपनी संलिप्तता स्वीकारी है।
0: झारखंड वन विभाग 1 से 5 जून तक पर्यावरण सप्ताह मना रहा है, जिसमें स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है।
2: एक सप्ताह का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, लोगों ने बायोडायवर्सिटी पार्क में वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया प्लास्टिक रिमूवल के लिए। वहाँ से कल हम लोग हॉरहाप में करने जा रहे हैं, वहाँ पे पक्षियों के भी हम लोग वॉचिंग करेंगे, देखेंगे कौन कौन से पक्षी वहाँ पे हैं और वो कैसे हम लोगों के बायोडायवर्सिटी के लिए यूजफुल है, लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा।
0: गिरिडीह में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की शासी निकाय की बैठक हुई। इसमें राज्यसभा सांसद, जमुआ विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष, गिरिडीह महापौर, पर्यटन मंत्री के प्रतिनिधि और कई विधायकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में जिले के अधिसूचित पर्यटन स्थलों की स्थिति और पर्यटन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। विधायक मंजू कुमारी ने बताया कि 20 श्रेणी के पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए कंसल्टेंट के जरिए डीपीआर तैयार कराया जाएगा। जो पर्यटन स्थल अब तक अधिसूचित नहीं हुए हैं उनके लिए भी दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा।
3: पर्यटन पंडित ऋषि साहब के अनुष्ठान बैठक हुआ जमुआ विधानसभा में, झारखंड धाम मंदिर में तत्काल बोला गया शौचालय 2 यूनिट का, उसके बाद पानी का व्यवस्था, उसके बाद उसका बैठने के लिए आरसीसी बनाया जाएगा। दूसरी बात, हमारे जो जलीय सूर्य मंदिर है हमारे मिर्जागंज में, नाली का पानी है किस तरह से उसको मतलब की निकाला जाए उसके लिए भी ऋषि साहब ने आश्वासन दिए है।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर स्थित दक्षिण पूर्व रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या और सुविधा को ध्यान में रखते हुए टाटानगर बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस में स्थायी रूप से एक अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस फैसले से ट्रेन में यात्रियों के लिए बैठने की क्षमता बढ़ेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताओं से किया संवाद, कहा भारत सरकार आदिवासी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत। झारखंड जल मिशन 2.0 को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू आज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से वर्चुअल माध्यम से होंगे शामिल। मुख्यमंत्री आज स्वास्थ्य विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की करेंगे समीक्षा, विभागीय कार्यप्रणाली, योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं लंबित मामलों का लेंगे लेखा जोखा। सीबीएसई 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल सक्रिय, बोर्ड ने जानकारी के लिए जारी किया वीडियो। और पर्यावरण सप्ताह के तहत झारखंड वन विभाग की ओर से कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन, स्वच्छता अभियान, मानव श्रृंखला, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और कार्यशालाएं शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। अनुरंजनी में हमारी आज की कलाकार हैं श्रीमती सिप्रा बोस, जिनसे हम सुनेंगे सबसे पहले दादरा और उसके बाद हम सुनेंगे पहाड़ी दादरा।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। हमारी आज की कलाकार है श्रीमती सिप्रा बोस। आइए उनसे सुनते हैं दादरा।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, श्रोताओं वक्त है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में हमारे आज के मेहमान हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। आइए सबसे पहले सुनते हैं मलिक गुमनाम की शब्द रचना। संगीतकार और गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

मिताली सिंह के गाए इस गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरे सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत का वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द,

0: या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुने गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ यह कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष

0: विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरो मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरो मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गाजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक की उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है फौजी भाइयों के कार्यक्रम जय भारती का। जय भारती कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: जय भारती कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुनीता, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म एलओसी कारगिल के इस गीत के साथ, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेय घोषाल ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

समीर के बोले यार रहमान का संगीत, अलका याग्निक उदित नारायण की खूबसूरत सी आवाज़, फिल्म का नाम द लीजेंड ऑफ भगत सिंह।

साजन की बाहों में इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे कुमार शानू और साधना सरगम की युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को सशक्तिकरण का शक्तिशाली साधन बताया है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं ने जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा के अवसर देकर उनका जीवन बदला है। राष्ट्रपति ने युवाओं से आधुनिक शिक्षा और तकनीक को अपनाने की अपील की।
1: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य के प्रतीक हैं। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े, तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
0: नई दिल्ली में कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की जीकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान पाकर राज्य का नाम रोशन किया है। गिरिडीह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पांडेडीह के किसानों का कहना है कि समय पर मिलने वाली 2,000 रुपये की राशि से उन्हें खाद बीज खरीदने में मदद मिल रही है। इस योजना ने महाजनों पर उनकी निर्भरता खत्म कर किसानों का आत्मबल मजबूत किया है।

0: प्रमुख ग्राम पांडे डिग्री डीसी हूँ। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों के लिए 6,000 रूपए देते जो प्रत्येक माह 2,000 रूपए करके मिलती है।
1: अशोक वर्मा पंचायत पांडेडीह प्रखंड गिरिडीह जिला गिरिडीह का एक किसान हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुझे साल भर में 2,000 रूपए करके शुरुआत से ही मिलते आ रहे हैं। इक्कीसवां किस्त भी मिला और इस पैसे से हम किसान वर्ग खेती कार्य के लिए खाद बीज व अन्य उपकरण का में खर्च करते हैं और इससे हम सभी को लाभ भी मिला है।
2: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से श्री मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे माफिया और अधिकारी एसीबी की मदद से भी नहीं बच पाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जनता की कमाई लूटने वालों की असली मंजिल जेल होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरायकेला खरसावा में जनगणना 2027 के कार्य में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। चांडिल के प्रखंड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हराधन भूमिज के खिलाफ आरोप पत्र गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर जिला जनगणना कोषांग ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। हजारीबाग के नोनिया बेड़ा में सीसीएल पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला उत्खनन के 4 मुहानों को ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कोयला तस्करी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और अवैध कारोबार को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमशेदपुर पुलिस ने गोलमोरी गोलीकांड का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त लोडेड पिस्तौल, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि नामदा बस्ती में दहशत फैलाने और रंगदारी के मकसद से मुख्य साजिशकर्ता विकास सिंह गिल ने इस घटना को अंजाम दिया था।
3: तो इसमें घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी बनाई गई जिसका नेतृत्व डीएसपी सिटी कर रहे थे और उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन करके टोटल 4 अपराधकर्मियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। जो इसमें मेन मास्टरमाइंड है उसका नाम है विक्की सिंह उर्फ कुंडी। बाकी 3 अपराधकर्मी विक्की सिंह, रविंद्र कुमार ठाकुर, बलराम सिंह उर्फ छोटू और अमन सिंह को आज हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं।
2: देवघर में 31 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार मेला फेस रिकॉग्निशन और एआई तकनीक से लैस होगा। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि आम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर पूरी की जाएंगी। जमशेदपुर में आयोजित 15वीं झारखंड राज्य सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में जेएसएससीपीएस के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन किया है। रांची के प्रथमी सिंह सरदार ने 1 स्वर्ण और 4 रजत सहित कुल 5 पदक जीते। वहीं लखिंदर सिंह मुंडा ने भी कांस्य पदक जीतकर संस्थान का नाम रोशन किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नॉनस्टॉप अंताक्षरी का। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे भारतीय सेना को समर्पित इस गीत के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: नॉन स्टॉप अंताक्षरी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंताक्षरी कार्यक्रम की शुरुआत होती है माँ अक्षर के गीत के साथ. और प्रायः ऐसा कोई भी व्यक्ति ना होगा जिसने अंताक्षरी अपने जीवन में ना खेला हो. ये एक ऐसा खेल है जो सभी खेलते हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, युवा हो, कॉलेज का कैंपस हो, घर में शादी का माहौल हो, घर में चार लोग आपस में बैठे हो, या फिर गांव में लाइट नहीं हो और चौपाल पर लोग बैठे हैं. ये ऐसा खेल है जो कहीं भी कभी भी खेला जा सकता है और बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा खेल भी है. तो चलिए, हम और आप रोज ही खेलते हैं, आज आप और हम फिर से मिलकर खेलेंगे एक बार अंताक्षरी. और मैंने अपनी प्लेलिस्ट बना ली है, मुझे उम्मीद है आप सबकी प्लेलिस्ट भी रेडी होगी. तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं माँ अक्षर के इस गीत के साथ.

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रांची मेलोडीज का, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत से प्यारे प्यारे गीत। और इन सब गीतों के साथ आज मैं हूं इस कार्यक्रम में आपकी दोस्त सुनीता। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म मधुमति के इस गीत के साथ। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने और इस गीत को गाया है तलत महमूद और माफ़ कीजिएगा, इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

उसने कहा था। इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने और धुन बनाई है सलील चौधरी ने। और इस गीत में लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं हेमंत कुमार।

आकाशवाणी रांची से आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज कार्यक्रम। अगला गीत हमने लिया है फिल्म परख से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

आरजू, इस फिल्म का गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

शैलेंद्र की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश और लता मंगेशकर की खूबसूरत सी आवाज़, फिल्म का नाम जिस देश में गंगा बहती है।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही रांची मेलोडीज कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष दोनों ही खेमों में आम सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अंतिम नामों की घोषणा कर सकता है। एडीजी मनोज कौशिक ने गुमला में रांची जोन के 4 जिलों के पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 3 वर्षों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा की। एडीजी ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों और पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए। पलामू प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय की उपस्थिति में नवनियुक्त उप परिवहन आयुक्त राजेश साहू ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान पदाधिकारी मनीष कुमार ने उन्हें प्रभार सौंपे। आयुक्त ने नए अधिकारी को पारदर्शिता के साथ राजस्व संग्रहण बढ़ाने और जनता को बेहतर परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह में देश की 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें झारखंड के पाकुड़ जिले की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत ने महिला हितैषी पंचायत श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान पाकर राज्य का नाम रोशन किया है। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कांवरिया पथ सुगम बनाने और शेड लगाने के साथ ही इस बार मंदिर परिसर के 12 बाहर करीब 1300 लॉकर बनाए जा रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को मोबाइल और कीमती सामान सुरक्षित रखने में बड़ी राहत मिलेगी। राज्य में पिछले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिसमें सबसे अधिक 21.6 मिलीमीटर वर्षा रांची में हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। आज चर्चा होगी आईपीएल, आरसीबी चैंपियन, साथ ही स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द वीक में वैभव सूर्यवंशी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर है अमिता खोरी का, प्रस्तुति है प्रभु शरण की। ये कार्यक्रम हम सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.

क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल का खिताब एक बार फिर आरसीबी के पास आया है, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एक बार फिर चैंपियन बना। इसके पहले 18 साल लगे थे चैंपियन बनने में, इस बार सिर्फ एक साल बाद आरसीबी फिर से चैंपियन बना है। पर्सनालिटी में बात करेंगे वैभव सूर्यवंशी की। 680 रनों में 610 रन उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं, तो इस अनूठे वैभव की चर्चा करेंगे। खेल खबरें तो होंगी ही, खास खास में आज हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन के अनोखे कोर्ट के बारे में। इसके अलावा इनहांस्ड गेम, एक अनूठा प्रयास शुरू किया गया लेकिन इसमें सफलता बहुत हद तक नहीं मिली, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले आईपीएल की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आईपीएल दो महीने के सफर के बाद आईपीएल खत्म हुआ और आरसीबी फिर से एक बार चैंपियन बना है। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बार फिर इतिहास रच डाला। आईपीएल सीजन 19 के फाइनल में गुजरात को आरसीबी ने 5 विकेट से हराया और लगातार दूसरी बार ये टीम चैंपियन बन गई। आरसीबी ऐसा करने वाली इतिहास की तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले चेन्नई ने 2010 और 2011 में लगातार ये खिताब, आईपीएल का खिताब जीता था। फिर मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई ने 2019 और 2020 में इसी तरह लगातार 2 साल मुंबई की टीम चैंपियन बनी थी। आरसीबी ने पिछले साल 3 जून 2025 को यह खिताब पाया था और इस खिताब को पाने में 18 साल लगे थे। 18 साल का सूखा पिछले साल खत्म हुआ था। इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पिछले साल पंजाब को हराकर आरसीबी ने अपना पहला खिताब जीता था और इस बार जीत के साथ ये पहली टीम बन गई जिसने अपने शुरुआती दोनों आईपीएल खिताब एक ही न्यूट्रल मैदान पर लगातार 2 साल जीते हैं। थोड़ी मैच की चर्चा कर लें दोस्तों। आरसीबी ने टॉस जीतकर गुजरात को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। गुजरात 20 ओवर में 155 रन बना सकी। मैच के हीरो विराट कोहली ने 42 गेंदों में नाबाद 75 रन बनाकर एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उन्हें चेज मास्टर क्यों कहा जाता है। विजयी छक्का भी विराट कोहली के बल्ले से लगा। बेंगलुरु की पहली जीत 18 साल के इंतजार के बाद आई थी, इस बार 12 महीने के इंतजार के बाद आई। अगर पूरे मैच की बात करें, टर्निंग पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो शुरुआती 6 ओवर में सिर्फ 45 रन गुजरात की टीम ने बनाए थे। टॉप स्कोरर ओपनिंग जोड़ी गिल और साई दोनों के विकेट चले गए थे। गिल 10, साई 12, बटलर 19, तीनों मिलकर सिर्फ 41 रन बना सके। औसत स्ट्राइक रेट 103 का रहा। वाशिंगटन सुंदर ने 50 रन और अरसद ने 15 रन बनाए और उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सका। रबाडा ने 15 की इकोनॉमी से 3 ओवर में 44 रन दिए। 1 ओवर में 2 विकेट लेकर सिर्फ राशिद खान प्रभावी बॉलर रहे। विकेट कीपर ने अय्यर का कैच मिस कर दिया। पावर प्ले में बाउंड्री पर 2 बार मिसफील्ड रहे और 2 रन आउट भी चुके। तो ये बहुत सारे रीजंस रहे जो गुजरात की टीम के हार के कारण बने। अब अगर हम बेंगलुरु की बात करें, टर्निंग पॉइंट की बात करें, तो शुरू के 6 ओवर में 70 रन जड़ दिए गए। वेंकटेश अय्यर ने 200 के स्ट्राइक रेट से 16 गेंद में 32 रन बनाए। चेज मास्टर कोहली ने 25 गेंदों में 52 रन के साथ आईपीएल के इतिहास में अपने सबसे तेज 50 लगाई उन्होंने। पार्टिकल, पाटीदार और कृणाल के विकेट जल्दी गिरने के बाद डेविड ने 17 गेंदों में 24 रनों की अच्छी पारी खेली। रसिक ने 27 रन देकर 3 विकेट लिए। भुवनेश्वर हेजलवुड के 2-2 विकेट रहे और सभी की इकोनॉमी 10 से नीचे रही। पावर प्ले के 3रे ओवर में पाटीदार ने 19 मीटर दौड़कर कप्तान गिल का कैच पकड़ा और जिसने सारे मैच का रुख बदल दिया। अब अगर रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो 40 गेंदों तक गुजरात की शून्य बाउंड्री थी। पाटीदार लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने वाले तीसरे कप्तान बने। तो कुछ रिकॉर्ड्स की भी हम चर्चा करते हैं। गुजरात ने इस मैच के दौरान लगातार 40 गेंदों में एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। इससे पहले 2009 में डेक्कन और बेंगलुरु के बीच फाइनल में 35 गेंदों में बाउंड्री नहीं लगी थी।
फाइनल में कोहली ने 3 छक्कों और 9 चौकों के साथ नाबाद 75 रन बनाए और इसी के साथ आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज 50 उन्होंने जड़ी और 2018 में राजस्थान के खिलाफ 26 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक बनाया था। रजत पाटीदार की अगर हम बात करें तो रजत पाटीदार आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने बतौर फुल टाइम कप्तान अपने पहले 2 सीजन में टीम की कमान संभालते हुए उसे आईपीएल का चैंपियन बना दिया। टीम को 2 बार चैंपियन बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी और रोहित जैसे कप्तानों के क्लब में पाटीदार भी शामिल हो गए। आरसीबी ने आईपीएल इतिहास में सबसे कम समय के भीतर यानी महज 363 दिनों के अंदर 3 जून 2025 से 31 मई 2026 ये जो समय रहा शुरुआती 2 लगातार खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड की बात करें, अवार्ड की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी को ऑरेंज कैप के अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड मिले, जैसे सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड मिला। सुपर सिक्स की बात करें तो 72 छक्के लगाए, 10 लाख रुपए इनाम के रूप में मिले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर के रूप में भी अवार्ड मिला, 10 लाख रुपया। प्राइज मनी की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु को यानी विजेता टीम को 20 करोड़ और गुजरात की टीम यानी उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ रुपए मिले। तीसरे और चौथे स्थान की टीमों को राजस्थान को 7 करोड़ और हैदराबाद को 6.5 करोड़ रुपए दिए गए। कोहली ने 208 के स्ट्राइक रेट से मात्र 25 गेंद में आईपीएल इतिहास में अपना सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। फाइनल में यह उनका 2016 के बाद पहला अर्धशतक था। इससे पहले फाइनल में उनका स्ट्राइक रेट 126 था। 37 साल 207 दिन की उम्र में प्लेयर ऑफ द मैच बने कोहली। आईपीएल फाइनल में कुंबले के बाद दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। आईपीएल फाइनल एक ही वेन्यू पर जीतने वाली तीसरी टीम बनी आरसीबी, जैसा कि हमने आपको बताया। मुंबई ने कोलकाता, हैदराबाद और कोलकाता ने चेन्नई में ऐसा किया है। 5वीं बार आईपीएल खिताब जीते कृणाल धोनी, किरण पोलार्ड और हार्दिक पंड्या की बराबरी की। सिर्फ रोहित और नायडू 6-6 बार ही उनसे आगे हैं। 4थी सबसे सफल टीम रही बेंगलुरु। अगर ट्रॉफी जीतने की बात करें तो चेन्नई ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 में आईपीएल का खिताब जीता है। मुंबई ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल का खिताब जीता है। चेन्नई और मुंबई की टीमें 5-5 बार जीती हैं। कोलकाता की टीम ने 3 बार यह खिताब जीता है और वो है 2012, 2014 और 2024 में। बेंगलुरु ने 2025 और 2026 में खिताब जीता है। राजस्थान ने 1 बार 2008 में, डेक्कन चार्जर ने 2009 में, हैदराबाद ने 2016 में और गुजरात ने 2022 में खिताब जीता है। अब लीग रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो कुछ लीग रिकॉर्ड की हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो सीजन रहा आईपीएल का 19वां सीजन, इसमें 1426 छक्के लगे। लीग इतिहास में पहली बार 1300 से अधिक छक्के लगे। 2025 में 1294 छक्के लगे थे और उसका रिकॉर्ड ये टूट गया। चौकों का आंकड़ा भी पहली बार 2300 यानी 2300 के पार पहुंचा। बल्लेबाजों ने 2332 चौके लगाए, पिछले सीजन में 2245 चौके लगे थे। पहली बार किसी भारतीय ने 150 रनों की पारी खेली और इस खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। केएल राहुल ने पंजाब के खिलाफ 152 नॉट आउट रन जड़े और ऐसा करने वाले सिर्फ तीसरे बैटर हैं। मौजूदा सीजन में 26,151 रन बने और आईपीएल के एक सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है। पिछले सीजन में 25,166 रन बने थे। सीजन में कुल 65 बार टीमों ने 200 से अधिक का टोटल बनाया, यह भी एक सीजन में रिकॉर्ड है। पिछले साल 52 बार ऐसा हुआ था। सीजन में रिकॉर्ड 50 भी लगे, 154 50 लगे। पिछले सीजन में 143 बार बैटर्स ने अर्धशतक की पारियां खेली थी। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 9 अर्धशतक उन्होंने लगाए। बैटर्स ने 156.34 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे, एक सीजन में बेस्ट स्ट्राइक रेट है ये। और पिछले सीजन 152.39 का रिकॉर्ड था। इस सीजन में सबसे ज्यादा 17 बार 200 से अधिक का लक्ष्य भी चेज हुआ। पिछले सीजन में
मात्र 9 बार ऐसा हुआ था। पहली बार सीजन में बैटिंग का औसत 29 से अधिक रहा। बल्लेबाजों ने सीजन में 29.78 की औसत से रन बटोरे। पिछली बार ये 28.99 था। टीमों ने 9.88 की रन गति से बैटिंग की, यह आईपीएल सीजन में सबसे बेहतरीन है। पिछली बार 9.62 के रन रेट से बल्लेबाजी हुई थी। अब इस सीजन में 15 शतक लगाने वाले अगर खिलाड़ियों के नामों की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है केएल राहुल का, जिन्होंने 67 बॉल में 152 रन बनाए और इनका स्ट्राइक रेट 226.87 था। अभिषेक शर्मा ने 68 बॉल में 135 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे, स्ट्राइक रेट 198.53 था। रयान रिकेल्टन ने 55 गेंद में 123 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 223.64। संजू सैमसन ने 56 बॉल में 115 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 205 का। डिकॉक ने 112 रन बनाए मात्र 60 बॉल में और स्ट्राइक रेट 186.67 का रहा। मिचेल मास ने 56 गेंद में 111 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 198.21 का रहा। कूपर कोनोली ने 59 बॉल में 107 रन बनाए, नाबाद रहे, स्ट्राइक रन रेट 181.36 का रहा। विराट कोहली, जो इस पूरे टूर्नामेंट के हीरो रहे, उन्होंने 60 बॉल में 105 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 175 का। शुभमन गिल ने 53 बॉल में 104 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 278.38 का। तिलक वर्मा ने, वैभव सूर्यवंशी ने 37 बॉल में 103 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 278 का। तिलक वर्मा ने 45 बॉल में 101 रन बनाए और 224.44 का स्ट्राइक रेट रहा। संजू सैमसन की बात करें तो उन्होंने एक और शतक लगाया था, 54 बॉल में 101 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर ने 51 बॉल में 101 रन बनाए, स्ट्राइक रन रेट 198 का रहा। साई सुदर्शन ने 100 रन बनाए 58 बॉल में, स्ट्राइक रन रेट 172.41 का रहा। फिन एलन की बात करें तो उन्होंने 47 बॉल में 100 रन बनाए और स्ट्राइक रन रेट 212 का रहा। तो दोस्तों, ये जो आईपीएल रहा इसमें रिकॉर्ड की भरमार रही, बहुत ऐसे रिकॉर्ड बने, बहुत ऐसे रिकॉर्ड टूटे और अपने आप में ये आयोजन अभूतपूर्व रहा और आरसीबी की टीम ने 2 बार एक ही मैदान में खिताब जीतकर इतिहास रचा। और दोस्तों, अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब पर्सनालिटी में बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की, यानी अनूठे वैभव की। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने विस्फोटक बल्लेबाजी से इस पूरे आईपीएल में तहलका मचा दिया। T20 में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी बैटर ने एक आईपीएल में 200 से अधिक के स्ट्राइक रन रेट से 550 से ज़्यादा रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने ऑरेंज कैप हासिल किया और उन्होंने 776 रन बनाए, 72 छक्के उन्होंने लगाए और ऐसा करने वाले वह पहले बैटर बने। किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी सीजन में किसी भी खिलाड़ी ने इतने रन नहीं बनाए। बेबी बॉस ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के आईपीएल के 2012 में बनाए गए 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। वैभव की बल्लेबाजी को बयां करने के लिए अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय जैसे शब्द भी कम पड़ रहे हैं। पावर प्ले में 490 रन बनाए उन्होंने और 37 छक्के जड़े। एक सीजन में किसी बैटर का पावर प्ले में ये रिकॉर्ड है और इस दौरान स्ट्राइक रन रेट 231.18 रहा। मिडिल ओवर्स में वैभव और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते थे क्योंकि स्ट्राइक रेट 235.38 तक पहुंच जाता था। पिछले 6 ओवरों में हर 5 गेंद पर एक छक्का उन्होंने लगाया, लेकिन मध्य ओवरों में ये रेट थोड़ा घट गया। उन्होंने

सूर्यवंशी ने 5 अवार्ड जीते, सुपर स्ट्राइकर का अवार्ड, सुपर सिक्स का अवार्ड, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड और ऑरेंज कैप भी उन्हें ही मिला। तो दोस्तों, वैभव एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में उभर रहे हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है और बड़े बड़े खिलाड़ी भी इनको दाद दे रहे हैं। और दोस्तों, अब हम खास खास में बात करने जा रहे हैं फ्रेंच ओपन के अनोखे कोर्ट की। फ्रेंच ओपन के शोर, भीड़ और टेनिस के रोमांच से कुछ दूर एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। फ्रेंच ओपन की मेजबानी करने वाले रोला गैरो स्टेडियम के बीचों बीच बना आर्टे बॉटनिकल गार्डन मानो किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा लगता है। यहाँ 500 से ज़्यादा पौधों की प्रजातियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं और उनके बीच छिपा है एक अनोखा टेनिस कोर्ट, कोर्ट सिमोन मैथ्यू। इस कोर्ट का नाम 2 बार के पूर्व महिला सिंगल चैंपियन सिमोन मैथ्यू के नाम पर रखा गया है और यहाँ पहुँचने वाले खिलाड़ी और दर्शक पहले हरियाली के बीच से गुजरते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वे किसी बॉटनिकल पार्क में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है वहीं शांत जगह शोर और जुनून से भर उठता है। खासकर जब कोई फ्रेंच खिलाड़ी कोर्ट पर हो तब यहाँ का माहौल किसी फुटबॉल स्टेडियम जैसा लगता है। रविवार को फ्रांस के टीटुआ द्रोगे के मुकाबले में यही देखने को मिला। दर्शक लगातार द्रोगे अले के नारे लगा रहे थे, हर पॉइंट पर तालियां और शोर गूंज रहा था, लेकिन यह समर्थन द्रोगे के लिए दबाव भी बन गया। दुनिया के 110वें नंबर के खिलाड़ी द्रोगे मैच में अपनी लय नहीं पकड़ सके और सीधे सेटों में हार गए। शाम ढलने के बाद कोर्ट सिमोन मैथ्यू की खूबसूरती और भी ज़्यादा नज़र आने लगी। दर्शक जब सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी सीटों तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है मानो किसी गुप्त स्टेडियम में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर हरियाली और फूलों की खुशबू, नीचे लाल मिट्टी का कोर्ट और बीच में हजारों दर्शकों की आवाज़ें, यही है इस कोर्ट को बाकी से अलग करता है। कोर्ट सिमोन मैथ्यू सिर्फ एक टेनिस कोर्ट नहीं बल्कि रोला गैरो की एक नई पहचान है। यहाँ हरियाली की शांति भी है और खेल का उन्माद भी। दिन में यह जगह किसी बगीचे जैसे लगती है, लेकिन रात होते होते यही कोर्ट खिलाड़ियों के लिए सबसे कठिन परीक्षा का स्थान बन जाता है। साल 2019 में शुरू हुआ यह कोर्ट फ्रेंच ओपन का तीसरा सबसे बड़ा कोर्ट है। इसकी खासियत सिर्फ इसकी क्षमता या आधुनिक डिजाइन नहीं बल्कि उसका माहौल है। 4 विशाल कांच के ग्रीन हाउस के बीच बना यह कोर्ट ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद टेनिस को अपनी गोद में जगह दी है। कोर्ट जमीन से करीब 4.5 मीटर नीचे बनाया गया है ताकि वह आसपास के बगीचों के साथ घुल मिल जाए। तो दोस्तों, ये अनोखा कोर्ट है, खिलाड़ियों को वहाँ खेल का तो आनंद आता ही है, साथ साथ ऐसा लगता है जैसे वे प्रकृति की गोद में जाकर बैठ गए हैं। खास खास में हम एक और बात की चर्चा करने जा रहे हैं और वो है कि एक अनोखा आयोजन हुआ, एनहांस टूर्नामेंट। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसकी हम चर्चा करते हैं। अमेरिका के लास वेगास में चमकती रोशनी, तेज संगीत, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ और करोड़ों की इनामी राशि। दावा था यहाँ इंसानी शरीर की सीमाएं टूटेंगी और कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन एनहांस्ड गेम का पहला आयोजन पूरी तरह से सफल नहीं रहा। करीब 5 घंटे तक चली प्रतियोगिता में आखिर तक कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना। अंतिम इवेंट में ग्रीस के तैराक क्रिस्टियन गकोलोमेव ने 50 मीटर फ्री स्टाइल रेस 20.81 सेकंड में पूरी की और यह आधिकारिक विश्व रिकॉर्ड से सिर्फ 0.07 सेकंड बेहतर था। हालांकि यह रिकॉर्ड मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रतिबंधित स्किन सूट पहना था और डोपिंग भी की थी। फिर भी आयोजकों ने इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जश्न मनाया। इन हैंड्स गेम्स का मकसद ही अलग है। यहाँ खिलाड़ियों को प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएं लेने की अनुमति हालांकि दी जाती है, कुछ प्रतिबंधित दवाएं लेने की छूट है। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर यह दिखाया जा रहा था कि खिलाड़ी किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में दिलचस्पी ले रहे हैं।

दिलचस्प बात यह रही कि तीन ऐसे खिलाड़ी भी विजेता बने जिन्होंने दावा किया कि उन्होंने किसी भी तरह के प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं किया। अमेरिका के फ्रेड कैरली ने 100 मीटर दौड़ जीतने के बाद कहा कि बाकियों को और मेहनत करनी चाहिए, शायद थोड़ा और प्रतिबंधित दवा उन्हें लेना चाहिए। वहीं महिलाओं की 100 मीटर रेस जीतने वाली ट्रिस्टन एवलिन ने कहा कि यह साबित करता है कि जीत सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं मिलती बल्कि जुनून होना चाहिए। आयोजकों ने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद लगाई थी लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज से मशहूर आइसलैंड के स्ट्रांगमैन थॉर ब्योर्नसन 510 किलो डेडलिफ्ट का अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। कई वेटलिफ्टर तीन तीन कोशिशों के बाद भी रिकॉर्ड से काफ़ी दूर रहे, यहाँ तक कि जब कनाडा के वेटलिफ्टर बॉयडी सेंटावी असफल हुए तो आयोजकों ने नियम बदलते हुए उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया। माहौल किसी पेशेवर टूर्नामेंट से ज़्यादा स्कूल स्पोर्ट्स डे जैसा लग रहा था। हालांकि खिलाड़ियों के लिए इनाम बेहद बड़ा था। ब्रिटेन के तैराक बेन प्राउड ने 50 मीटर बटरफ्लाई जीतकर एक अन्य रेस में दूसरा स्थान हासिल कर करीब 3.5 करोड़ रुपए कमाए। उन्होंने कहा कि जब मैंने इन गेम्स के बारे में सुना तो लगा जैसे लॉटरी लग गई। यह दुनिया का पहला ऐसा खेल आयोजन था दोस्तों जहां खिलाड़ियों को कुछ प्रतिबंधित दवाएं लेने की अनुमति थी। आयोजकों का दावा था कि इनसे इंसानी क्षमता की नई सीमाएं सामने आएगी लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं और कई पूर्व खिलाड़ियों ने इसका विरोध भी किया। उनका मानना था कि ये खेल भावना के खिलाफ है और दोस्तों ऐसा हुआ भी। बहुत से ऐसे खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में आए जिन्होंने किसी तरह की कोई प्रतिबंधित दवाएँ नहीं ली थी, इसके बाद भी उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया और अवार्ड भी जीते। इसलिए ये आयोजन अपने आप में बिल्कुल अनोखा तो था लेकिन बहुत सफल नहीं कहा जा सकता। और दोस्तों अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से। मध्य प्रदेश के समरदीप सिंह गिल ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में पंजाब के अनुभवी खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। दो बार के एशियाई खेलों के चैंपियन तूर ने 20.07 मीटर के पहले थ्रो के साथ अपने अभियान की शुरुआत की लेकिन 25 वर्षीय गिल ने चौथे प्रयास में 20.46 मीटर का थ्रो कर बढ़त हासिल कर ली जो अंत तक कायम रही। तूर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर है। उन्होंने पिछड़ने के बाद वापसी की कोशिश की लेकिन उनका अंतिम प्रयास 20.06 मीटर पर समाप्त हुआ। गिल ने भारतीय एथलेटिक महासंघ द्वारा निर्धारित ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 20.36 मीटर के

सीनियर फेडरेशन कप प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में पंजाब के अनुभवी खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर को पछाड़कर स्वर्ण पदक जीता। दो बार के एशियाई खेलों के चैंपियन तूर ने 20.07 मीटर के पहले थ्रो के साथ अपने अभियान की शुरुआत की, लेकिन 25 वर्षीय गिल ने चौथे प्रयास में 20.46 मीटर का थ्रो कर बढ़त हासिल कर ली, जो अंत तक कायम रही। तूर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 21.77 मीटर है। उन्होंने पिछड़ने के बाद वापसी की कोशिश की, लेकिन उनका अंतिम प्रयास 20.06 मीटर पर समाप्त हुआ। गेल ने भारतीय एथलेटिक महासंघ द्वारा निर्धारित ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के 20.36 मीटर के क्वालिफाइंग मार्क को भी पार कर लिया। कर्नाटक के SSP और NCI त्रिवेंद्रम के संतोष कुमार टी ने पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वालिफाइंग मार्क को पार कर लिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत करते हुए विंसेंट केमर के खिलाफ एक कड़े और तनावपूर्ण मैराथन मुकाबले के बाद जीत हासिल की और आर प्रज्ञानंदा ने बेस्ली शो को हराया, लेकिन विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को पहले दौर में ही हार का सामना करना

0: पड़ा। गुकेश ने लगभग 5 घंटे तक चले 144 चाल के मुकाबले के बाद आर्मागेडन में जीत की बदौलत 1.5 अंक हासिल किए, जबकि कीमर को क्लासिकल मुकाबला बराबर रहने के कारण 1 अंक से ही संतोष करना पड़ा। झारखंड के खेल इतिहास में का दिन बुधवार का दिन बेहद खास रहा, जब राज्य के 3 प्रतिभाशाली पहलवान एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय कुश्ती टीम के चयन ट्रायल में हिस्सा लेने रांची रवाना हुए। यह पहला अवसर है जब झारखंड से एक साथ 3 पहलवान सीनियर स्तर के एशियन गेम्स ट्रायल के लिए क्वालिफाई करने में सफल हुए हैं। ट्रायल के लिए रवाना होने वाले खिलाड़ियों में रिया कुमारी, अमित गोप और अभिषेक कुमार हैं। तीनों खिलाड़ी दिल्ली और लखनऊ में आयोजित चयन ट्रायल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। ट्रायल में सफल रहने पर उन्हें जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। जेमिया रॉड्रिक्स यस्तिका भाटिया के शानदार अर्धशतकों के बाद पदार्पण कर रही तेज गेंदबाज नन्नी शर्मा की घातक गेंदबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड को 38 रनों से हराकर 3 मैचों की महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर की गैर मौजूदगी में खेल रही भारतीय टीम ने खराब शुरुआत से उभरते हुए 7 विकेट पर 188 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 8 विकेट पर 150 रन पर रोक दिया। 12 जून से शुरू होने वाले T20 विश्व कप से पहले यह भारत की अंतिम सीरीज है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण और इसी के साथ अमित को विदा दीजिए। दोस्तों नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। रिपोर्ट संकलन और प्रस्तुति स्वर था अमित अखौरी का। प्रस्तुति और संयोजन था प्रभु शरण का। कार्यक्रम क्रीड़ा जगत अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारी रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5:00 और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

श्रमिक लोक, ये कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30, जिसमें आज चर्चा होगी भारतीय सिनेमा के असली शोमैन राज कपूर, बापू की इकलौती रेडियो यात्रा, प्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा सहारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, और हुनर भी रोजगार भी सीखो और कमाओ योजना, पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की, और 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। छह बजकर 2 मिनट पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा मिट्टी जांच की उपयोगिता, और आज की बात में आप सुनेंगे बहुस्तरीय फल बागवानी, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार, और भेंटकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की।

रोजाना की तरह आज भी आप सुनेंगे 6:32 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी मोबाइल का सीमित प्रयोग करें और कुछ पसंद के लोकगीत भी हम आपको सुनवाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे संजीव कुमार लाल।

प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 7 बजे और 7:11 पर जिले में आजकल। आदिवासी अखड़ा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:15 से। आज का ये कार्यक्रम होगा खड़िया भाषा में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रदीप कुमार। श्रोताओं, आज मंगलवार है और आज के दिन आप सुनते हैं 7:45 पर इंग्लिश टॉक। टुडेज टॉपिक, जेन ऑस्टिन एज ए नॉवलिस्ट। टॉकर बाय डॉक्टर अनन्या बोस। रात 8 बजे आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत और 8:10 पर हम आपको सुनवाएंगे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे इवनिंग न्यूज और 9:15 पर उर्दू समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गूंजे झारखंड और 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें आज के कलाकार होंगे अभिराम पाठक। इनसे आज आप सुनेंगे राग बहार में आलाप और धमार गायन। और 11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
0: कार्यक्रम सांझ सरगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रौनक जहां का प्यार भरा नमस्कार। आज की पहली शुरुआत कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों से, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम एक लड़का एक लड़की।

0: प्रोग्राम की अगली पेशकश सच्चा झूठा फिल्म से, गीत के बोल इंदिवर के तर्ज कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

सिर्फ तुम, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत से सवारा था नदीम श्रवण ने और आवाज अलका याग्निक की। और अब सुनिए आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार जतिन ललित, फिल्म का नाम चलते चलते।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित फॉर्मों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे। श्री कुमार ने कम मैपिंग वाले बीएलओ को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से सीआरपीएफ हटाने की तैयारियों पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बल को बनाए रखने का प्रयास जारी है। यदि केंद्र सरकार सीआरपीएफ हटाती है तो राज्य सरकार वहां अपने जवानों की पूरी तैनाती करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर ट्रेजरी घोटाले की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया है। रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि यह घोटाला हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। उन्होंने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के हवाले से कहा कि बड़ी राशि का सही हिसाब नहीं मिल पा रहा है। गोड्डा की मोतिया ओपी पुलिस ने नशामुक्त अभियान के तहत छापेमारी कर 2.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर खटनई शिव मंदिर के पास यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सरायकेला खरसावा के कपाली में रंगदारी को लेकर हुई फायरिंग में एक जमीन मालिक घायल हो गया है। चार दीवारी निर्माण के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस ने मौके से खोखा बरामद कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगाहर्ट्स पर। आइए सुने युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

0: गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के युवाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी दोस्त अनिष्का।
1: और मैं हूं आपकी दोस्त स्नेहा।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, क्या आप भी इस चिलचिलाती गर्मी से परेशान हैं? तेज धूप, पसीना और थकान कहीं आपकी सेहत पर भारी ना पड़ जाए, इसीलिए आज हम बताएंगे कुछ खास उपाय और सावधानियाँ जो इस गर्मी में आपको फिट एंड फ्रेश बनाए रखेंगे।
0: स्नेहा, पानी पीने और सूती कपड़े पहनने की बात तो सब जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जैसे इस मौसम में चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन।
1: बिल्कुल तनिष्का, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है, जिससे शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन और बढ़ जाती है। इसके जगह पुदीने का रस या सत्तू का शरबत पिए, जो पेट को ठंडक देता है।
0: और स्नेहा, स्किन और आंखों की केयर भी तो बहुत ज़रूरी है। तेज़ धूप से स्किन बर्न और टैनिंग होती है, इसलिए बाहर निकलने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। साथ ही आंखों को हानिकारक यूवी रेज से बचाने के लिए चश्मा पहनना ना भूलें।
1: बिल्कुल, एक और ज़रूरी बात, अक्सर लोग दोपहर में वर्कआउट या भारी एक्सरसाइज करते हैं, जो खतरनाक हो सकता है। गर्मियों में हैवी एक्सरसाइज या तो सुबह जल्दी करें या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद। और दोस्तों, इस तपती गर्मी में बेजुबान पशु पक्षियों को मत भूलिए। अपने घर की छत या बालकनी पर मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जान बचा सकती है।
0: गर्मी में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हमेशा ताज़ा खाना ही बनाएं। बासी खाने से फूड पॉइजनिंग और डायरिया का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखें और थोड़ी सी सावधानी, हम खुद को कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा सकते हैं। पर्याप्त पानी पिएं, धूप से निकलने समय बचाव करें। अब बात करते हैं गर्मी से जुड़ी ऐसी समस्या की जो अक्सर लापरवाही की वजह से हो जाती है, जो कि है डिहाइड्रेशन।
1: दोस्तों, गर्मी अपने चरम पर है और इसके साथ ही हमारे स्वास्थ्य के समक्ष कई चुनौतियां भी खड़ी हो रही है। इस मौसम में जिस शारीरिक समस्या का खतरा सबसे अधिक होता है, वो है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की अत्यधिक कमी।
0: अक्सर लोग डिहाइड्रेशन को एक सामान्य प्यास समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के अनुसार शरीर में पानी की तीव्र कमी हमारे महत्वपूर्ण अंग, खासकर किडनी और लिवर, सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
1: बिल्कुल, इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम डिहाइड्रेशन की शुरुआती लक्षणों को समय रहते पहचानें। अगर किसी व्यक्ति को बार बार ज़्यादा प्यास लगती है, मुंह और होंठ सूखे रहते हैं, बिना ज़्यादा काम किए थकान महसूस होता है, सिरदर्द रहता है, या तो शरीर में पानी की कमी के संकेत हो सकते हैं, ऐसे में तुरंत पानी और अन्य तरल पदार्थ लेना चाहिए।
0: हाँ, एक और ज़रूरी बात यह है कि हमें सिर्फ प्यास लगने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। जब हमें प्यास लगती है, तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है, इसलिए नियमित रूप से पानी पीना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल तनिष्का, हर एक व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए, और घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें। लेकिन गर्मी में सिर्फ पानी पीना ही काफ़ी है क्या?
0: नहीं स्नेहा, गर्मी में पसीने के साथ शरीर से पानी के अलावा ज़रूरी मिनरल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम भी निकल जाते हैं, इसलिए सिर्फ पानी हमेशा पर्याप्त नहीं होता। शरीर में पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने के लिए ORS का घोल बहुत अच्छा रहता है।
1: इसके अलावा छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी और आम पन्ना जैसे देसी पेय भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ये शरीर को ठंडक और ऊर्जा दोनों देते हैं, लेकिन आजकल लोग प्यास लगने पर कोल्ड ड्रिंक या चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पी लेते हैं, लेकिन इससे बचना चाहिए। इसमें मौजूद ज़्यादा चीनी और कैफीन शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं।
0: हाँ, और इसके साथ ही हमें छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों का खास ध्यान रखना चाहिए, गर्मी का असर इन पर जल्दी होता है। दोस्तों, इस गर्मी में जागरूक रहें, पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

के जवान से बवाल से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: सेना, भारतीय सेना।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
2: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTech cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
2: अब बात करते हैं आज यानी 2 जून के दिन देश और दुनिया के इतिहास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। आज ही के दिन 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इसका गठन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद किया गया था।
3: 2 जून 1953 को क्वीन एलिजाबेथ II का राज्याभिषेक लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी में सम्पन्न हुआ था। यह समारोह इतिहास में इसलिए भी विशेष माना जाता है क्योंकि इसका टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया गया था जिसे दुनिया भर के लाखों लोगों ने देखा।

0: 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। गर्मी के कारण धातु फैलती है और इसी वजह से फ्रांस का मशहूर आइफल टावर थोड़ा ऊंचा हो जाता है।
1: एक और अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि तेज़ गर्मी में हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स फैल जाते हैं, जिससे शरीर खुद को ठंडा रखने की कोशिश करता है।
0: यही कारण है कि गर्मियों में हमें बहुत पसीना आता है। पसीना शरीर का प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम है, जो शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में मदद करता है।
1: अब एक फ्रूट से जुड़ा फैक्ट, तरबूज, जो गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है, उसमें लगभग 92% पानी होता है।
0: यानी तरबूज सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं, बल्कि शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखने में भी मदद करता है।
1: बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों में सड़कें दूर से गीली क्यों दिखाई देती है?
0: दरअसल यह एक मिराज होता है। गर्म हवा लाइट को मोड़ देता है, जिससे हमें ऐसा लगता है जैसे सड़क पर पानी जमा हो।
1: दोस्तों, एक और फैक्ट ये भी है कि पृथ्वी गर्मियों में सूर्य के सबसे करीब नहीं होती।
0: बिल्कुल, असल में गर्मी और सर्दी का कारण पृथ्वी का झुकाव है, ना कि सूर्य से उसकी दूरी।
1: तो दोस्तों, ये थे गर्मियों से जुड़े कुछ रोचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
0: दोस्तों, अब वक्त है उन खबरों की चर्चा का जो इन दिनों देश दुनिया में सुर्खियों में है।
1: तकनीक की दुनिया से एक दिलचस्प खबर आई है। केंद्र सरकार ने लोगों की शिकायतों के समाधान को आसान बनाने के लिए एक AI वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी लॉन्च किया है। ये कई लैंग्वेजेस में काम कर सकता है।
0: विज्ञान और तकनीक की बात करें तो सर जल संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और इसरो के बीच जल संसाधनों को बेहतर अध्ययन और प्रबंधन के लिए एक समझौता हुआ।
1: ये पहल इसलिए खास है क्योंकि अब अंतरिक्ष तकनीक और उपग्रहों की मदद से जल स्रोतों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।
0: और खेल जगत की बात करें तो RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अहमदाबाद में खेले गए फाइनल्स में गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया।
1: दोस्तों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं एक गीत।

0: गर्मियों का मौसम अपने पूरे जोर पर है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता टेम्परेचर हम सभी को परेशान कर देता है। ऐसे में सबसे जरूरी होता है खुद को ठंडा और तरोताजा रखना।
1: बिल्कुल स्नेहा, गर्मी बढ़ते ही हम कुछ ठंडा पीने का मन बनाने लगते हैं, लेकिन अक्सर हम बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं, जबकि हमारे आसपास ही ऐसे कई स्थानीय पेय मौजूद हैं जो स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद के लिए भी अच्छे होते हैं।
0: हमारे देश में हर क्षेत्र की अपनी खान पान की परंपरा रही है और गर्मियों के लिए भी अलग अलग तरह के पेय बनाए जा रहे हैं। ये पेय ना सिर्फ शरीर को ठंडक देते हैं बल्कि गर्मी से होने वाली थकान और डिहाइड्रेशन को भी दूर करने में मदद करते हैं।
1: तो चलो आज जानते हैं कुछ ऐसे ही स्थानीय ड्रिंक्स के बारे में जो गर्मियों में राहत पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम पन्ना की।
0: कच्चे आम से बनने वाला आम पन्ना गर्मियों का एक बहुत ही लोकप्रिय पेय है। इसका खट्टा मीठा स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। गर्मी के दिनों में इसे पीने से काफी ताजगी महसूस होती है।
1: और अगर हम झारखंड, बिहार और आसपास के जगहों की बात करें तो सत्तू का शरबत भी लोगों को बहुत पसंद होता है।
0: बिल्कुल, सत्तू का शरबत पीने से बॉडी को एनर्जी मिलती है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ भी लगता है। यही वजह है कि आज भी गांवों से लेकर शहरों तक लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं।
1: अब बात करते हैं एक ऐसे ड्रिंक की जो हर भारतीय घर में पसंद किया जाता है और वह है छाछ।
0: हाँ, खाने के बाद एक ग्लास ठंडी छाछ मिल जाए तो गर्मी कुछ कम सी लगने लगती है। छाछ की तरह ही लस्सी भी गर्मियों का एक मशहूर ड्रिंक है।
1: हाँ, लस्सी गर्मी में काफ़ी राहत देती है और बॉडी के टेम्परेचर को कम करने में भी हेल्प करती है, साथ ही ये गट फ्रेंडली भी है।
0: आज के समय में जहाँ तरह तरह के पैकेज ड्रिंक्स बाजार में उपलब्ध है, वहीं हमारे ये स्थानीय पेय अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त स्नेहा
1: और तनिष्का
0: को इजाज़त।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी, ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार श्रमिक साथियों, कार्यक्रम श्रमिक लोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कार्यक्रम में मैं हूँ आरती और हमारे साथ है प्रीति, जो पीला पीला ड्रेस पहन के आई है और बड़ा ही खूबसूरत सी लग रही हैं। तो प्रीति आपको भी नमस्कार।
1: बिल्कुल दी, आपको भी नमस्कार और धन्यवाद तारीफ करने के लिए और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्रीति का भी नमस्कार। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत हम उस महान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक की बातों से करेंगे जिन्हें हिंदी सिनेमा का सो मैन कहा जाता है।
0: बिल्कुल, तब तो तुम्हें नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। हमारे श्रोता साथी समझ ही गए होंगे कि हम बातें करने जा रहे हैं राज कपूर की। दोस्तों, राज कपूर की फिल्मों में अक्सर चार्ली चैपलिन की छवि, आम आदमी का संघर्ष और शुद्ध रोमांस का मिश्रण होता था और उनकी कई फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी सफलता भी मिली थी,
1: खासकर रूस में, है ना। कहते हैं कि वहाँ के लोग जो थे वो राज कपूर के बड़े फैन हुआ करते थे।
0: अच्छा।
1: और उनकी फिल्मों के गाने और संगीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र के साथ मिलकर कई बेहतरीन गीत दिए।
0: बिल्कुल, और उनकी फिल्में आवारा, श्री 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है, संगम, मेरा नाम जोकर, बॉबी, इतनी सारी ऐसी फिल्में हैं जो हर किसी को पसंद आती है और बॉक्स ऑफिस में इसने बहुत नाम कमाया है।
1: बिल्कुल, और पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं ना कि अच्छी चीजें जो है वो हर किसी को पसंद आती है, वो किसी समय की मोहताज नहीं होती, किसी लिमिट की मोहताज नहीं होती, जो भी देखता है वो तारीफ जरूर करता है।
0: और आज भी उस पिक्चर को, वैसे पिक्चरों को देखो तो एक तो प्रेरणा भी मिलती है और हमारा जो ये होता है ना मनोरंजन, वैसे ही होता है और उतना ही मजा आता है ना।
1: बिल्कुल, और कोई ना कोई संदेश तो होता ही था।
0: बिल्कुल,
1: राज कपूर को सन 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें कला के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा सन 1971 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। और अगर एज अ एक्टर बात करें तो बहुत सारे सम्मान और भी मिले थे उन्हें।
0: बिल्कुल, और आज यानी 2 जून को उनकी पुण्यतिथि है, तो उन्हें हमारे कार्यक्रम की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं हम पूरे श्रमिक लोक परिवार की ओर से। और वैसे भी राज कपूर जैसे लोग कहीं जाते नहीं, बल्कि अपनी कला के माध्यम से हमारे बीच सदा जीवित रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का यह सदाबहार गीत।

0: तो ऐसे इतने सारे प्यारे प्यारे गीत हैं प्रीति, कि हम अगर अपने दर्शकों ये श्रमिक साथियों को सुनवाना चाहें तो शायद हम उनसे बातें नहीं कर पाएंगे, है ना? तो बातें भी हमें
1: बिल्कुल
0: करनी है। तो दोस्तों, अब चलिए, रेडियो के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आपको एक संस्मरण सुनाते हैं। जब बापू ने केवल एक बार रेडियो के माध्यम से देश को संबोधित किया, तो यह ऐतिहासिक घटना 12 नवम्बर 1947 को नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में हुई थी।
2: उस समय कुरुक्षेत्र के शरणार्थी शिविरों में पाकिस्तान से आए लाखों विस्थापित रह रहे थे, जिन्हें बापू ने रेडियो के जरिए शांति और हिम्मत का संदेश दिया।
0: और गांधी जी को 11 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र में पाकिस्तान के जो झंडा ये हैं और मुल्तान से आए लाखों शरणार्थियों से मिलने जाना था। हालांकि उन्हें कांग्रेस की एक अहम बैठक में भाग लेने के कारण अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। इस कारण से उन्होंने 12 नवंबर को आकाशवाणी से कुरुक्षेत्र के शरणार्थी कैंपों में रहने वाले विस्थापितों को संबोधित किया था।
2: बिल्कुल। और महात्मा गांधी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में लिखने और बोलने का काम तो खूब किया था, लेकिन 12 नवंबर को गांधी जी ने अपनी बात कहने के लिए पहली बार आकाशवाणी का सहारा लिया।
0: और सहयोग से

0: दिवाली भी थी, उन्होंने शरणार्थियों को दीपोत्सव की बधाई देते हुए कहा, आप लोगों के कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे, आप सब धैर्य से काम ले, मुझे मालूम है कि आपके सामने एक बड़ी विपत्ति आई हुई है। तो देखो प्रीति की जब आकाशवाणी, आज भी आकाशवाणी है तभी तो हम अपने साथियों से रूबरू हो पाते हैं, इतनी सारी जानकारी दे पाते हैं, उनका मनोरंजन कर पाते हैं, तो हम सबके दिल में बसा हुआ है आकाशवाणी।
1: और आकाशवाणी की पहुंच मुझे लगता है कि भारत में हर जगह है,
0: और सीमावर्ती क्षेत्र में हमारे फौजी भाई जो हैं उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन रेडियो उनके पास होता है और हम उनके साथ आकाशवाणी के जरिए बातें करते हैं, उन्हें गीत सुनवाते हैं, तो सचमुच में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और गौरवशाली 90 वर्ष आकाशवाणी ने पूरे किए हैं, तो हम सब के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। तो चलो अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता।
1: भेंटवार्ता का विषय है महिला सुरक्षा के कानूनी प्रावधान, और भेंटवार्ताकार हैं
0: खदीजा हैं और ये अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
1: और इनसे बातचीत कर रही हैं कुमारी आरती। तो चलिए सुनते हैं बाह्य ध्वनांकन पर आधारित ये भेंटवार्ता।
2: जो बहन आपने कही कि हमें काम की जगह पे कम मजदूरी मिलती है, हमारे साथ दोहरा व्यवहार होता है, बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, कई बार यौनिक हिंसा होती है, देखिए इसके लिए भी भारत के संविधान में बहुत मजबूत कानून है। भारत का संविधान कहता है कि कोई पुरुष और महिला के बीच में मजदूरी में गैर बराबरी नहीं होगी, महिला और पुरुष दोनों को बराबर की मजदूरी मिलेगी। इसके लिए बड़े सारे कानून, महिलाओं को पेट में बच्चा होने के समय आसान काम दिया जाएगा, इस बार का प्रावधान भारत के मैटरनिटी एक्ट में मौजूद है। महिलाओं को बराबर की मजदूरी मिलेगी, लेबर लॉज में मौजूद है। कंस्ट्रक्शन वर्क में जब आप गृह निर्माण के किसी कार्य में लगी हैं और महिला हैं तो आपको अलग तरह की सुविधाएं मिलेंगी, इसका कानून मौजूद है। तो हमें ये सारे कानून जानना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर आपको सब्जी बनानी है और आपको सब्जी बनाने की विधि नहीं आती तो आप कैसे बनाएंगे? आप सोचेंगे आज हम कढ़ी बनाएंगे, लेकिन आपको विधि नहीं आती तो कढ़ी कैसे बनाएंगे? तो यही वर्ड होता है ना, विधि। विधि होती है कानून। यदि अगर आपको अपने आप को तरक्की करना है और अपने अधिकारों को पाना है तो अधिकारों की विधि नहीं जानेंगी तो कैसे अधिकार जानेंगी?
3: अच्छा,
2: कानून जानना बहुत जरूरी है
3: जी,
2: सभी औरतों को
3: जी। और कानून जानने के बाद भी अगर उन्हें किसी न किसी कारण उनके आस पड़ोस परिवार उन्हें पीछे की ओर धकेलता है और एक महिला कानून का दरवाजा खटखटाना चाहती है, तो वो इसके लिए उसे बाकी लोगों का साथ नहीं मिलता है, तो इसके लिए वो क्या करे?
2: देखिए दो चीजें हैं, मैं ये जानती हूँ कि महिलाएं प्राकृतिक रूप से युक्तियां ढूंढने में बहुत माहिर है। घर में एक ठो मेहमान आ जाए, कुछ भी ना होगा तो जो बचा खुचा घर में है वही में से स्वादिष्ट खाना बना के परोस देती हैं। तो महिलाएं प्रकृति रूप से युक्तियां जानने में माहिर हैं। तो पहली बात तो यह कि यदि अगर आपके साथ कोई अपराध हो रहा है तो आप कोई ना कोई अपना दिमाग चलाएं, डर के सहम ना जाएं। दिमाग चलाएंगी तो आप अपराध से लड़ पाएंगी। और दूसरी चीज, एक तो युक्ति, एक तो दिमाग चलाने की, आपके अंदर दिमाग है, आप युक्तियां निकाल सकती हैं, तो पहले तो आप अपने दिमाग को बंद मत करें, डरे नहीं, डरेंगी नहीं तो दिमाग बंद नहीं होगा तो आप युक्ति निकाल सकेंगी। दूसरी चीज, सब लोग हम जानते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकते, तो संगठित होएं। जब बहुत सारे लोग होंगे तो किसी भी समस्या का समाधान आसान होगा, एक व्यक्ति टारगेट नहीं होगा। यदि अगर किसी बड़े दुश्मन से लड़ना है, बहुत मजबूत ठेकेदार है, उससे लड़ना है, बराबर की मजदूरी चाहिए, एक औरत कहेगी तो उसको ठेकेदार निकाल देगा, लेकिन अगर आप 50 औरतें 100 औरतें मिलकर करेंगी तब ठेकेदार नहीं निकाल पाएगा। तो दूसरा हुनर है संगठन का, तो संगठित होना बहुत जरूरी है। अपनी लड़ाई अकेले लड़ने में हार या प्रतिकार का डर होता है, जब संगठित होकर लड़ेंगे तो हारने का डर कम हो जाता है। और तीसरी चीज, अपने आसपास देखें, सरकार ने बड़े सारे संगठित चीजें बनाई हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे महिला थाना मौजूद है आपकी मदद करने के लिए, आपके गांव में आंगनवाड़ी सेविका है जो घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम के तहत आपकी सहायता करने के लिए बाध्य है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। आपके गांव में न्याय पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायत है उसका एक विंग होता है न्याय पंचायत, न्याय पंचायत बाध्य है गांव में होने वाली महिला हिंसा को रोकने के लिए, आप उनसे मदद ले सकते हैं। आपके आसपास में कोई महिला संगठन हो आप उनके साथ जा सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। आप पुलिस से मदद ले सकते हैं, पुलिस में स्पेशल विंग होता है एंटी ट्रैफिकिंग विंग, अगर आपको लगता है कि कोई आपको किसी के हाथ बेच देगा या आपको जबरदस्ती उठा लाया है, आप एंटी ट्रैफिकिंग विंग पे कॉल कर सकते हैं, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम आपको मदद कर सकते हैं। हम रांची में भी हैं और भी कई जगह जिला में, और आपको हर जिला में विधिक सेवा आयोग है जो आपको हर जिला में मौजूद है, हर जिला के न्यायालय में आप कहीं से भी जाकर पूछिएगा कि विधिक सेवा का दफ्तर कहाँ है, कोई भी बता देगा आपको, वहाँ विधिक सेवा के PLVs मिल जाएंगे, विधिक सेवा के वकील मिल जाएंगे जो बिना एक पैसा लिए आपको कानूनी जानकारी और कानूनी सहयोग दे सकते हैं। तो देखिए सिस्टम सारे मौजूद हैं, चीज़ें सब हैं, रेसिपी के सारे मटीरियल मौजूद हैं, सिर्फ हमको हिम्मत करना है और विधि की जानकारी लेनी है और ज्ञान जब आप बढ़ाएंगी तो आपकी हिम्मत। देखिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाने के लिए अनुच्छेद 14 में हमें भारत के संविधान ने आज़ादी दी है कि हम अपने काम के लिए, कानूनी कार्य के लिए पूरे देश में कहीं भी आज़ादी से जा सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन विडंबना ये है कि झारखंड जैसे प्रदेश में बहुत सारी छोटी यंग लड़कियों को और औरतों को भुलावा देकर, रंगीन पिक्चरें दिखाकर, तस्वीरें दिखाकर कि वहाँ आप कार में घूमेंगी, मेम साहब का बच्चा संभालेंगी, होटलों में खाएंगी, सुखी रहेंगी, और ये सब भुलावा देके गैर कानूनी तरीके से ऐसे लोग लेके जाते हैं आपको जो वहाँ जाकर बेच देते हैं, आपके साथ बहुत सारा बुरा काम करवाते हैं, तस्करियाँ होती हैं और बहुत सारे आपके साथ जुल्म होते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए दो चीज़ों की सावधानी झारखंड की बच्चियों से कहूँगी करें। आजकल बड़ा रिवाज चल गया है कि जो ये ट्रैफिकर हैं ये स्कूलों के सामने सामान बेचने खड़े होते हैं, लड़कियों से दोस्तियाँ करते हैं और प्यार मोहब्बत के झांसे में लड़कियों को इश्क करके शादी के चक्कर में ले जाते हैं और वो उनसे शादी नहीं करते हैं। मैंने अभी पिछले महीने में ही दिल्ली में रेस्क्यू हुई हैं लड़कियां, हम उनसे मिले हैं, जिसमें से एक 17 लड़कियां झारखंड की थी जो प्यार के धोखे में गई थी और वो जीबी रोड पे बिक गई थी। तो इस चीज की लड़कियां हमेशा सावधानी करें। देखिए काम का अधिकार आपका है, आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आप काम करने सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, आप बाहर विदेश भी जा सकती हैं, उसकी संवैधानिक आजादी है आपको, लेकिन सावधानी पूर्वक दिल और दिमाग को इकट्ठे करके उसका चुनाव बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि ये लोग जो आपको घर पे आते हैं लेके जाने के लिए, ये ट्रैफिकर्स होते हैं जो आपको गलत जगह फंसाते हैं। और फिर आपने रोज अखबार में पढ़ती होंगी, मैं तो हर दूसरे दिन एक लड़की रेस्क्यू कर रही हूँ दिल्ली में, जो घरों में बहुत बुरे हालात में रहती है या कोठों पे बहुत बुरे हालात में बिक रही है। तो इसकी सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। और मेरा एक और बहुत स्ट्रांग फीलिंग है जो पूरे महिला संगठनों की भी फीलिंग है कि सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ने इसका किया भी है प्रबंध, कि जब महिलाएं काम करने जाएं तो उनको सेफ जर्नी करने की प्रावधान दिया जाए। इसीलिए रेलवे में पुलिस होती है आपके प्रोटेक्शन के लिए, कि आपको कोई रास्ते में कोई तंगी ना आए, कोई परेशानी ना आए, ये संवैधानिक आपको सुरक्षा प्रोवाइड की। देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 हमें एक कानून दिया गया है जिसके तहत हमको कहा गया है कि हमें अविरल और अबाध्य रूप से जीवन जीने का अधिकार है। उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि सिर्फ मर्दों को है, औरतों को नहीं, ये भारत के सभी नागरिकों को अवेलेबल है। व्याख्या की है इसकी जीवन जीने के अधिकार की। तो जीवन जीने के अधिकार में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया जो बाद में खुद ही अपने आप में मानवाधिकार बना दिया गया, वो है शिक्षा का अधिकार। तो पढ़ाई लिखाई का अधिकार हमारा मानव अधिकार है और हमें कोई पढ़ाई लिखाई से नहीं रोक सकता। दूसरा चीज़ जीवन जीने के अधिकार में राइट टू चॉइस है, यानी आप अपने पसंद का जीवन साथी चुन सकें, इसका अधिकार हमको भारत के संविधान ने दिया हुआ है। तो ये दोनों अधिकार हमको प्राप्त हैं। यदि अगर कोई इसकी अवहेलना करता है तो इसको रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम मौजूद है, जिसके तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी हर जिला में मौजूद हैं। और ये बाल विवाह निषेध अधिकारी अधिकतर जो मैंने झारखंड में देखा है कि जो आपके जिले में इलाके की CDPO होती हैं, आमतौर से वही बाल विवाह निषेध अधिकारी भी होती हैं। तो आपकी जो आंगनवाड़ी सहायिका है वो CDPO से डायरेक्ट संपर्क में होती है। तो यदि अगर आपका कहीं बाल विवाह होने की प्रयत्न किया जा रहा है तो आप अपनी आंगनवाड़ी सहायिका को संपर्क करके बाल विवाह को रोक सकते हैं। यदि अगर आपके साथ इस तरह का कोई हो रहा है कि आपका फोर्स्ड मैरिज हो रही है, आपको जबरदस्ती शादी कराई जा रही है, तो भी आप अपनी बाल विवाह अधिकारी या अपनी जो CDPO है, जो घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम के अधिकारी है, उसको संपर्क करके या किसी अन्य NGO को संपर्क करके अपने इस अपने ऊपर होने वाली इस हिंसा को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम के तहत फोर्स करके किसी लड़की की, बालिग लड़की की शादी करना एक हिंसा है, एक अपराध है। तो आप अपने पिता, अपने भाई के खिलाफ भी सुरक्षा आदेश ला सकते हैं, जहां वो थाने नहीं जाएंगे, वो जेल भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो आपकी शादी भी नहीं कर पाए।
0: तो प्रीति, ये जो हमारी जो महिलाएं हैं, और खासकर हम अगर श्रमिक महिलाओं की बात करें ना, तो ये हमारे कानून में प्रावधान है कि अगर श्रमिक महिला गर्भवती है तो उनसे काम ज़्यादा नहीं लिया जाए, ये मैटरनिटी एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो महिलाओं को अपने कानून के या अपने लिए जो अधिकार है ना, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने

0: कार्यक्रम के माध्यम से अपनी साथियों को जरूर ये बताते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान से सुने और इस पर अमल करें, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि जानकारी जो है ये बहुत जरूरी है, जागरूकता आना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके लिए कानून कौन कौन से है, कैसे वो उनको प्राप्त कर सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने कहा कि जानकारी ना होना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
0: बिल्कुल, और अगर जानकारी है भी और आप उस पर आगे नहीं बढ़ती हैं और अपने लिए आवाज नहीं उठाती है, तो फिर जो आपके ऊपर अन्याय कर रहा है वो उसका मनोबल बढ़ता चला जाएगा और वो आपके साथ हमेशा गलत ही करेगा। तो आपको तुरंत आवाज उठानी है और इसके खिलाफ आगे बढ़ना है। तो अब आगे बढ़ने की बात जब हो रही है तो फिर मनोरंजन की तरफ भी हमें लिए चलो और जल्दी से एक गीत सुनवा दो।

0: सच में गीत संगीत जो है माहौल बदल देता है ना, मन को शांति मिलती है,
1: सुकून मिलता है बिल्कुल।
0: और साथ ही साथ सुकून तब भी मिलता है जब आप कहीं जाते हैं और आपको एक अच्छा सा घर मिल जाए। खासकर मैं बातें कर रही हूँ प्रवासी मजदूरों की, जो कहीं बाहर जाते हैं तो पहले बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था दोस्तों, कि कैसे नई जगह पे एडजस्ट करें। लेकिन भारत सरकार की जो योजना है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, इससे बहुत सहारा मिला। अब ऐसा है कि आप कहीं भी रहें वहाँ का राशन कार्ड जो है वो पूरे भारत में वैलिड होगा।
1: ये सबसे बड़ी बात है, और विशेषकर प्रवासी मजदूरों के लिए, क्योंकि प्रीति उन्हें तो एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह काम करने के लिए जाना होता है। और जो राशन कार्ड की बात आती है तो राशन कार्ड से उन्हें सस्ते में गेहूं अनाज और कपड़े भी मिल जाते हैं, पहचान भी मिलती है। तो ये हमारे प्रवासी मजदूरों को जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें राशन कार्ड जो अगर वो अब जरूर अपना बनाए, अभी भी उनके पास नहीं है तो बना ले
0: और अपने जगह से बना ले आप।
1: हाँ।
0: होता ना नई जगह पे आपको पता नहीं होता कहाँ जाएं क्या करें, तो आपका जहाँ घर,
1: जहाँ नेटिव प्लेस है, जहाँ वो अपना घर
0: वहाँ पे राशन कार्ड बना लें और फिर आप कहीं भी रहे उस राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं।
1: बिल्कुल प्रीति, ये बहुत अच्छी बात तुमने बताई और हम यही कहना चाहेंगे साथियों कि आप जरूर बना लें। और बात जब अगर रोजगार की आती है, क्योंकि हमारे प्रवासी मजदूर भी रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो प्रीति तुम्हें नहीं लगता है कि रोजगार के अवसर जो है उसे तलाश की जगह खुद में भी उसमें अपना ये करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को स्वरोजगार से जोड़ सके। जैसे कई बार होता है कि लोगों के अंदर कुछ ना कुछ हुनर होती है, है ना,
0: और वो मुझे तो लगता है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई,
1: जाहिर सी बात है, तो वो अपने हुनर को पहचान दे। क्योंकि किसी के अंदर बहुत अच्छा वो खाना बना सकता है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस कला के क्षेत्र में अगर आपको अपना पहचान बनाना है तो जाहिर सी बात है कि आप उस पर कार्य करें, उस पर आप ये सोचें कि उससे हम किस तरह के रोजगार को तलाश सकते हैं और ऊंची उड़ान भरे, आत्मनिर्भर बने।
0: बिल्कुल, श्रमिक साथियों हर इंसान के अंदर जैसा कि दीके ने कहा कि कुछ ना कुछ हुनर जो है वो होता है। और आज अगर हम बात करें अपने झारखंड प्रदेश की, तो यहाँ भी बहुत सारी महिलाओं ने एक उदाहरण पेश किया है, अपनी कला से देश विदेश में अपने साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। सोहराय पेंटिंग, मड़ुआ का केक, बिस्किट, ऐसी बहुत सारी कलाओं के साथ वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं।
1: बिल्कुल, ये सही कहा तुमने प्रीति, क्योंकि जो मड़ुआ के लड्डू वगैरह है ना, और ये जो बना रही हैं, इसकी डिमांड बाहर इतना ज़्यादा, ये रिच है, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन है और बहुत ही जैसे मोटे अनाज में भी आता है, और इसके साथ इतना ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट करके इतनी अच्छी अपने कला को प्रदर्शित कर रही हैं और आत्मनिर्भर तो बनी रही हैं। और प्रीति हमने देखा है कि वो स्वयं तो आत्मनिर्भर बन रही है और साथ ही साथ अपने आसपास की महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को हुनरमंद बनाया जा रहा है, जिससे वो स्वरोजगार से जुड़ सके और अपनी पहचान बना सके।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ उनको सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वो घर से बाहर निकलें, दुनिया को देखें और समझे कि कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि पुरुष तो आगे आ ही जाते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है कि भाई करना ही है कुछ ना कुछ, लेकिन महिलाएं पीछे रह जाती थी। तो मुझे लगता है कि अगर महिलाओं के अंदर भी हुनर है तो वो भी अपने हुनर को निखार सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल, तो चलो हम यही उम्मीद करेंगे हम अपने महिला श्रमिक साथी से कि वो अपने रोजगार, अपनी उड़ान भरें, अपनी कला को पहचान दें और खूब आगे बढ़ें। तो प्रीति देखो हमारी जो

0: की घड़ी वो भी कह रही है कि हमें अपने साथियों से इजाजत लेने का समय आ गया है। तो इस वादे के साथ कि हम अपने साथियों से फिर से मुखातिब होंगे, अपनी दोस्त आरती
1: और प्रीति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्ग निर्माण योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पलमा गुमला पथ चौड़ीकरण, भारतमाला परियोजना और इकोनॉमिक कॉरिडोर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उपायुक्त ने अधिकारियों को भू अर्जन संबंधी बाधाओं को दूर कर निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। रांची के प्रेस क्लब में कल झारखंड कांग्रेस का एक दिवसीय प्रवक्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मौजूदगी में होने वाले इस शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, पार्टी विचारधारा और प्रभावी जनसंवाद पर फोकस करना है। साहिबगंज में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा की अध्यक्षता में पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों और पारंपरिक ग्राम प्रधानों को जागरूक किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने इस कानून की जानकारी पंचायत और ग्राम स्तर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। रांची में कल से पहली बार झारखंड विमेंस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। JSCA स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में 3 से 7 जून तक होने वाली इस प्रतियोगिता में पलामू, संथाल, कोल्हान और छोटा नागपुर की 4 टीमें हिस्सा लेंगी। इसका फाइनल मुकाबला 7 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनोया सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णुकर जोहार।
0: ये कार्यक्रम कर प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो आज ये कार्यक्रम में हमारे

0: का जानकारी करब से के बताए दो थे।
1: बता दो।
0: सबसे पहले हमरे मौसम का जानकारी करब। आज की बात में बहुस्तरीय फल बागवानी कर खेती कर बारे में डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह से करल बातचीत के सुनब। कृषि विकास गीत सुनब देवदास विश्वकर्मा संगी मन कर गावल और एगो किसान अल्बिना एक्का से रौरन के भेंट भी करवाओ।
1: तो सबसे पहले और करीला मौसम कर हाल खबर से।
0: हाँ हाँ।
1: तो आज कर मौसम विभाग वर से भेटाल सूचना कर मुताबिक आज कर तापमान ई तरी रहे कर अनुमान लगाल गलक है, जेकर में झारखंड राज्य कर राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और रामगढ़ कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और लातेहार कर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और गुमला कर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहकर अनुमान लगाल गलक है।
0: तो ये रहे मौसम कर जानकारी। अब इकर बाद में आओ एगो जानकारी हमरे करत थी बहुस्तरीय फल बागवानी कर खेती कर बारे में और इके बतात हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह और इनकर से बतियात हैं संजीव कुमार लाल।
1: तो चलो सुनीला।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अब जो समय आ रहा है वो है बहुस्तरीय फल बागवानी का। कौन कौन से बागवानी की आप फसल लगाएं और किस प्रकार हम इसकी देख रेख करें, ये समय की मांग है आज की। तो कैसे हम बहुस्तरीय फल की बागवानी अपने खेतों में करें, बागवानी को किस प्रकार हम विस्तारित करें और समय इसका कौन सा रहेगा और कौन कौन सी बातों का हम इस पर ख्याल रखें, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए आमंत्रित हैं दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। रविंद्र जी स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद।
2: रविंद्र जी सबसे पहले जानने की कोशिश करें, हमारे किसान साथी जाने कि बहुस्तरीय फल बागवानी क्या है।
3: जी बागवानी तो हम सभी हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं, चाहे वो आम की हो, चाहे लीची की हो, चाहे किसी अन्य फल की हो, पर बहुस्तरीय फल बागवानी जो है वो एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें एक ही खेत या बाग में अलग अलग ऊंचाई एवं प्रकृति वाले फलदार पौधों और अन्य सहायक फसलों को इस प्रकार से समायोजित किया जाता है कि उनमें जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसके लिए किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता, प्रतियोगिता नहीं होती और उसके साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को अलग अलग समय पे पकने वाले फल की बिक्री करके अच्छी आमदनी सुनिश्चित करने का बहुत ही अच्छा मौका भी मिलता है।
2: जी तो कौन कौन सी फल हम लगाएं इसमें, और बहुत सारी जमीन है, ढलुआ है, ऊंचाई वाली जमीनें हैं, समतल जमीनें हैं, इनका भी हम ख्याल रखें।
3: जी बिल्कुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सामान्य प्रक्रिया होती है हमारी फल बाग लगाने की, उसमें किसी एक ही फल को हम लगाते हैं। अब अगर हम इसमें आम का उदाहरण लेते हैं तो आम की जो बागवानी सामान्य रूप से की जाती है वो 10x10 मीटर पे की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि दो कतारों के बीच में, दो पौधों के बीच में बहुत ज़्यादा हमारा स्थान शेष बचा रहता है जिसमें खरपतवार उगती है और जिसका उपयोग समुचित तरीके से नहीं हो पाता है। परंतु यदि हम इसी 10x10 का जो हमारा स्पेस है इसमें जो बीच का खाली स्थान बचा है, हम ऐसी किसी फसल को, जैसे अमरूद का उदाहरण लेते हैं, अमरूद हुआ या नींबू हुआ, अगर इसको हम शामिल करते हैं तो ये 5-6 मीटर की दूरी पर ही समायोजित किया जा सकता है। यानी आम के बीच में आपने अमरूद लगा दिया, अब इसके बीच में भी अगर हम देखते हैं तो फिर से पुनः 5 मीटर की हमारे पास जगह उपलब्ध होती है। तो हम किसी ऐसे पौधे का क्यों ना चुनाव करें जो कि इस जगह में भी व्यवस्थित तरीके से लग जाए। तो इसके लिए हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं पपीता को। अब इन तीनों को ही अगर हम समझते हैं तो अगर हम वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करते हुए बागवानी कर रहे हैं तो आम में हमें चौथे वर्ष से फलन लेने के लिए कहा जाता है या वैज्ञानिक अनुशंसा है, ताकि पौधा अपना वृद्धि विकास सही तरीके से कर सके और फिर वो फलन में आए। अगर हम अमरूद की बात करते हैं तो 18 महीने यानी 1.5 साल बाद अच्छा फलन हमें उससे प्राप्त होने लगता है, और वही अगर हम पपीते की बात करते हैं तो उसी साल से हमें इसमें फलन प्राप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर आम की एकल बागवानी की जाए और अगर हम बहुस्तरीय बागवानी इस तरीके से समायोजित करते हैं तो हमें एक ही क्षेत्रफल में हम तीन अपने फलों की बागवानी कर सकते हैं और पहले ही साल से हम उससे फलन प्राप्त करते हैं।
2: मतलब आपने आम भी लगा लिया, अमरूद भी लगा लिया, पपीता भी लगा लिया, एक साथ आप बहुत सारी फसलों को आप तैयार कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल,
2: क्योंकि आम को बनने में ज़्यादातर वक्त लगता है। आपने बताया कि वैज्ञानिक अनुशंसा है,

0: चार वर्ष, और अमरूद है, पपीता है, ये सब जल्दी तैयार हो जाते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: तो एक साथ अपने बाग में बहुत सारी आप फसल को तैयार कर सकते हैं
1: जी,
0: और आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी
1: जी।
0: तो समय कौन सा रहता है ये सब की तैयारी का?
1: अभी का जो हमारा समय चल रहा है वो बहुत ही उपयुक्त समय होता है किसी भी नए बाग की तैयारी के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप इसमें एक फसल को ना लेते हुए विभिन्न फसलों को आप इसमें समायोजित कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आप इसके बीच में भी जो स्थान बचता है उसमें आप सब्जी की खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमारे जो पौधे होते हैं वो उनकी जो लंबाई होती है वो छोटी होती है, और इसमें प्रकाश जब तक हमारी भूमि तक पहुंचता रह रहा है तब तक हम कोई ना कोई फसल को उगा सकते हैं। जब हम इतनी सारी फसलों को इस प्रकार से समायोजित कर रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान देना है, सिंचाई की समुचित व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक वर्षीय फसल को ले रहे हैं जैसे आपने पपीता की बात की या आपका अमरूद हुआ या आपका आम हुआ, तो इसमें शुरुआत में पौधे छोटे होते हैं, उनमें उनकी जल मांग अधिक होती है, देखरेख की अधिक आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें। गड्ढे जो खोदने का समय है वो अभी का समय सबसे अच्छा है, सबसे उपयुक्त है। इसमें आप जो आम के पौधे हैं, अगर आप गुलाब खास हुआ, हिमसागर हुआ या मालदा हुआ, लंगड़ा हुआ, इस तरह की प्रजातियों का चयन करते हैं तो 3x3 फीट के गड्ढे की खुदाई करें, और उसमें फिर आप खाद की और पोषक तत्वों की जो विभिन्न मात्रा होती है गोबर की खाद की, उसको डाल के आप गड्ढे को भरें और उसके बाद रोपाई करें। इसके साथ ही साथ जो अमरूद की बागवानी है उसमें आपको 2 से 2.5 फीट का गड्ढा खोदना है, पपीता जो है उसमें 2 फीट के गड्ढे की साइज पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप जब उसमें अभी के समय में लगाते हैं तो आपको आगे उससे अच्छी आमदनी सुनिश्चित करने में सुविधा होगी। कुछ बातों का विशेष ध्यान दीजिए कि शुरुआत में हम जो भी अगर इसमें सब्जी फसल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पपीता लगाने के बाद भी बीच में 2 मीटर करीब जो स्थान है वो शेष बचता है, तो आपको ये करना चाहिए कि आप दलहनी फसल का चुनाव करें। जैसे अगर हम खरीफ मौसम की बात करें तो लोबिया जैसी दलहनी फसलों का आप चुनाव कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ना सिर्फ इसकी जो अपनी क्षमता होती है भूमि में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की, इससे हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, बल्कि हमारी जो दीर्घकालीन फसलें हैं जैसे मुख्य फसल के रूप में आम है, पूरक फसल के रूप में अमरूद है, और हमारी अंतर्वर्ती फसल के रूप में सब्जी और पपीते का हमने चयन किया है, तो इनकी वृद्धि और विकास में भी वो सहायता करेंगे
0: जी। इसको एक बोल सकते हैं डॉक्टर साहब समेकित
1: जी, आप कह सकते हैं, लेकिन जो कि इसमें हमारा जो विभिन्न तरह के पौधे हम लेते हैं अलग अलग ऊंचाइयों के, तो मुख्य रूप से चूंकि अलग अलग ऊंचाई के पौधे होते हैं इसलिए बहु स्तर इसको बोलते हैं, यानी एक से अधिक ऊंचाई या एक से अधर स्तर के विभिन्न प्रकार के फलों को एक में समायोजित करना
0: जी। क्योंकि आम की जो वो वृक्ष होती है वो काफी बड़ी होती है, पपीता की हाइट थोड़ी सी कम होती है, अमरूद उतनी ज्यादा बढ़वार उसकी नहीं रहती है, ज्यादा बड़ा ज्यादा ऊंचा तक नहीं जाता है, और ऐसे में बहुवस्त्रीय आप फल बागवानी करते हैं तो एक साथ बहुत सारा आप कार्य कर पाते हैं, और बगीचे का सीमांकन भी करवा लें
1: जी। बिल्कुल, बगीचे के लिए यहाँ आपको अपनी झारखंड राज्य में अगर हम बात करते हैं तो जानवरों से बहुत ज़्यादा क्षति होने की संभावना होती है, इसके लिए आप सबसे पहले गड्ढा खुदाई के पहले ही घेराबंदी करवा दें। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आप ये जो परंपरागत हमने एक फसलों का नाम लिया है आम के साथ ही साथ आप आम की जगह पर लीची का चुनाव कर सकते हैं, लीची भी उतनी ही दूरी पर लगेगी। अगर हम इसमें बात करते हैं पूरक फसल के रूप में तो लीची के साथ आप अमरूद के साथ ही साथ जो अंतर्वर्ती फसल है उसमें अदरक की खेती भी कर सकते हैं, हल्दी की खेती भी कर सकते हैं, ओल की खेती भी कर सकते हैं। बल्कि आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि जो हमारे पुराने बाग हैं उसमें अदरक, हल्दी, ओल, कच्चू जो बीच का स्थान बचा हुआ है पेड़ों के बीच में उसको बहुत अच्छी तरीके से इनकी खेती के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अतिरिक्त आमदनी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे फल हैं जैसे कटहल हुआ, बेल हुआ, चीकू हुआ, इन सब के हमारे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा बहुत अच्छी प्रजातियां भी विकसित की गई हैं, मुख्य फसल के रूप में आप इनको ले सकते हैं। यानी जहां आप आम ले रहे हैं वहां चीकू, बेल या कटहल को लिया जा सकता है, जहां हमने उदाहरण दिया अमरूद का वहां पे अमरूद, नींबू, शरीफा या मुनगा बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर ये पौधा है। इसके अलावा इनके बीच में जो स्थान बच रहा है उसमें अदरक, हल्दी, ओल जैसा हमने पहले बताया। तो इस प्रकार से आप अलग अलग अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप या मार्केट को ध्यान में रखते हुए, जैसे अगर कोई प्रसंस्करण इकाई है उस हिसाब से आप फलों का चुनाव करें, तो आप निश्चित तौर पर एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रकार विभिन्न जो आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करते हुए आप विभिन्न प्रकार

0: के फलों की खेती कर सकते हैं।
1: मतलब एक समय में आप बहुत सारी फसलों की खेती कर सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, और नए वैज्ञानिक सोच के साथ आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाते हैं और वैज्ञानिक सलाह आप लेते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से बागवानी का कार्य कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल।
1: एक समय सारी चीज़ें हो जा रही हैं आपकी।
0: इसमें
1: और
0: सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, उतने ही श्रम में अगर आप इस तरीके से सोचे कि आप इन सभी फसलों को अलग-अलग क्षेत्र में उगा रहे हैं, तो आपको उतना ही श्रम हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में करना पड़ेगा, अपने हर एक क्षेत्र में, प्लॉट में करना पड़ेगा। लेकिन आपने इन्हीं सारी फसलों को एक साथ, बिना इनकी जो दूरी तय दूरी है उससे छेड़छाड़ किए हुए, बिना इनकी वृद्धि और विकास से समझौता किए हुए, बिना इनकी उपज से समझौता किए, आपने इन सभी को समायोजित किया और इन सभी की ग्रोथ एक दूसरे को बिना किसी भी प्रकार से प्रभावित किए हुए बढ़ रही है और आपको अतिरिक्त आमदनी दे रही है उतने ही श्रम में।
1: जी, तो किसान साथियों, वैज्ञानिक सोच नई तकनीक के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपकी पैदावार अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, बढ़वार उसकी अच्छी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मोरहाबादी रांची, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुस्तरीय फल बागवानी कैसे करें इस पर आपने बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो एखन हम रमन सुनत रही बहुस्तरीय फल बागवानी कैसे करे के है, और इके बतात रहे विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह और इनकर से गोठिया रहे संजीव कुमार लाल।
3: तो आप हमारे एगो गीत भी सुन लो थे, आओ देवदास विश्वकर्मा और संगी मनकर गावली गीत है।
2: तो चलो सुनील।

0: तो एखन हमरे मन कृषि गीत नागपुरी लोकगीत में सुनत रही देवदास विश्वकर्मा और संगी मुनकर गावल। तो अब हमरे मन नए उम्र कर नई फसल में एगो सफल किसान अल्बिना एक्का से करल भेंट के सुनीला और इनकर से गोठाए हैं हमरे कर संगी कृष्ण जीवन पौराणिक।
1: किसान साथियों नमस्कार, हम किसान वाणी कार्यक्रम में किसी न किसी किसान को आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं एक महिला किसान अल्बिना एक्का। अल्बिना जी स्वागत है हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में आपका, जोहार।
2: जोहार।
1: अल्बिना जी आप रहने वाले कहाँ के हैं?
2: मैं रहने वाली नामकुम के प्रखंड खरसीदाग।
1: खरसीदाग के रहने वाली हैं। आप अभी क्या कर रही हैं?
2: अभी मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, इसके अलावा औषधीय पौधा लगाती हूँ, नर्सरी करती हूँ और अब औषधीय से मैं अपना दवा बनाती हूँ, जैसे 33 प्रकार बीमारी का तेल बनाती हूँ।
1: आपको ये सब खेती बाड़ी की प्रेरणा कहाँ से मिली?
2: ये सब प्रेरणा मुझको मिला ICR पलांडू से। ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग ले के मैं खेती बाड़ी तकनीकी करना सीखी। जैसे तकनीकी में मैं मशरूम का खेती फर्स्टिंग में की, मशरूम से दुगुना मुझको मुनाफा मिला। इसके अलावा मैं उसका बरी बनाती हूँ और अचार भी बनाती हूँ
1: मशरूम की। और क्या क्या खेती किए हैं?
2: अभी मैं लाह की भी खेती की हूँ, जैसे 17 पेड़ में लगाई हूँ, 4 पेड़ में काटी। अभी
1: लाह की खेती के बारे में कुछ बताइए हमारे किसान भाइयों को, कैसे कैसे आप लाह की खेती करते हैं?
2: लाह की खेती मैं फरवरी में कटिंग करती हूँ, कटिंग करके फिर मैं जुलाई में डालती हूँ और दिसंबर जनवरी में उसका जो निकलता है उसको बेचती हूँ।
1: किस पेड़ में लाह का उत्पादन करते हैं आप?
2: मैं बैर का पेड़ में करती हूँ।
1: और कौन कौन सा पेड़ में लाह का उत्पादन हो सकता है?
2: शिमला लता, कुसुम का पेड़, बैर का पेड़, पारस का पेड़ में भी लगता है।
1: तो लाह का उत्पादन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं आप?
2: सबसे पहला काम मैं पेड़ को छांटती हूँ, डाली तैयार होता है, तैयार होने के बाद मैं जुलाई के महीने में कुसुम का बीज जैसे लाह हो जाता है उसको डालती हूँ। उसके बाद 15 दिन के बाद मैं उसका दवा छिड़काव करती हूँ।
1: तो लाह के पौधों में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं?
2: लाह के पौधा में फंगस लग जाता है, जैसे कुआसा आता है तो फंगस लग जाता है, तो फंगस को हटाने के लिए दीमक भी हटाना पड़ता है। दीमक बहुत जरूरी है।
1: तो ये लाह उत्पादन में कितने दिन का समय लग जाता है?
2: 6 महीना का करना पड़ता है।
1: और कौन महीने में इसको आप डालते हैं सबसे फर्स्ट में?
2: जुलाई महीना में।
1: और आपने बताया कि मशरूम का खेती करते हैं, मशरूम की खेती के लिए आप क्या क्या व्यवस्था किए हुए हैं?
2: मशरूम की खेती के लिए एक रूम तैयार की हूँ, उसके बाद मैं वहाँ खाली रूम होना चाहिए और कुटी रहना चाहिए, डेली का 100 बैग बनाती हूँ मशरूम।
1: तो मशरूम का बीज कहाँ से आते हैं?
2: के लिए मैं बीज का डिमांड करती हूँ, ICR पलांडू से मुझको मिला है। मैं प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हूँ, 2017 से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझको मिलता है।
1: अच्छा, तो मशरूम का उत्पादन कितने दिन में हो जाता है?
2: 21 दिन में।
1: तो इसका खपत कैसे करते हैं आप?
2: इसका खपत हम जैसे मार्केट में ले जाते हैं, तो मार्केट में खपत नहीं हुआ, जैसे बच गया तो मैं उसको प्रोसेसिंग करती हूँ, जैसे बरी बनाती हूँ, अचार बनाती हूँ
1: मशरूम का। और मशरूम में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं?
2: उसमें भी फंगस लगता है। फंगस से बचाने के लिए जैसे हम लोग रूम को सबसे फर्स्ट में सफाई करते हैं, सफाई के बाद ही मशरूम का पैकेट डालते हैं।
1: और आपने कहा कि औषधीय पौधों की भी खेती करती हूँ, है ना? तो औषधीय पौधे में आप कौन कौन सा औषधीय पौधों की खेती करते हैं?
2: औषधीय पौधा में मैं अश्वगंधा और जैसे धतूरा हो गया,
1: और
2: लाल मिर्च भी दवा ही है,
1: लाल मिर्च,
2: लहसुन, चिरैता, ये सब डालती हूँ।
1: जो औषधीय पौधों की खेती जो आप कर रहे हैं, तो ये औषधीय पौधों की खेती किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा एक एक करके बताइए।
2: जैसे मैं नर्सरी करती हूँ तो एक एक बीज डालती हूँ, जैसे पीपी बैग होता है ना, छोटा वाला, काला वाला रहता है, उसी में मैं डालती हूँ, और औषधीय पौधा भी बेचती हूँ और दवा भी बनाती हूँ।
1: अश्वगंधा के पौधों से कौन कौन सी

0: बीमारियों की दवाइयाँ।
1: अश्वगंधक जैसे वो वाला दवा, जैसे शरीर कमजोरी हो गया है ना, हम लोग बहुत सा विटामिन खाते हैं, उसका पाउडर एक चम्मच एक गिलास दूध में आप उसको डाल के पी जाइए, वो ताकत के लिए अच्छी होती है।
0: और जो आप बोले कि लाल मिर्च से भी हम दवा बनाते हैं, तो लाल मिर्च से कौन सी दवा आप बनाते हैं?
1: जैसे लाल मिर्च और लहसुन से जैसे 33 प्रकार का बीमारी का दवा बना रही हूँ, सबको मिश्रण करती हूँ उसमें, मिश्रण करके जैसे लकवा हो गया, साइटिका हो गया, कान दर्द, नस का जो भी प्रॉब्लम है, सारा चीज उसमें खत्म हो जा रहा है और बहुत दूर दूर तक मेरा दवा जा रहा है, पूरा झारखंड में मेरा दवा जा रहा है।
0: अच्छा अच्छा, तो ये लहसुन और लाल मिर्च के बारे में आप बात की है ना, और इसके बाद में धतूरा और एरंडी से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है?
1: सबका मिश्रण करते हैं, जैसे धतूरा हो गया, लाल मिर्च हो गया, एरंडी हो गया, सबको मिश्रण करके बनाते हैं, प्योर सरसों तेल से बनाते हैं, ये नहीं कि हम दुकान से लाएं और बनाएं, वैसा नहीं है।
0: ये जो आप मिश्रण करके बनाते हैं तो ये कौन कौन सी बीमारी में काम करती है?
1: लकवा हो गया, साइटिका, कान दर्द, बवासीर हो गया, खूनी वाला हो चाहे मांस वाला हो, दोनों हो, उसमें लगाना केवल है, कुछ खाना पीना नहीं है, केवल लगाना है।
0: ये सब जो औषधीय पौधों की जो खेती कर रहे हैं और अपने से दवा बनाते हैं ना?
1: अपने से दवा बनाते हैं।
0: तो इसका खपत कैसे करते हैं?
1: इसका खपत सबसे फर्स्ट में तो मैं शुरुआत में बनाई, पहले मैं पड़ोस को दी, पड़ोस वाले लोग ठीक हो गए, तो उसके बाद में प्रखंड स्तर पर मैं स्टॉल डाली, बिना ये लेबल का डाली, तो मेरा बिक्री अच्छा से हो गया। अच्छा से हो गया तो मुझको लगन लगा कि नहीं, मुझको तेल बनाना है और लोगों का सेवा करना है। इसके अलावा मैं केश पोषक तत्वा भी बनाती हूँ, शैम्पू बनाती हूँ, प्रखंड में ही दी मैं, नामकुम प्रखंड में ही, लेकिन ज्यादातर जेंट्स लोग ही लेते हैं। अच्छा। बोलते हैं टकला हो रहे हैं मैडम, मुझको दीजिए, और बहुत दूर तक जा रहा है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये सब पूरा जा रहा है। इसके अलावा हैदराबाद, पटना, बंगलोर, यहाँ तक भी जा रहा है, ऑनलाइन भी मैं भेजती हूँ दवा।
0: अच्छा, तो ये सब दवाइयों को जैसे ऑनलाइन आप भेजते हैं, इनका व्यवस्था कैसे की है?
1: इनके व्यवस्था मैं ICR पलांडू से संपर्क रखती हूँ।
0: अच्छा, हमारे किसान भाइयों का ये बताइए कि पुराने परंपरा से जो खेती करते थे और अब की खेती में, ये दोनों में क्या अंतर है?
1: दोनों में यही अंतर है, जैसे अभी रासायनिक और ऑर्गेनिक खेती, एक तरफ मैं रासायनिक करती हूँ, एक तरफ ऑर्गेनिक खेती करती हूँ, दोनों में फर्क पड़ता है। इसलिए फर्क पड़ता है कि रासायनिक का कीमत कम मिलता है और ऑर्गेनिक खेती में उसको ज्यादा मिलता है। जैसे धान की खेती भी करती हूँ तो मैं जीराफुल चावल डालती हूँ, जीराफुल चावल अपने से बनाती हूँ और 100 रुपया केजी बेचती हूँ। जैसे मड़ुआ डालती हूँ, मड़ुआ का मैं लड्डू बनाती हूँ, बिस्कुट बनाती हूँ, निमकी भी बनाती हूँ, प्रोसेसिंग करके बनाती हूँ, अच्छा मार्केटिंग मेरा आता है।
0: तो मड़ुआ, बिस्किट और ये जो लड्डू बनाते हैं तो बहुत पौष्टिकारक होता है ना?
1: हाँ।
0: आप अपने तरफ से हमारे किसान भाइयों को खेतीबाड़ी के विषय में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे?
1: मैं प्रेरणा यही देना चाहती हूँ कि जैसे मैं भी एक गरीब महिला थी, मेरे पास कुछ नहीं था, बिना ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। और मैं ट्रेनिंग लेके ही मैं 50-60 महिलाओं को मैं ट्रेनिंग देने जाती हूँ, जैसे चक्कलधरपुर हो गया, खरसावा हो गया, सरायकेला, बहुत जगह ऐसे मैं जाती हूँ ट्रेनिंग देने, और ट्रेनिंग का फीस भी मैं लेती हूँ।
0: और सबसे पहले तो खेती बाड़ी शुरू करने के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जैसे केचुआ खाद भी बनाती हूँ मैं।
0: अच्छा।
1: नाडेप भी है मेरे पास, बीज उपचार के लिए जीवा अमृत, घन जीवा अमृत, सारा चीज मैं बनाती हूँ मैं।
0: किसान भाइयों, आप भी खेती बाड़ी से जुड़िए, और जैसे अलविना जी अपने खेती बाड़ी से इतने जो है सो तरक्की कर ली है, एक सफल कृषक बन गई है, आप लोग भी खेती बाड़ी से जुड़िए और लाभ उठाइए। तो अलविना जी, आपको हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में आने के लिए और किसानों को बहुत अच्छी अच्छी बात बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
1: धन्यवाद सर।
2: तो एखन हमारे मन सुनत रही एगो सफल किसान अलविना एका से भेंट, और इनकर से गोठियाए रहे कृषि जीवन पौराणिक।
0: तो इकरे संगे किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरालक ई कार्यक्रम के प्रायोजक।

0: हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
1: और कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।
0: तो सुनवैया भाई बहन मने अब तनी देरी में अगला कार्यक्रम में रहने से फिर भेंट करती।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं अब अगला कार्यक्रम हमारी दुनिया।

0: हमारी दुनिया कार्यक्रम सुनो या सब भाई बहन मन के एक बेर फिर से कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
1: विष्णु कर जोहार। और कहो का हाल समाचार है?
0: हाल समाचार मन तो बढ़िया है। और देखो मौसम भी जो है से कभी ठंडा करत है कभी गर्म करत है नहीं?
1: हाँ हाँ।
0: कभी पानी आवत है कभी गरजा थे कभी हवा चलत है और कभी आज के रौद लागत है नहीं?
1: एकदम।
0: तो ऐसने मौसम में जो है से तनिक ना जीव जहान भी बेड़ा के डर रहेला है नहीं?
1: एकदम। और जब ठंड का मारे गिरेला उबरा भी हमरे के मोबाइल कर प्रयोग जे करे थे उके बढ़िया से करे चाहिए काले कि बहुत कोई ठंड का गरजा थे भी उबरा भी आदमी मन मोबाइल में बात करे ना।
0: हाँ उकरो से खतरा है और सेबरा तो मोबाइल मन के बंद कर देना चाहिए। और ठंड का बेरा तो खैर मोबाइल के कम उपयोग करना भी चाहिए और ऐसनो बेरा कम उपयोग करना चाहिए माने सीमित भर कि अगर ज़रूरत है तो उपयोग कर ली। आप देखो कि दिन भर आदमी जो है से का के जे एकदम रील मन के देखत रहें एकदम दिन भर जो है से लागल रहें एकदम कखन जैसे खाए पिए के भी भुलाया जाए नर दिखात रहे
1: एकदम। और आजकल तो ऐसा भी हो गलग है कि छवा मन अगर कांदत हैं तो ओहो मन के मोबाइल धराए दे है ना।
0: अगर छवा कांदत है तो माए मन कर कहना है कि अगर पूछब कि काले मोबाइल धराए दे तो माए मन कर कहना है कि नहीं कांदत रहे तो धराए दे ली तखन चुपचाप देखत। और छवा मन कर ऐसा आदत हो जाए है नहीं कि मोबाइल नहीं देख ले ओहो मन कर जैसे ऐसा नशा तरी हो जाए कि थर थर कपे लगबे
1: एकदम
0: मोबाइल हाथ में नहीं रहा।
1: तो ऐसा में हमरे के ध्यान देवे के चाहिए और कोशिश करे के चाहिए कि छवा मन के बाहरे मैदान में खेले ले मतलब प्रयास करे के चाहिए दौड़े के चाहिए खेले के चाहिए बहुत सारा हो सकेला।
0: अब हमरे देखो बचपन कितना मने हंस खेल के और सब यार दोस्त मन कर संगे गेंदा खेलत रही कबड्डी खेलत रही मने फुटबॉल खेलत रही हॉकी खेलत रही। अब तो वो सब खत्म भे गलक अब खाली मोबाइल में खेलते रहें।

0: तो शारीरिक तो माने कोनो गतिविधि होत न खे है ने, तो तरह तरह कर बीमारी भी आवत है। और ये मोबाइल कर बहुत अधिक प्रयोग से मानसिक बीमारी भी होत है, बहुत ज़्यादा आदमी डिप्रेशन का शिकार भी होत है। तो मोबाइल का सीमित प्रयोग करे के चाहिए।
1: और तो ऐसा भी होला कि आदमी मन रात पहर में भी डिबरी मन बुताए के मोबाइल के देखे ना, तो ज़्यादा जे मोबाइल के देखे ना तो आँख में एकदम बेस प्रभाव पड़े, एकदम नुकसान होला आँख के।
0: तो ये सब तो देखो खाना चलते है सब, लेकिन हम कर तो अब माने समझाना काम है ने, और सीमित प्रयोग करल से अपने फायदा है
1: एकदम। तो आज पसंद कर लोकगीत कर दीना है, मंगल कर दीना है, तो हमारे मन एगो पसंद कर लोकगीत में सुन लेवेला, नागपुरी लोकगीत में सरिता देवी और संगीमन कर गावल।

0: क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: तो आज पसीन कर लोकगीत हके, तो और एक गीत सुना।
4: हाँ हाँ एकदम, आउ खोरठा में सुना थी शिवनंदन पांडे और संगीमनकर गावल गीत के,
3: तो चलो सुनी ला।

0: तो एखन हमारे मन खोरठा लोकगीत में शिवनंदन पांडे और संगी मुनकर गावल गीत के सुनत रहे।
1: तो आओ हमरे और एगो नागपुरी लोकगीत सुनत है, इग्नेश कुमार और संगी मुनकर गावल।
0: तो चलो सुनी ला।

0: तो रीझ भरल नागपुरी लोकगीत इग्नेश कुमार और संगी मनकर गावल सुनत रही।
1: आओ आप कुरमाली में सुनत ही अजीत कुमार महतो और संगी मनकर गावल गीत के।
0: तो चलो सुनीला।

0: तो एखन हमरा सुनत रही अजीत कुमार महतो और संगी मिलकर गावल कुरमाली में।
1: और देखो इकरे संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरालक
0: और ई कार्यक्रम कर प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकर।
1: तो सुनो या भाई बहन मने अब रविंद्र कर संगे कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: विष्णु के देवदा जोहार।

0: ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है।

ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ एमओयू। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी जेएमएम कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में। उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले बीएलओ को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की 3 खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र से 6500 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मांग की, जबकि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने मानकों के अनुपालन पर 2500 करोड़ रुपए आवंटित करने की बात कही। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को नियमित निगरानी और 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा के निर्देश दिए गए। बैठक में 1400 करोड़ के ओवरसाइज्ड घटकों की समीक्षा करने और जेजेएम के प्रबंध निदेशक का पद संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपने की सिफारिश की गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दोनों ही खेमों में आम सहमति बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जल्द ही अंतिम नामों की घोषणा कर सकता है। इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने दावा किया है कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उनकी जीत तय है।
2: केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद हमारे उम्मीदवार की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीदवार होगा जो 100% का भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता होगा और पूरे तरीके से दमखम से चुनाव लड़ेगा। भाई आंकड़े हमारे पक्ष में बिहार में भी नहीं थे, लेकिन लोगों ने अंतरात्मा की आवाज और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसके आधार पर दिया। यहाँ तो व्हिप भी जारी नहीं होता है, तो हमारे जो उम्मीदवार है वो सारे वोटर्स के पास जाएंगे, अपना वोट मांगेंगे, अपना विजन बताएंगे।
1: भारतीय जनता पार्टी के दावों पर सत्ताधारी गठबंधन ने पलटवार किया है। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने नैतिकता को ताक पर रखकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है।
3: यहाँ उनके कुत्सित प्रयास सफल नहीं होंगे। नैतिकता को ताक पर रख के उन लोगों ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। कहां से लाएंगे विधायकों की संख्या? खरीद फरोख्त, पैसे के बल पर राजनीति करेंगे, झारखंड को दगदार करेंगे, वो सब नहीं चलेगा। ये झारखंड है, फुल प्रूफ रणनीति है हेमंत सोरेन जी की, इंडिया गठबंधन का दोनों उम्मीदवार जीतेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल

0: को ऐतिहासिक बताया है। रांची में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश ने महिला सशक्तिकरण, गरीब कल्याण और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार, और जिस तरह से इन 12 वर्षों में देश की सेवा उन्होंने की है, लगातार लोगों की सेवा के लिए वो कृत संकल्पित है, और अंत्योदय को लक्ष्य मानते हुए चार आयाम, युवा, महिला, गरीब और किसान, उनके लिए निरंतर योजना बनाना, उस योजना का लाभ उन तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने काम किया।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश की वर्तमान परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले की जाँच रिपोर्ट जल्द महालेखाकार को सौंपने की भी बात कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने और बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बच्चों समेत सभी नागरिकों का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने और एम्बुलेंस की निगरानी के लिए AI कंट्रोल रूम बनाने को कहा है। इसके अलावा आपातकालीन सेवाओं में सुधार और ANM GNM की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @ न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने CBSE में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया में गड़बड़ी के विवाद के बाद बोर्ड अध्यक्ष और सचिव को पद से हटा दिया है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। वहीं साइबर हमले के बावजूद बोर्ड का री इवैल्यूएशन पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और पहले ही दिन 16,000 से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया। गढ़वा के नक्सल प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ से CRPF हटाने की तैयारियों पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखा है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बल को बनाए रखने का प्रयास जारी है। यदि केंद्र सरकार CRPF हटाती है तो राज्य सरकार वहां अपने जवानों की पूरी तैनाती करेगी।
2: तो मैंने होम सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है कि आप CRPF, और मेरी बात भी CRPF IG से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करते हैं कि अधिक अधिक जितना देरी और रह सके जितना अधिक समय तक तो वो रहें, लेकिन वो आप जानते हैं कि भारत सरकार का मामला है, गृह विभाग भारत सरकार अगर चाहे तो विड्रॉ कर ले, लेकिन अगर वो विड्रॉ जिस समय करेगा तो फुल स्ट्रेंथ में बुरा पहाड़ ऐसे क्षेत्र में झारखंड की पुलिस वहाँ उनकी पोस्टिंग होगी।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 15 जून तक मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लंबित फॉर्मों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे। श्री कुमार ने कम मैपिंग वाले BLO को विशेष प्रशिक्षण देने की बात भी कही।
3: निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी के साथ में बैठक हुई, उसमें कुछ सिलेक्टेड BLO का भी हम लोग आमंत्रण किया था, उनका मैपिंग काम है। आज वो पैरेंटल मैपिंग के बारे में चर्चा की गई थी, उसमें अभी लगभग 76% के ऊपर मैपिंग हो चुका है, उसमें बचा हुआ 24% में कुछ ASDD वोटर का भी उसमें शामिल है।
0: ADG मनोज कौशिक ने गुमला में रांची जोन के 4 जिलों की पुलिस के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने 3 वर्षों के लंबित मामलों, विधि व्यवस्था और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा की समीक्षा की। ADG ने महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों और पॉक्सो मामलों में त्वरित कार्रवाई और तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
4: विधि व्यवस्था एवं उसके अलावा स्पेशल क्राइम्स पे हम लोग एक रिव्यू किए हैं, जिसमें गुमला, लोहरदगा, कुमटी और सिमडेग चारों जगह के ऑफिसर्स रिव्यू हुआ है। उसमें जो लास्ट 3 इयर्स में जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए थे तो उसकी डिटेल प्रोग्रेस हम लोग जांचे हैं, और जिन केसेस में एक्शन पेंडिंग थे तो उनमें एक्शन करने के लिए डायरेक्शन दी। उसके अलावा जैसे है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसके लिए स्पेशल डायरेक्शन दिया गया है सभी SPs के।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

0: के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं, जिसे जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार वीरता, खेल, समाज सेवा और कला संस्कृति जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के लिए नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। और अब मौसम का हाल। राज्य में कल संताल परगना को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में 40 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात के साथ मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। न्यूजीलैंड में होने वाले FIH महिला नेशंस कप के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें झारखंड की तीन खिलाड़ी सलीमा टेटे, निकी प्रधान और दीपिका सोरेंग को जगह मिली है। सिमडेगा की सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई दिल्ली में केंद्र और झारखंड सरकार के बीच हुआ MOU। नियमों के अनुपालन पर मिलेंगे 2500 करोड़ रुपए। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज। सत्ताधारी JMM कांग्रेस गठबंधन और विपक्षी भाजपा खेमे में उम्मीदवारों के नामों पर अब भी सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनहित की योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 15 जून तक हर हाल में मतदाताओं की मैपिंग पूरी करने के दिए निर्देश। कम मैपिंग वाले BLO को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। और हॉकी इंडिया ने न्यूजीलैंड में होने वाले महिला नेशंस कप टीम का किया ऐलान। झारखंड की तीन खिलाड़ियों को मिली जगह। सिमडेगा की सलीमा टेटे संभालेंगी भारतीय टीम की कमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता।
1: रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर स्थित किलाहारी ड्रिल स्क्वायर में पिछले दिनों बैच 7 के 1121 अग्निवीर रंगरूटों ने शपथ ग्रहण समारोह के परेड में हिस्सा लिया। गर्व और उत्साह के माहौल के बीच इन अग्निवीरों के 24 सप्ताह की कठिन सैन्य ट्रेनिंग परेड में देखने को मिली। साथ ही परेड में सैन्य अनुशासन, टीम वर्क, युद्ध तैयारी और रेजिमेंट की शानदार परंपराओं की झलक भी दिखी। युवा अग्निवीरों ने अपने आत्मविश्वास, सटीक कदम ताल और समर्पण से राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई। मौके पर पहुंचे मुख्य अतिथि कमांडेंट ब्रिगेडियर साजेश बाबू पीजी ने संबोधित करते हुए कहा कि आपको अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहना है, चाहे आपको यह आदेश बॉर्डर हाई सिक्योरिटी या सिविल ऑफ एरिया में क्यों न दिया गया हो।
2: ये बटालियन तैनात है हाई एल्टीट्यूड से लेके सियाचिन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और पूरा देश में यूनिट्स डिप्लॉयड है।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रामगढ़ चैम्बर भवन में पिछले दिनों चैम्बर सेवा ट्रस्ट द्वारा समागति कैंसर केयर फाउंडेशन के सहयोग से निःशुल्क कैंसर जांच शिविर आयोजित किया गया। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा ने लोगों की जांच कर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामगढ़ विधायक ममता देवी उपस्थित रही। इस अवसर पर जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं गणमान्य लोगों ने तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों पर चर्चा की तथा पान मसाला और गुटखा के प्रचार पर प्रतिबंध की मांग दोहराई। इस मौके पर रामगढ़ विधायक ममता देवी ने बताया कि
3: कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसके नाम से ही लोग डर जाते हैं और लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं कि कैंसर छुआछूत की बीमारी होती है, तो ये भावनाएं भी उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैंसर कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है और इसका आज भी इलाज है, या वो हमारे झारखंड सरकार के माध्यम से हो या प्राइवेट तौर पे हो, कैंसर का इलाज आज भी है। आज भी जिन किसी को भी कैंसर की बीमारी है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर सतीश शर्मा जी को संपर्क कर सकते हैं, हम लोगों को भी संपर्क कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर उनका बेहतर इलाज।

0: के लिए हर संभव हम लोग प्रयासरत हैं और प्रयास करेंगे।
1: मौके पर अपनी जांच कराने आए रामगढ़ शहर के एक समाजसेवी धनंजय कुमार पुटुच ने बताया कि यह एक अच्छी पहल है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी लगातार युवाओं से धूम्रपान निषेध के लिए अपील करते हैं और युवा वर्ग को इससे दूरी बनाकर रखने की बात करते हैं। मौके पर रांची के डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि वर्ल्ड नो टोबैको डे पर हमने इस दिन का चयन किया कि रामगढ़ के गणमान्य लोगों को यह बताया जाए कि तंबाकू लंबे अंतराल के बाद कैसे नुकसान पहुंचाता है। रामगढ़ पुलिस ने पिछले दिनों संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गिरोह के 6 अपराधियों और एक किशोर को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि
2: त्वरित कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना क्षेत्र से कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और एक उरी विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल का 2 मैगजीन, कुल 34 राउंड जिंदा गोली, टीवीएस अपाची बाइक, एक स्टार सिटी प्लस बाइक और 6 एंड्रॉइड मोबाइल बरामद किया गया है। इस संदर्भ में पतरातू थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए हिरासत में भेजा जा रहा है।
1: विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर रामगढ़ में कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से जागरूक कर स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
3: अभी आप सुन रहे थे रामगढ़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा। आज आप सुनेंगे खड़िया भाषा में।

0: आम्पे झाड़ी आदिवासी अखड़ाते खड़िया लांग मंडोर की ते इंजर अनुग्रह कुल्लू रो
1: ओलिप डुंगडुंग
0: या जोहार मुसा मांगतो है के आम्पे झाड़ी उनेडा ते अंडर ते पे खड़िया लांग बंग लाए पे अंडर ते निंग अनिंग मुस्गा प्रोग्राम ते
1: लादा मुसा अनि अनंग कायन ननंग कोनन कोनन बचत भविष्य आथुं इघे जरूरी है जे है ने बचत माने होता अपन आय आ कटिन हिसा भविष्य आवश्यकता या अथुं बन जाएगा है ने चाहे को सुरक्षित उन्ना कोनन कोनन बचत जिंदगी ते इकुट जुग है महत होता
0: है ना
1: ई नानो उकर भविष्य ते आर्थिक सुरक्षा देते
0: हाँ सत ला नियमित रूप अनि कोनन कोनन बचत कराए ना से नेलाय असरी जुगाय राशि मने कच्चा जमा होता जे नो कठिन परिस्थिति ते सहारा बनेता मुसगा नेडा ते जीवन या आवश्यकता लगातार बढ़ेगा चलते ही शिक्षा स्वास्थ्य बिहा केर सोंग ओ बायना ओडो ओडो आकस्मिक जरूरत या थों धन या आवश्यकता पड़ेता यदि अनि अपन आय या मन कोनन हिस्सा जो नियमित रूप बुंग बंचाए तेनिंगला भविष्य ते आर्थिक समस्या या सामना आसानी से कराए डोमना पड़ोमता बचत या आदत लेबुते अनुशासित जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बायते ही गामते हम
1: हाँ सो तो ना तो को बायते का कोनन बचत एबलोंग धन कटिपना या माध्यम ना लगे है ने हाँ मुदा उकर लेबुते दूरदर्शिता और योजना बायना या क्षमता जो विकसित करे थे बैंक डाक ओ आवर्ती जमा सावधि जमा ओडो ओडो बचत योजना

0: Along ondor kon ampe te ikut lere laki hoi la a ai pe tama bakri ondor pe uje ondor te kier silbanus bakier.
1: मनुख जीवना विकास आथों शिक्षा इकोट जुकुराई एनएम शिक्षाया बिना विकास संभव उंबोड़ी जिंदगीया कठिन नेडाते चुनौती भरे जियो मा सामना करायनाया पाठ सिखाईते शिक्षा इकोट मदद करायते शिक्षा कुना भेरे जे ज्ञान बुद्धि हर एक लेबुआ जिंदगी ते शिक्षा का आत्म निर्भर कराएते उकर जिंदगीया बेहतर संभावना किते जो कुनाया कपटो ते युक्ते जे नो करियर या विकास ते बढ़ावा तेरते शिक्षा कौनसेलरो कोपरू बेरिया अथों समान रूप गुंग जुकुराई इनानो बरिया जुमे कौन शिक्षित समाज निर्माण कराए देखियर वो उज्जवल भविष्य ते बैना थों मन होई कौन यंतर लिखे देश या विकास रो प्रगति अथों महत्वपूर्ण भूमिका निभाए देखियर वो शिक्षा बरिया ते उज्जवल भविष्य या सीखते रहते उते शिक्षित अगुआ किया अगुआ कीगा अवतामय जे नो देश निर्माण कराए कौन सफलता रो प्रगतिया गुजुंग रो छो बोलते मय शिक्षा लेबू ते हो ठाड़ो रो छो डोट कांते जे नो बेहतर रो सजाग लेबू बैनाया गुर सिखाएते बारूडा शिक्षा लेबुआ जिंदगी ते इकुट बारू कायम या उद्देश्या ते ओलते जैसन व्यक्तिगत उन्नति ते बदलाव ओलना सामाजिक स्तर ते बदलाव तेरना सामाजिक सुधार आर्थिक प्रगति देश सफलता जिंदगी या लक्ष्य बैना समाज मुद्दा की बारे जागरूक ओलना रो पर्यावरण या समस्या की ते सुलझाना शिक्षा प्रणाली या प्रयोग या चलते आज कल शिक्षा प्रणाली इकुट सहज रो परमदार होई गोरसी तमा आधुनिक शिक्षा या मुद्दा शिक्षा प्रणाली ते डोट कौन और शिक्षा रो समानता या मुद्दा ते होडम होडम धर्म जाइत या मोजीते तेगुनाथों सरछम आई तमा शिक्षा मनवा किया दिमाग ते मुगम डोटना थों कोडिश कराएते रो बुद्धि ते विकसित कराएते समाज ते जे भेदभाव की आत्मय होजे दीपसा अनाबुंग मदायत कराएते अनिंग झाड़ी लेबू किया थों उज्ज्वल भविष्य थों शिक्षा मन उपकरण लिखुट पपतरते वो उपकरण ते अनिंग अपन जिंदगी आथों बारू कमुना थों ओलना पालेनिंग समझा झाड़ी लेबू किते आदर सत्कार रो मन उपकोंगनाया चिन्हा बायना पालेनिंग शिक्षा या नेडा सुप्रा घर इकुट महत्वपूर्ण आई लेबुआ मोचीते मन जुदागा ठाणो बैतेरो अच्छा बुराया भावनाते विकसित कराएते शिक्षा महाकोनुन खोड़ी पौधाया समाज देश दुनियाया समस्याते हल करायना क्षमता उनते जिंदगी हर पहलू ते शिक्षा ते विकसित ते अनदेखी उम कराएते लेबुआ दिमाग ते जे सकारात्मक सोच विचार आवता होजे शिक्षा मुगम ओलते रो नकारात्मक विचार ते मोबलिट कौन नाश करायना करायगो ते कोनोन भेरेगा अनिया आयो आबा की अनिया दिमाग ते शिक्षा ती ओलनाया और निस कराए की उते उकिया इकुट महा योगदान आवता उकी अनिंते तकनीकी शिक्षा रो उच्च शिक्षा नीति वाला ज्ञान सोरी समूचा दुनिया ते अनिंगा विचार ते विकसित करायना उमय कराए मैं अपन ज्ञान रो बुद्धि ते बढ़ानाया सुंदर तरीका अकबर पढ़ेना है के बुद्धि विकासाथों टीवी ते ज्ञान वर्धक जीनिस ते योना बेस लेखा का किताब पढ़ेना चाहिए। शिक्षा अनिंते सभ्यारो बेहतर गुण या झुम उपयोते समाज ते बेस ठाणो रो चाकरी ते आपन कल्पना कराए ठाणो ते डोकोनाया मदद तेरते अनिंग जिंदगी ते मोज अच्छा डॉक्टर मोज अच्छा इंजीनियर मोज अच्छा पायलट मोज अच्छा मास्टर जे अनिंग ते बोनेनाया बोनेना लमते निंग बोने बोने ताकि सें शिक्षा प्रणाली इकुट कठिनाओ की सोप जाए अपन इच्छा लेखे शिक्षा उमाय कुनाला की जुघाय केचिया हुनाया चलते तुबलुंगा शिक्षा पढ़ेना मैं पलना ला की मुदा अब दूरस्थ शिक्षा नीतिया मध्यमबुंग शिक्षा कुना मुगम बढ़ेना इकुट आसान रो सरल होसी यो शिक्षा कुनाया मुद ठाणो है के सोकड़ाया जिंदगी आयो आबागा पहला मास्टर होता मैं अनि कुड़ु ताएगा शिक्षा या पाठ आयो बुंग सीखे सीखे तानी आयो आबा जिंदगी या महत्व ते बताए मैं जब उफे ई फोन बोरिसा होता की ला अनि ते स्कूल डांगो ते मैं मोन मोन क्लास पारो कौन मुगम क्लास बढ़े तानी जब तक अनिंगा बारहवीं घोल उबर क्लास पास कराना उमनिंग पालते खोकड़ा बात ते तकनीकी उमला पैसा वाला डिग्री आथों कोर्निस तेनिंग जेनो उच्च शिक्षा या निमी बूम कोंगतेनिंग आज कल शिक्षा प्रणाली ते बढ़ावा थों इकुट सरकारी योजना की चलाई सीमा जेनो सोपते उचित शिक्षा कोई गुरु खोड़ी पौधा तेजो फेड़िया लेबू की किति शिक्षा या मातवा ते रो नफा ते ओबियो नाथुं टीवी अखबार या विज्ञापन किति ओबियो ते मैं सेंग शिक्षा प्रणाली इकुट महंगा रो कठिन आओ की गरीब तबके या लेबू किते कॉलेज ते पढ़ेनाया अनुमति आओ की अब शिक्षा या पूरा प्रक्रिया रो विषय ते परिवर्तन होई गोटसी सरकार नजर बुंग सोप मोंज होई गोटसी मैं सरकार रो छोप तय सोप सोपड़ा थोंग शिक्षा प्रणाली सुगम रो हल्का होई गोटसी सरकार नियम रो कानून बाय गुटसी नो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली गुरगुर गरीब रो मध्यम खंधाया लेबू किया थुंग भैसिया ते समान शिक्षा रो सफलता या अवसर कुई गुरु शिक्षित लेबू रायजा मोन पोक्ता गुठोंग हेकै हर गुरु अपन जिंदगी ते मुनु योते नो इन जो महाबोको लेबू जैसन डॉक्टर इंजीनियर आईएएस ऑफिसर मास्टर ऊ लिखे अनि योते निंग नो शिक्षा बिना जिंदगी समाज रो देश मुगम डमना उम पाले शिक्षा का असंभव ते संभव रोचो डोना पाले।
2: बाखड़ी अंडर को नाम पे ते कुछ बारु लाकी है ना हनिंग ती आय पे तमा अडो अलंग अंडर रेनिंग वालंग ते अलंग सिक्यार इग्नासियस करके टारो के सांगोडम की

0: खड़िया भाषा में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अंग्रेजी वार्ता।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: दिस इज आकाशवाणी। नाउ यू विल लिसन टॉक बाई डॉक्टर अनन्या बोस ऑन द टॉपिक जेन ऑस्टिन।

0: हसरत जयपुरी के बोल अभी आप सुन रहे थे। संगीत था अनु मलिक का, फिल्म थी राधा का संगम और आवाजें थी इस गाने में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की। इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, आइए सुने विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एम्पावरिंग फार्मर्स थ्रू वेलफेयर and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
3: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through. We are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashwani series on completion of 12 years of NDA government.
4: Namaskar, thank you.
3: So, aapse hum janna chahenge ki jis tarah ka humne ek तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, ना सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
4: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर, कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों, कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है, दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है। फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया। उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
3: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड। द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in

0: लेबर ये और पैसा, तो इन सब चीजों का कैसे किया। मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है, जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
0: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे यह पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहाँ से खाद की उपलब्धता कहाँ से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखे तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता पंप होता है या नहरों से जाता है वो सिंचाई के काम में आता है, लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है, जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी। फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है,
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब

0: हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
1: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी एमएसपी का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है, तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर, मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। सरकार ने बहुत बेहतर,
0: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो, द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो। सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर and the value addition mechanisms, they have emerged as the central pillar of your India's farm to market strategy and have been successful.
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to, you know, take care of the expenditures. Then after the produce is, you know, harvested, he needs a market and a good price that will, I mean, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the rise in the input cost, and as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, I mean with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management. And what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity. So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
0: Yes. कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में, इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है, और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका कर रही है?
3: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय, जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो। और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या सुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा। सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है। दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं। जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत, आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया? तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज है। डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं, 2-4-5

0: पशु रख करके दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है। कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट। अब समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है। किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है। और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25-28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कारपोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन, NCDC बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25-30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको KCC दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि KCC आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी KCC का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द PM किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting and enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the scheduled caste, scheduled tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments, they have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we have vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishv hai usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports, $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
0: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तौर से, टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूसर, जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 170,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
0: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाए, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है.
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज आल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट. प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward, using the strengths of the opportunity?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to going for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this, and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. And because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, you know, agriculture experts, industry and farmers will have to jointly work towards this goal, which is actually the thrust area. Because as the markets of the world are opening, as the Prime Minister himself put it, and global demand is changing, so we need to see that how we are more export-oriented in our production. That is very, very important, because we have a rich agroclimatic, you know, zones. That is why, you know, Prime Ministers particularly mentioned, you know, you mentioned cashew, cocoa, sandalwood, and this national mission on edible oil and pulses. And the national mission for natural farming are particularly to meet this objective.
1: Thank you so much, Mr. Iyer. We are running out of time. Thank you so much, Mr. Singh, for this in-depth discussion on the various aspects of the progress in agriculture and farmers' welfare that has taken place in the last 12 years of the NDA government and the way forward. Thank you.
0: Thank you. Thank you.
2: Thank you very much.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल किसान कल्याण और किसान केंद्रित नीतियों के माध्यम से किसानों का सशक्तिकरण. इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.
4: इन द स्पेशल सीरीज यू वर लिसनिंग टू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. The participants were Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator was Sonu Sood. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण. ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 8:45 होने को हैं. थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से.

0: ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ तीसरा और अंतिम टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी के बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
4: 2-3 ब्रांचेस ऑल्सो।
2: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
5: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
2: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: If it comes true, that means your agriculture productivity will come down, number one. Number two, at the same time, rural demand will also get affected. And number three, combination of fuel prices, higher fuel prices, having the multiplier effect on the overall prices.
1: So you said 6% inflation, it could go up even further.
0: Yeah, it can go up to 6% in the current, and that's not just my estimate. Hmm. The estimates which are given by various economists, and that is why the RBI report is talking about the upward risk. So one is, of course, the West Asia crisis, and third, the consequent impact on the rural demand as well as the agriculture production.
1: Hmm. Let's talk about the RBI stance on liquidity management, which shifted during the year. Do you, Shishir, read the report as signaling a bias towards tighter liquidity going forward? And what would that mean for bond yields?
0: If you just see the preamble of RBI, one of the key aspects of RBI preamble is to check the monetary supply. And why monetary supply is to be checked? To check the inflation. So if the inflationary expectation is high, what are the ways, what are the tools available in your hand? One is, of course, you can raise the policy interest rate. That's a very easy thing to do. The second one is, of course, the raise the CRR. The third one is the mop up the excess liquidity from the market. So at this moment, what we are seeing that RBI will certainly go for a slightly tighter liquidity thing. But if you are talking about a capex of more than 11 lakh crore, if you have to provide hand holding to the private sector, then the liquidity should much be more than what is estimated. Now, coming to the bond yield, of course, the bond yield is on the higher side, and not just in India, but overall, globally, you will see US or UK or European market, everywhere we are seeing the yields are on the higher side. Even in Japan, it is on the higher side. So this is nothing unusual. But of course, this will have some impact on the interest rate. As of now, we are expecting that the RBI may not go for any change, at least in two policy. One, which the announcement will be made on 5th of May, and the second, which we are expecting in the month of August. So these two policy meeting, we are not going to see a change in the interest rate despite higher yield. But after that, inflation rate is more than 6% or even 6%, then we may see some interest rate action, and that will have impact on the yield because both are inversely related.
1: A while back, you talked about the El Nino effect, etc. In fact, the RBI report emphasizes climate-related financial risks and greening the financial sector. Are Indian banks prepared for transition and physical climate risk, or is this largely an aspirational effect?
0: See, the problem with the green financing, of course, it is a very
1: fashionable
0: word, and it seems to be a very intellect word also, that when we talk about the green financing, problem is, who is the taker? I mean, government launched a sovereign green bond, and it was a very good initiative because the projects which are going for environmental related or anything which is going to have positive impact on the environment, they are going to have more and more resources available under them. But we did not find much taker from the sovereign green bond. And that's the government has already accepted it. It's not, I'm saying that government has already accepted it. Now the banks are ready to provide some financing for the green project as well as the various green initiative. And the companies are also looking for that, because I will just add one line that SEBI regulation says that the top 1,000 companies are supposed to come out with the ESG report. That's the environmental and social governance report. And under that, they have to talk about 3P. That's the people, planet and the profit. So whatsoever they are doing for the planet, they have to disclose it. Now, when they have to disclose it, they will try to include more into the green element in project. You will also remember one thing. We just had the IPL tournament. In the IPL, there was a big campaign about the green dot balls. So as many dot balls we have, they will plant trees. So that is something also related with, because for that you need money. Mm. It's not something that is coming free, of course. So these are the initiatives which are being planned, and the companies are taking some innovative route, but not much we have seen in terms of going for this kind of financing.
1: Okay, on fiscal risks, Shishir, RBI notes contingent liabilities and state level debt dynamics. How worried should markets be about the fiscal monetary mix ahead of the next budget cycle?
0: Many of the states are having a problem because of some freebies, what we call as. And because of the freebie, they do not have much resources. So they rely on the market borrowing to provide money for a different expenditure. So there we are finding that that's a really concern on that side. At the same time, we should also remember that this year, because of the reduction in central excise, in the month of March. There is expectation that the central excise collection or the overall collection will go down, but the fertilizer subsidy will go up. So you have the central finance and you have the state finances. So combination of these two are also something the market is slightly thinking about. So when an investor going to the market, it will have certainly in mind that what kind of financial strength a central government has or the state government.
1: The RBI also suggests, Shishir, that there should be a continued focus on improving access to credit for MSMEs. What practical policy or operational steps will most effectively close the MSME credit gap?
0: So if you see MSME thing, the government has just come out with the fifth version of ECLGS, which is the Emergency Credit Guarantee Line Scheme. And the scheme which was announced on 5th of May as approved by the cabinet has seen a very good response. That means the MSMEs are looking for financial support from the organized sector. And that is also going to help in that bringing down the cost of operation. Because if you are going to the unorganized sector for financing, that will your cost of operation will go up. Already there is an issue of competitiveness. So if the cost of operation is up, that competitiveness will also be impacted. So MSME financing is something very, very important thing. And the good news is that more and more banks are encouraging their people to go and lend money to the MSME. And of course, those MSMEs which are really what we call as an eligible MSME or financially better position or their repayment record is better, we are finding them that the banks are ready to pay that. And if I go by the last 5-7 days, many of the bank MDs have said that we have got 600 crore rupees, 700 crore rupees worth of application from MSME. So even if we take 10 people are talking about 700 crore each, that means 7,000 crore worth of loan going to be dispersed among MSME.
1: Thank you, Shishir. Those were very clear and actionable insights. And to our listeners, the RBI's annual report is more than statistics. It maps risks and opportunities that affect loans, savings, and the wider economy. Appreciate your perspective and your time for us. Thank you very much.
0: Thank you very much.
2: You were listening to a discussion on key takeaways from RBI's annual report 2025-26. The participants were Shishir Sinha, economic analyst, and Rajesh Lekh, anchor. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app News on AIR.
3: Money Talk.
4: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला।
5: मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में, जिसने शहरों और कस्बों में काम करने वाले रेहड़ी पटरी वाले छोटे विक्रेताओं की मदद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजेश कुमार जी, जो जनरल मैनेजर हैं सिडबी के, उनसे बात करेंगे। राजेश जी, आपका स्वागत है।
6: धन्यवाद।
5: राजेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आम लोगों के समझने के लिए कि ये पीएम स्वनिधि योजना आखिर है क्या और इससे रेहड़ी पटरी वालों को खासतौर पर क्या फायदा मिलता है।
6: पीएम स्वनिधि योजना बेसिकली एक लोन प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई योजना थी, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से 3 चरणों में लोन मिलता था। पहला लोन 10,000 का था, दूसरा 20,000 का और तीसरा 50,000 का। इस लोन के साथ साथ उनको इंटरेस्ट सब्सिडी थी, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता था। और डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन से मेरा मतलब है QR कोड के थ्रू पेमेंट लेना या डिजिटली पेमेंट करने पे 100 रुपए तक प्रति मंथ का इंसेंटिव था
5: जी।
6: अब उसके अलावा 400 रुपए का और इंसेंटिव ऐड हो गया है, जो कि बल्क ट्रांजेक्शन परचेज करने पे उनको मिलता है। इसके अलावा जो सरकार की 8 वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनसे जोड़ने की योजना थी और उनके स्किल के डेवलपमेंट करने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम था।
5: तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो इस योजना को करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है खासतौर पर कोरोना के बाद छोटे दुकानदारों के लिए योजना कितनी मददगार साबित हुई होगी?
6: ये मददगार कितनी ज्यादा थी, ये आप इसके नंबर से समझ सकते हैं। अभी तक 75 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है और करीब 17,800 करोड़ के लोन, करीब 1 करोड़ 13 लाख लोन दिए जा चुके हैं। तो इसका विस्तार पूरे भारत में था, सारे स्टेट यूटीज में स्कीम में अर्बन एरियाज में इसके लोन दिए गए और लोगों को काफी सहायता हुई, इसलिए कि उनके पास उसमें कार्यशील पूंजी खत्म हो गई थी, बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए उसमें पैसा चाहिए था
5: जी।
6: बट गरीब लोगों को पैसे की जरूरत हमेशा रहती है, कोरोना खत्म होने के बाद भी अभी तक चल रही है और उसका डिमांड है और लोगों में इसका काफी यूटिलिटी दिख रहा है
5: जी। राजेश, एक अहम चीज जो इस स्कीम में है कि वो एक बिना गारंटी के एक छोटा लोन मिल जाता है, तो ये कितना बड़ा फायदा होता है रेड़ी पट्टी वाले लोगों के लिए और ऐसे लोग जो साहूकारों के पास जाते थे पहले लोन लेने के लिए या पैसा कर्ज लेने के लिए और उसमें उन्हें काफी लंबा ब्याज भी चुकाना पड़ता था, तो ये खासतौर पर उनके जीवन स्तर में किस तरह का एक सुधार आप देखते हैं?
6: सुधार दो रूप में आप देख सकते हैं, एक तो वही अमाउंट अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर से मनी लेंडर से लेते थे तो काफी ज्यादा ब्याज देना पड़ता था
5: जी,
6: जो उनके प्रॉफिट को कम करता था। दूसरा, चूंकि काफी हाई रेट कॉस्ट पे लोन मिलता था तो वो एक छोटा अमाउंट लेते थे, जितना बेसिक जरूरत होती थी उतनी ही लेते थे क्योंकि काफी ज्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। स्कीम में रिजनेबली गुड अमाउंट, जिसको कहते हैं कि पहले 10,000 रुपया जो अभी बढ़ के 15,000 रुपया हो गया, फिर 25,000 रुपया, फिर 50,000 रुपया का लोन मिलता है, तो उनको सिर्फ ना बिजनेस चलाने के लिए बल्कि बिजनेस बढ़ाने के लिए सुविधा हो रही है और इसकी वजह से उनका ओवरऑल इनकम इसलिए बढ़ रहा है कि उनके बिजनेस का साइज बढ़ रहा है
5: जी।
6: तो दोनों रूप से फायदा हुई और हमने इम्पैक्ट स्टडी कराया, दो स्टडी कराया था, तो उसमें निकल के आया कि इनका इनकम जो है करीब करीब 20% से एनुअली बढ़ रहा है जिन्होंने इसके अंदर लोन लिया है। तो इसका दोनों वजह से है, कॉस्ट कम होना और बिजनेस का बड़ा करना।
5: कोई एक उदाहरण जो आपके जहन में ताजा हो रहा हो इस समय बात करते समय कि किसी के जीवन स्तर में आपने सुधार देखा हो, क्या काम करता था वो व्यक्ति?
6: बहुत लोगों ने बिजनेस को बड़ा किया, पहले थोड़ा सा क्वांटिटी रखते थे, जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो वो बताते हैं कि चाहे वो फल वाला हो, सब्जी वाले हो या आर्टिफैक्ट्स वाले हो, उनका दायरा बढ़ गया, उनका स्टॉक का क्वांटिटी बढ़ गया और उनकी कैपेसिटी बढ़ गई। कुछ ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी किया कि पहले आप सिर्फ फल बेच रहे थे, अब उसका आप जूस भी बेच रहे हैं या कट फ्रूट्स भी बेच रहे हैं, सिर्फ आप मछली बेचते थे, अब मछली को जो है सो फ्रीज में रख रहे हैं तो उसको ज्यादा समय तक बेच पा रहे हैं या फिर उसको आप प्रोसेस करके बेच रहे हैं। पहले आप छोटी आय के आपके पास पूंजी थी तो आप छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स खरीदते थे, अब जब ज्यादा पैसा है तो बड़े बड़े महंगे आर्टिफैक्ट्स भी खरीद के आप दुकान में रखते हैं। तो हजारों ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, आपको बता देंगे लोग कि कैसे उनके बिजनेस को बढ़ावा मिला है इससे।
5: आप लोगों को कोई चुनौतियां भी सामने आई जब स्कीम को आप लोगों के बीच लेकर के गए, उनका रुझान कैसे था? क्योंकि आज तो नंबर्स बड़े अच्छे दिख रहे हैं लेकिन शुरुआती दिनों में क्या माहौल था?
6: शुरुआती दिनों में डिमांड था, इसलिए कि कोरोना के कारण लोग काफी अफेक्टेड हुए थे, उनको पूंजी चाहिए थी और सरकारी जो मशीनरी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे यूएलबीज हो, अर्बन लोकल बॉडी, मतलब जो शहर का जो लोकल निकाय है, उन लोगों में भी रुचि थी। बट एक मुश्किल जो थी इनको बैंक तक ले जाना, और बैंकों में भी एक थोड़ा सा ये मानसिक रूप से ये होता है कि इतने गरीब लोगों को लोन देना वापस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शुरुआती एक उलझन थी लोगों के दिमाग में, एक दुविधा थी कि ऐसा सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बट बहुत जल्दी ये साबित हो गया कि ये काफी सक्सेसफुल है और लोग ऋण चुका रहे हैं, तो उसके बाद ये पीछे मुड़ के इस स्कीम ने नहीं देखा।
5: ये वाकई खासतौर पर बैंकों के लिए भी दिक्कत होती है कि अगर वो किसी को लोन दे रहे हैं तो वापस आएगा नहीं आएगा, ये चिंता बैंकों के लिए बड़ी होती है। तो इस स्कीम में क्या कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है जरा भी कि नहीं लोगों की तरफ से इंतजार हो कि नहीं मेरा पैसा माफ कर दिया जाएगा ऐसा कुछ, या वो अपनी क्रेडिट रेटिंग सुधारने के लिए तुरंत ही लोन का भुगतान करने में सबसे आगे बढ़कर अपना काम करते हैं?
6: मैंने नहीं देखा कभी कि किसी ने इंतजार किया हो कि उसका लोन माफ हो जाए, लेकिन चूंकि गरीब लोग हैं तो उनके जिंदगी में बहुत सारी ऐसी जेन्युइन परेशानियां आती रहती हैं, वो हेल्थ का इश्यूज हो, बिजनेस का इश्यूज हो, आपके इलाके में बाढ़ आ गया, आपके गांव में स्थिति आपदा हो गई, गर्मी है, कुछ ही कारण से आपका बिजनेस, बारिश हो गई बहुत ज्यादा तो आपका बिजनेस अफेक्ट हो गया, तो बहुत सारे कारणों से लोग ऋण को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। बट ऐसा मैंने नहीं देखा जहां पर कि उनके पास नियत नहीं हो चुकाने की। और इस स्कीम में इनबिल्ट इंसेंटिव है, आप पहला लोन पे करेंगे तो दूसरा बड़ा लोन मिलेगा, दूसरा लोन प्रीपे करेंगे तो तीसरा और बड़ा लोन मिलेगा, आप तभी लेंगे लोन जब आपको जरूरत है, लेकिन आपको ये पता है कि जब जरूरत है तो वो लोन मिलेगा
5: जी,
6: तो इसलिए लोगों की रुचि है लोन को लेने में और रिपे करने में
5: जी। जाहिर है, तो मतलब कर्ज चुकाएंगे तो अपने कारोबार को बढ़ाने की रुचि लोगों में रहती ही है और उसका एक इंसेंटिव भी मिलता है कि अगर आपने लिया हुआ कर्ज समय पर चुका दिया तो आपको और ज्यादा कर्ज मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंसेंटिव की भी आपने बात कही थी, वो किस तरह से होता है और पिछले 6 सालों में लोगों ने इसमें किस तरह का रुझान दिखाया?
6: डिजिटल इंसेंटिव है, अगर आप जैसे ग्राहक से अपने पैसा जो है सो क्यूआर कोड के थ्रू ऑनलाइन लेते हैं तो उसके लिए हम इंसेंटिव देते हैं, या आप जो अपनी पेमेंट करना है जो आप खरीद करते हैं उसके लिए आप पेमेंट करते हैं, पर्सनल हो या बिजनेस एक्सपेंसेस हो। तो एक तो रिटेल का हम देते हैं जो साल में मैक्सिमम 1200 रुपए तक मिल सकता है, 100 रुपए प्रति मंथ। दूसरा एक अभी शुरू किया गया है जिसमें क्वार्टर में हम 100 रुपए देते हैं, अगर वो स्ट्रीट वेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का परचेज करता है और ऑनलाइन पेमेंट करता है। तो इस तरह से आप साल में 1600 रुपए तक डिजिटल इंसेंटिव के रूप में पा सकते हैं, जो आपके ऑलमोस्ट लोन के इंटरेस्ट का कॉस्ट सब्सिडाइज कर देता है।
5: जी, महिलाओं के लिए इस योजना में कोई खास पहल देखने को मिली?
6: महिलाओं की भागीदारी इस स्कीम में काफी ज्यादा है, अबाउट 45% जो हमारे बेनिफिशियरी हैं वो महिलाएं ही हैं। तो दो की इस स्कीम में अलग से कोई उनके लिए इंसेंटिव का प्रोविजन नहीं किया गया था, समरूप से ये स्कीम सबको बराबर रूप से सहायता प्रदान कर रहा है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी में बिजनेस में महिलाएं हैं और स्ट्रीट वेंडिंग में खास करके उनका योगदान दिखता है, तो उनकी भागीदारी वो हमारी स्कीम में भी दिखती है।
5: एक अहम सवाल ये भी उठता है कि जब हम अपने आसपास कारोबार में सुधार देखते हैं तो उससे उन लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है पूरी तरह से। एक तरह से अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें आप इस तरह की योजनाओं का क्या फायदा होता देखते हैं?
6: अर्थव्यवस्था को फायदा ये है कि जैसे 17,800 करोड़ ये फॉर्मल लोन्स दिए गए, ये पैसे कभी इनफॉर्मल सेक्टर से लिए जाते अब ये फॉर्मल सेक्टर से हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बन रहा है, उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बन रही है और आगे बाहर से लोन लेने में सुविधा होगी। इनफैक्ट हमारे स्कीम में जो स्टडी है उसके हिसाब से 30% से ज्यादा लोगों ने अभी ही स्कीम से बाहर बैंकों से लोन लिया है, फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया है, ये फायदा है। दूसरा जो इम्पैक्ट है, जब आपका इनकम लेवल इम्प्रूव होता है तो आपकी सबसे पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड में जहां जो सबसे महत्वपूर्ण है या सबसे जरूरी आपको तो है उसकी बेसिक सुविधा की उन्नति कर सके, सुधार कर सके, वो आपके घर का हो, बच्चों की पढ़ाई हो या कोई हेल्थ का इश्यू हो। जिस घर के लिए अलग अलग चीजें क्रिटिकल होंगी, लेकिन जहां जो क्रिटिकल है वहां वो उस पर एक्सपेंड करते हैं, अपने को सुधारने की कोशिश करते हैं। और ये भी हमारे इम्पैक्ट रिपोर्ट में निकल के आया है कि आधे से ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है।
5: आपने इम्पैक्ट रिपोर्ट का जिक्र किया तो उसमें क्या क्या पैमाने रखे थे आप लोगों ने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए?
6: एक तो हम देखना चाह रहे थे कि इनकम में क्या इम्प्रूवमेंट है, दूसरा ये देखना चाह रहे थे कि उस इम्पैक्ट उनके लिविंग्स पे आता है कि नहीं। तो चार बेसिक पैरामीटर्स थे, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनके घर का रहना ठिकाना था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद का और परिवार का हेल्थ, और खाने पीने का एक न्यूट्रिशन जो एक बेसिक आप कहते हैं अच्छा भोजन रिलेटिवली वो मिल रहा है कि नहीं, कि इन चारों पैरामीटर पे स्टडी किया गया था।
5: तो क्या परिणाम इसके निकल के आए? क्या लोगों के स्तर में एक अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला या एक नोशनल इंक्रीज जिसे कहते हैं कि एक मामूली फर्क नजर आया?
6: उस ढंग से उसको क्लासिफाई नहीं किया गया था उस रिपोर्ट में कि कितना अमूलचूल है, ये अमूलचूल तुरंत हो भी नहीं सकता
5: जी,
6: लेकिन हर एक कदम जो कि सही दिशा में बढ़ता है वो इम्पोर्टेंट है, उस तबके के लिए खास करके काफी मायने रखता है।
5: इस योजना का विस्तार भी किया गया है, आपको क्या लगता है किस तरह से और ज्यादा फायदेमंद होगा ये लोगों के लिए और नए लोग भी स्कीम में शामिल होंगे?
6: अभी तक ये सिर्फ शहरी लोगों के लिए था जो स्टैट्यूटरी टाउन्स हैं, अब हम उसको सेंसस टाउन में एंड पेरी अर्बन एरियाज में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक तो वो फायदा हो रहा है और दूसरा स्कीम में अब क्रेडिट कार्ड को जोड़ा गया है, दूसरा फायदा है लोगों के लिए जो एग्जिस्टिंग बोरोअर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है, और तीसरा हम उनके स्किल में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनके उनको एक बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए उस पर भी हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनका हैंड होल्डिंग कराना, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है।
5: सर, आपसे एक अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो छोटे लोन लेने वाले थे उनमें से कितने लोग बड़े लोन की तरफ बढ़े हैं, ऐसा कोई आंकड़ा अगर आप हमारे साथ साझा कर सके?
6: जैसे हमारा जो स्कीम है जो छोटे लोन है जिसको हम फर्स्ट लोन कहते हैं, तो उसमें करीब अभी आज की तारीख में 75-75 लाख लोगों ने लोन ले रखा है।
5: बिल्कुल,
6: उसमें से करीब करीब 47 लाख से थोड़े कम लोगों ने रिपे कर दिया पूरी तरह से, या तो जो जिन्होंने फर्स्ट लोन रिपे कर दिया है वो सेकेंड लोन के लिए एलिजिबल है, उनमें से करीब 29 लाख लोगों ने सेकेंड लोन लिया है, और जो 13.5 लाख लोगों ने लोन रिपे कर दिया है उसमें से करीब 8 लाख लोगों ने थर्ड लोन लिया है। एक तरह से माना जाए कि काफी ज्यादा जो रिपेयर कर चुके हैं उनमें से मोर देन 60-70% लोग जो है सो नेक्स्ट लोन लेते हैं।
5: तो चलिए हम बात करते हैं स्कीम के बेनिफिशरीज से भी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। विष्णु शंकर भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। विष्णु जी, सारनाथ के रहने वाले हैं आप, और क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में इस योजना का लाभ लेने के बाद? बोलिए राजेश जी।
7: सर हम लोग तो रेडी वाले हैं, सारनाथ म्यूजियम पे ठेलिया पे दुकान लगाता हूँ मैं सर
5: जी।
7: और जो मेरा कार्ड है काफी पुराने समय से था जी, कोरोना काल जब आया तो हम लोग लगातार 2 साल के लगभग बंद किए हुए थे, दुकान फिर से शुरू की तो हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी सर। तो उसी समय सर पीएम सुनिधि जो आई, ये सर अच्छा होगी पहली बार तो

0: कि हम लोग को सम्मान मिलने लगा। फिर उसके बाद जब हम लोग उसमें रजिस्टर करा कर अपना 10,000 का लोन लिए, जब हम लोग उसकी एक्टिविटी करने लगे तो हम लोग को उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होने लगा। पहली बात तो उसमें मंथली दे देना पड़ने लगा। फिर उसके बाद हम लोग जब 10,000, 20,000, 50,000 का लिए तो बैंक ऑटोमेटिक आज हमारी सर 4 लाख की लोन की हुई है। उसमें ओडी अकाउंट होती है सर, तो उससे सर हमको बहुत ही सहायता मिला। और उसके साथ साथ पीएम स्वनिधि साथ साथ हमारे फैमिली मेंबरों को भी सर जोड़ा गया है।
1: बिल्कुल। तो विष्णु जी, बहुत धन्यवाद अपने विचार साझा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार इसी तरह से आगे भी बढ़ता रहे। तो राजेश जी, अभी आपने विष्णु जी को सुना, वो अपनी
0: जी
1: बात
0: जी
1: बता
0: सर
1: रहे थे
0: हम
1: कि किस तरह से जो है उन्हें इस योजना का फायदा मिला और किस तरह से उन्होंने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। तो और भी जो लोग इस तरह की योजनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, कोई शंका है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
2: उनको मैं कहूंगा कि आप अपने शहर के यूएलबी बॉडी होता है, आप उनसे संपर्क, और अगर खुद से कर सकते हैं तो हमारे पीएम स्वनिधि के वेबसाइट पे जाकर के या मोबाइल ऐप से डायरेक्टली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्ट्रीट वेंडिंग का सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट है तो, और
1: बिल्कुल
2: नहीं है तो वेंडिंग के लिए पहले अप्लाई करें। और स्ट्रीट वेंडिंग और लोन अप्लीकेशन अब कंबाइंड रूप से एक साथ होता है, तो आप जब अप्लाई करेंगे तो पहले आप यूएलबी आपका स्ट्रीट वेंडिंग का कंफर्मेशन करेगा, जिसको हम LOR कहते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और जब आपका LOR यूएलबी अप्रूव कर देगा तो फिर आपका एप्लीकेशन बैंक को चला जाएगा लोन के लिए।
1: तो राजेश जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए आपका
2: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका।
3: अभी आप सुन रहे थे पीएम स्वनिधि के 6 वर्ष वित्तीय समावेशन के माध्यम से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के महाप्रबंधक राजेश कुमार और पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: मंथन।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंजे झारखंड।

हमारे आसपास मौजूद हर चीज पर्यावरण है, जिसमें हवा, पानी, पेड़ पौधे और अन्य सभी सजीव निर्जीव शामिल हैं। दुनिया में जीवन आने के बाद से विकास शुरू हुआ। हर दौर में लोगों ने पर्यावरण का अपने अनुसार प्रयोग किया। समय के साथ आधुनिकीकरण बढ़ा और लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पर्यावरण खतरे में आ गया और उसके साथ साथ मानव जीवन भी खतरे में आ गया। हम सभी को मिलकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लानी है। श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ लोकगीत।

स्वस्थ जीवन के लिए साफ और स्वच्छ पर्यावरण का होना जरूरी है। पर्यावरण दूषित होने के कारण आज तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। इस धरती पर हर जीव पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है। हम इंसान भी पर्यावरण का हिस्सा हैं। आने वाली पीढ़ियों को इसकी अहमियत समझाना हमारी जिम्मेदारी है।

पुराने जमाने में लोग प्रकृति के बीच रहते थे, इसलिए उनका जीवन भी स्वस्थ था। आज हमारी गलत आदतों से पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। हमारा जीवन खुशहाल हो, इसके लिए हर व्यक्ति को पर्यावरण को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पानी और बिजली बचाना, ज्यादा गाड़ियां न चलाना और जो पर्यावरण के अनुकूल हो वैसे सामानों का उपयोग करके किया जा सकता है। पर्यावरण हमें वो सभी जरूरी संसाधन प्रदान करता है जो हमारे विकास के लिए बेहतर हैं। पर्यावरण को दूषित करने वाले सभी कार्यों को रोकने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। हमारा जीवन पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर है।

हमारी रोज की दिनचर्या को चलाने के लिए प्राकृतिक तत्व पर्यावरण से मिलते हैं। देश हमारा कृषि प्रधान है। लाखों करोड़ों किसान अपनी रोजी रोटी के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। वे खेती करके फसल उगाने और बेचने का काम कर रहे हैं। इससे उनका घर परिवार चलता है, साथ ही हम सभी का जीवन भी, क्योंकि हमारा खाना जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, इस जरूरत को हमारे देश के किसान भाई बहन पूरा करते हैं। जिस मौसम में जो फसल उगानी हो, समय आते ही वे खेत में लगा देते हैं।

हमारी प्रकृति औषधियों का एक समृद्ध स्रोत है। पुराने समय से ही बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटी और आयुर्वेद का सहारा लिया जाता रहा है। अभी के समय में भी ये उपयोगी हैं। कुछ आसान उपाय अपने जीवन में लागू करके पर्यावरण संरक्षण में हम अपना सहयोग दे सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर जितना जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करें। जरूरत ना हो तो पंखे और लाइट बंद रखें। बिजली बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें। इको फ्रेंडली चीजों का प्रयोग करें। और सबसे जरूरी बात, अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें।

श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ लोकगीत। कलाकार थे मुंडारी में सोमरा लोहरा और साथी, छोटराय मुंडा और साथी, उरांव में रायसन उरांव और साथी, नागपुरी में रूना देवी और साथी, खोरठा में करुणा देवी और साथी। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा तोपनो का और प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की।

गूंजे झारखंड। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम, हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं।

10:30 हो रहे हैं। आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज के कलाकार हैं अभिराम पाठक। इनसे आज आप सुनेंगे राग बहार में आलाप और धमार गायन। संगत करने वाले कलाकार हैं, हारमोनियम पर हैं गायत्री चक्रवर्ती और तबले पर हैं संदीप चैटर्जी। तो आइए सुने शास्त्रीय संगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राग बहार में आलाप और धमार गायन। कलाकार थे अभिराम पाठक। संगत कर रहे थे हारमोनियम पर थी गायत्री चक्रवर्ती और तबले पर थे संदीप चैटर्जी। इसी के साथ ही आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
4: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
3: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan-European Union joint statement regarding Jammu and Kashmir. Mr. Jaiswal said that the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. The ministry spokesperson also said the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, will be on a four-day visit to India starting tomorrow. Mr. Jaiswal said during her visit, Ms. Rodriguez will hold bilateral discussions with Prime Minister Narendra Modi. India have successfully conducted flight tests of the indigenously developed Rudra M2 air-to-surface missile from an airborne platform. The tests were carried out by Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force IAF under extreme release conditions with critical trajectory establishing the capability of all subsystems. Ministry of Defence said all the test objectives were fully met. Defence Minister Rajnath Singh lauded the efforts of DRDO, IAF, Defence Public Sector Undertakings, Development Production Partners and Industry Stakeholders for the achievement. He said the successful tests demonstrate the growing maturity of indigenous defense technologies and mark a significant step towards Atmanirbharta in advanced weapon systems. Prasar Bharati's digital streaming platform Waves OTT has crossed 1 crore registered users in less than 2 years after its launch in November 2024. Ministry of Information and Broadcasting said the achievement marks a significant step in the growth of country's public digital media ecosystem. The ministry said this reflects the increasing adoption of indigenous digital platforms offering trusted, inclusive and diverse content to audiences in India and across the world. It said, with more than 1 crore registered users and over 1 crore 40 lakh downloads, Waves OTT is now focused on its next phase of growth. Russia launched a large-scale overnight attack targeting multiple Ukrainian cities in which at least 21 people, including 2 children, were killed and over hundreds others were injured. This marks one of Moscow's largest assaults in the recent months. President Volodymyr Zelensky said civilian infrastructure and energy facilities had been targeted across the country. And that is the end of this news bulletin.
0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11:10 हो चुके हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। श्रोताओं सुबह 6 बजे तक FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर FM गोल्ड के कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव के कार्यक्रमों को लेकर कल सुबह 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।